0: विचार शक्ति जितनी ऊंची होती है व्यक्ति उतने ही ऊंचे कार्य करता है। लियो महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वक्ता देवी चित्रलेखा जी के विचार।
1: कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
2: नारद जी आए हैं, देवी लक्ष्मी आई है, बाबा भोलेनाथ भी आए हैं। बाबा भोलेनाथ जी पूरे परिवार के साथ आए, लेकिन अब इनको वहां जगह कौन देगा जाने के लिए? इतनी भीड़ भाड़ में कोई नहीं देखता कौन वीआईपी है कौन नहीं है, सबको ही लगता हम ही आगे बढ़े। दर्शन नहीं करने दिया। बाबा जी ने सोचा अब तो दर्शन नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, दोबारा दर्शन करने आएंगे। तो बाबा भोलेनाथ दोबारा दर्शन करने आए, कब? जब भगवान 4 दिन के थे। बड़ा अद्भुत वर्णन है, ध्यान से सुनिएगा। आज ठाकुर जी 4 दिन के हैं, 4 दिन का लाला है, बड़ा सुंदर रूप है। भोलेनाथ जी पहुंच गए, आकर के मैया के द्वार पर सबसे पहले कैलाश से निकले हैं बाबा भोलेनाथ। कैलाश से निकल ही रहे थे कि इतने में ही पार्वती जी ने आवाज दिया, अरे अजी कहां जा रहे हो? माताओं बहनों का ये थोड़ा सा स्वभाव होता है, जब पतिदेव किसी काम से बाहर निकले ना तो भले बात नहीं करेंगे, लेकिन जब निकलने ही वाले होंगे तब जरूर कहेंगे, अजी जा रहे हो, अच्छा आते टाइम 2 किलो आलू ले आना। तो चलते टाइम मैया टोकती जरूर है। तो भोलेनाथ जी बोले, कहीं नहीं, वो क्या है ना, लाला का जन्म हुआ है नंद महल, तो उनके दर्शन करने जा रहा हूँ। पार्वती जी बोले, ऐसे दर्शन करने जा रहे हो? रूप देखा अपना, कोई घुसने नहीं देगा? नंद बाबा की सिक्योरिटी बड़ी टाइट रहती है, आपको मालूम है, वहां कोई घुस नहीं सकता बिना आज्ञा को। ऐसे रूप से आपको कोई घुसने देगा वो तो भला हो, जो ब्याह पे आप ऐसे आए हो, मेरे माता पिता ने आपको ऐसे ही ब्याह दिया। क्योंकि भोलेनाथ जी तो भोलेनाथ जी है, ब्याह में देवताओं ने खूब काम हारा, थोड़ा आज तो थोड़ा सा ड्रेसअप चेंज कर लीजिए। जैसे कैसे कर लेंगे, किसी को अपनी छोरी देनी हो तो ऐसे ही दो जैसे हम हैं, हम किसी के लिए नहीं बदलने वाले। वही सांप सब पूरे गले में लटकाए, बोले महाराज कम से कम घोड़े पे तो बैठ जाओ, और कुछ नहीं तो कम से कम घोड़े पे बैठ जाओ। बाबा भोलेनाथ कहते, हमको घोड़े वोड़े की जरूरत नहीं, हमारा नंदी है, यही हमारा साथी और यही अंत तक साथ देगा, हम तो इसी पे बैठ के जाएंगे। नंदी पे बैठ गए, और नंदी पे भी बैठे उल्टा मुंह करके, इधर की तरफ मुंह करके, और बरात लेके जा रहे। देवताओं ने सोचा कि अजीब, ये तो शंभू हैं, इनको तो ना सम्मान से मतलब ना अपमान से, लेकिन अपमान तो हमारा होगा कि देखो देवता किसकी बरात में आए। इसलिए देवताओं ने क्या किया, बोले ये पीछे आते रहेंगे, हम सब पहले पहुंच जाते, और दूल्हा को छोड़ के ही सारी बरात आगे बढ़ गई। बाबा भोलेनाथ ने देखा ये तो छोड़ के चले गए हमको, अब हमारी बरात का क्या होगा? भोलेनाथ जी ने कहा, चिंता मत करो, हमारे पास बरातियों की कमी नहीं। उठाया डमरू और एक बार बजाया, डमरू बजाते ही दुनिया में जितने शमशान के भूत प्रेत हैं सब बाबा भोलेनाथ के सामने प्रकट हो गए। बोले कहिए महाराज, बोले कहिए नहीं, तैयार हो जाइए, बरात में चलना है। तो बोले महाराज हम तो तैयार हैं एकदम। और कैसे तैयार है? कोई है किसी का मुंह ही नहीं है, कई है किसी के 4-4 हाथ हैं, किसी के 10-10 पांव हैं, ऐसी अद्भुत बरात बाबा भोलेनाथ चल पड़ी। अब जैसे पहुंचे, बरात पहुंची हिमालय राजा के घर, तो सारी सखियां और सारी माताएं बाहर खड़ी थी आरती थाल लेके, बोले बरात आ रही है, दामाद जी आ रहे होंगे। सबसे पहले बरातियों की लाइन में चल रहे इंद्र देवता,

अब तो बस बस आ जाए दामाद जी, कैसे भी एक बार झलक देख लें। कैसे दामाद जी, नारद जी ने ऐसा कौन सा अद्भुत दामाद बता दिया हमें? नारद जी ने ही विवाह का प्रस्ताव रखा था। अब देवताओं की बारात खत्म हुई और भोलेनाथ जी की बारात हुई चालू। डम डम डम डम करते करते सारे पहुंचे। बोले दामाद जी कहाँ है? बोले दामाद जी वो देखो नंदी पे उल्टे बैठे। दामाद जी से कहिए उतरे तो सही। दामाद जी उतरे और उतर के सासू जी के सामने आए और जैसे मैना ने देखा कुछ बोल नहीं पाई और बस आरती की थाली हाथ से छूट गई और वहीं की वहीं बेहोश हो गई। ये नारद ने क्या? अब भोलेनाथ जी झांक के देख रहे हैं, साइड वाले से पूछते हैं माता जी कौन है? अरे माता जी नहीं, आपकी सासू जी है। बाबा बोले सासू कौन सा पदार्थ होता है? ले बाबा पूछो मत, बड़ा अद्भुत पदार्थ होता, आपको इन्हीं से लेना देना, आगे यही अपनी छोड़ी देंगे। अपने ब्याह में ये नहीं बदले। पार्वती जी कह रही हैं आज जब मिलने जा रहे हो ठाकुर जी से तो आज तो कम से कम अपना रूप बदलो। बाबा को लगा कि बात तो ठीक कह रही है पार्वती, क्या पता कोई घुसने दे नहीं घुसने दे। बाबा ने तुरंत कपड़े बदले, धोती पहनी, पगड़ी बांधी, गले में मोतियों की माला पहनी। चलने ही वाले थे कि तभी अपने गले से नाग उतार रहे थे, तभी एक नाग फुसफुसा के हाथ जोड़ करके कहता बाबा जी एक प्रार्थना है, कहूं अगर आपकी आज्ञा हो तो। बाबा जी बोले हाँ बिल्कुल कहिए, क्यों नहीं। ए बाबा जी छोटी मुंह बड़ी बात है, लेकिन देखो हमने एक बात सुनी है संतों के मुख से कि जब भगवान के सामने जाओ ना भगवान का दर्शन करने तो दिखावा नहीं करना चाहिए, जैसे आप हो वैसे ही जाना चाहिए, और हो कुछ और बन के कुछ और जाओगे तुम्हारा आज उससे तो कोई लाभ नहीं। बाबा भोलेनाथ बोले वाह मेरे बेटे, ये तू ही मेरा सच्चा साथी और मैं तुझे ही छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसे कैसे जा सकता हूँ। बोले बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। ये तो पार्वती की बातों में फंस गया, तुरंत अपने वो कपड़े उतारे और वही भस्म लगा के मुंडों की माला पहनकर बाबा एकदम तैयार, अब तो यही रूप में जाएंगे, दर्शन करा दे तो करा दे, नहीं कराए तो वो जाने। और लेके अपना त्रिशूल बाबा भोलेनाथ आ गए मैया के घर और आकर के जोर जोर से आवाज लगाई अलख निरंजन अलख निरंजन, अरियो मैया दरवाजा खोल दरवाजा खोल। मैया को लगा कोई द्वार पर साधु आए, गोपी को कहा दासी को कारी जरा जइयो देखियो कौन बाबा जी आयो द्वार पे। गोपी दौड़ के गई जाके देखा, बोला मैया ये कैसो बाबा जी आयो, ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी देखियो होगो मैया तेने ना कभी देखेगी। ऐसो कौन सो बाबा जी आगो? बोले मैया तू ही चली जा। मैया बड़े भाव से गई द्वार पर, संत आए घर में तो इससे बड़ा क्या हो सकता। मैया पहुंच गई और जैसे मैया बाहर गई बाबा का दर्शन किया, बस मैया खड़ी खड़ी कांप रही है। बोले बाबा जी कहां ते पधारे हो? बोले मैया बड़ी दूर ते आए हैं, हिमालय की गुफा में ते आए। अच्छा बाबा जी कहां लोगे, भोजन पाओगे के सोना लोगे के चांदी लोगे, कहां लोगे? बोले अरे मैया तो को हमारे स्वरूप देख के लग रहे हो कि हमको सोने चांदी की जरूरत है। अरे मैया हमको सोने चांदी की आवश्यकता नहीं, तो फिर बाबा कहाँ चाहिए? ले मैया मैं तो बड़ी दूर से तेरे लाला को दर्शन करने आयो, मैं तेरे हमने सुनो है तेरे घर लाला भयो है, एक बार वाको हमको दर्शन करवा दे।

तू जो कहेगो मैं तो कु दे दूंगा। तू कहेगो मोकु मैया एक बड़ो महल दे दे तो बाबा महल भी दे दूंगी, पर अपने छोरा के दर्शन नहीं करूंगा। बाबा बोले नहीं कराएगी, क्यों नहीं कराएगी? मैया बोली बाबा तेने अपनो रूप देखियो है, तेरे रूप पे देख के मो 80 बरस की बूढ़ी डोकर 4 दिन के छोरा की का हालत होगी। इतनो छोटो सो लाला और तेरे सामने लाऊं कहां पर, तो तेरे गले में ते कोई सांप सपूरो उतर के मेरे छोरा पे चढ़ गयो तो। अरे मैया तू नहीं जाने तेरो छोरा ऐसो वैसो नहीं है, सांपन ते नहीं डर पे वो। अरे मैया वो तो सांप पे सोवे है, और कहा बताऊं मैया आगे भविष्य में चल के तो वो 100 पनवारे सांप के ऊपर नाचेगो। सांप तो वाके वश में रहे। मैया बोली बाबा मेरो छोरा जो है ना ग्वारिया को छोरा है, सपेरा को छोरा नहीं है के सांपन पे नाचेगो। और वैसे भी बाबा है सके तेरे जहां तू आयो है, जहां लाला ते मिलने आयो है, शायद तू गलत एड्रेस पे आ गयो, कहीं और जानो चाहिए तो, क्योंकि मेरे घर में जो लाला रहे ना वो सांप वापन ते नहीं खेले, वो तो 4 दिन को लाला है। भूख लगे तो रोवे, हंसे, बात करे, तो बाबा लगे तू गलत जगह आ गयो। बाबा बोले नारी मैया मैं गलत जगह नहीं आयो, एकदम सही जगह आयो, तेरे लाला के दर्शन करने आयो हूँ। मैया बोली या ब्रज में बहुत लाला है, जा काई के भी दर्शन कर ले। बाबा बोले ना दर्शन तो तेरे ही लाला के करूंगा। मैया बोली देख बाबा तू हमको जाने नहीं है, हम बड़ी हटीली अम्मा है, एक बार अगर जिद कर ली ना तो फिर हमारी बात से हम हटेंगी नहीं। बाबा बोले तो मैया तू भी हमको नहीं जाने, हम भी बड़े हटीले बाबा हैं, एक बार तेरे आंगन में धूनी रमा के बैठ गए ना तो सब दास दासियों को भी लगा दे तो भी हटेंगे नहीं। मैया यशोदा बोली बाबा तू धूनी रमा च धूना रमा, मैं तो को दर्शन नहीं करवाऊंगी। बाबा बोले कब तक नहीं कराएगी, कभी तो अपने छोरा को बाहर लेके आएगी दरवाजे पे ते तब देख लूंगो। मैया बोली मेरे घर में एक नहीं कितने दरवाजे कितने द्वार है, कहीं ते भी ले जाऊंगी, पर जहां तू बैठे होगो वहां ते नहीं लेके जाऊंगी। बाबा बोले अपने छोरा को खेलवे तो बाहर भेजेगी? बोले नहीं भेजूंगी, या के ग्वाल वालन को घरन में ही बुला लूंगी, पर तो दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले अपने छोरा को ब्याह तो करेगी, ब्याह करेगी छोरा घोड़ी पे तो चढ़ेगो, तब तो बाहर निकालेगी घर से, तब दर्शन कर लूंगो। मैया बोली छोरा कुआरो रख लूंगी, पर तो दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले बड़ी हटीली अम्मा है, हम तो सोचे हम ही है जो कछे, पर ये तो हमारी गुरु है। अच्छो तुम्हें हम भी यही बैठे, जब तक दर्शन नहीं कराएगी हटेंगे नहीं, अंतिम सांस तक मर जाएंगे पर यहां से हटेंगे नहीं। मैया बोली बैठो रे मैं अपनो काम धंधो संभाल, और मैया भीतर चली। भोलेनाथ जी ने सोचा कि तो गड़बड़ है, मैया तो पूरी एकदम पूरे रोल में है, ये तो दर्शन नहीं कराएगी। फिर सोचा कि चलो जिनसे मिलने आए हैं थोड़ा सा उनसे भी तो अप्रोच लगा लें, कुछ क्या पता काम ही बन जाए। भोलेनाथ जी मनी मन ठाकुर जी को कहते अरे प्रभु से आपका दर्शन करने, और आप भीतर झुक के बैठ गए। अरे कुछ लीला करके कुछ एक बार कुछ करो ना। अब बेचारे ठाकुर जी बीच में फंस गए, एक तरफ मैया एक तरफ बाबा, किसकी माने। लेकिन बाबा अरे बाबा अगर दर्शन करना है तो कुछ दिन बाद आ जाते, हमको थोड़ा बड़ा हो जान देते, कुछ बोलते, हम अपने पांव से चल के बाहर आ जाते। अब तो 4 दिन के कुछ कर भी नहीं सकते रोने के अलावा। बोले हाँ प्रभु बस यही कर दो, यही करो, यही नाटक आपका सबसे बढ़िया रहे। बोले क्या आरंभ करो? ठाकुर जी ने सोचा ये एकदम बढ़िया नाटक रहेगा, और श्री ठाकुर जी ने पल्ले में पड़े पड़े रोना आरंभ किया, रोना आरंभ किया, जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। अब देखो कभी कभी बच्चे रोते हैं ना, एक तो होता सचमुच रोना, एक होता नाटक करके रोना। एक नाटक करके जब बच्चे रोते हैं ना तो बड़े ट्यून

होते हैं। इसका मतलब पक्का नाटक कर रहा है, वो एकदम रिदम में रोते हैं, एकदम ताल में। तो ऐसे ही ठाकुर जी रो रहे हैं। अब जय की आवाज आई, आवाज बाहर गई। अब बाहर गई तो एक गोपी बाहर से भीतर आई। अरे मैया कहा कर रही है, तो कु तो लगे छोरा भी पाल लो नहीं आवे, देख छोरा रो रहा है और तू आराम से बैठी है। मैया बोली गोपी कहा करो, बोले रो रहे हो है तो याकू कछु दूध पिला, कछु माखन मिश्री खिला। मैया ने दूध पिला दियो, अब भी चुप नहीं हुए। मैया खिलौना लेकर के झन झन झन हिलाई, तब भी चुप नहीं हुए। मैया ने पल्ला में झुलाए, तब भी चुप नहीं हुए। गोपी तो चुप ही नहीं है, अब कहा करे। गोपी बोली मैया मोकू तो लगे तेरे छोरा पे काई गोपी ने नजर लगा दी, क्योंकि मैया भूखो होतो तो दूध भी पिला दियो चुप है जातो, मैया कछु खेल खिलौना चाहिए तो चुप है जातो, पर मैया ये तो काई गोपी ने नजर लगाई। मैया बोली अब कहा करे, बोले कहा करे का नजर उतारो या की, बोले कैसे नजर उतारे, बोले जा रसोई ते वो लेके आ राई नून लेके आ भीतर। मैया गई, नमक लाई, राई मिर्ची लाई और लाला की नजर उतारी। आए की पलाए की अड़ोसन की पड़ोसन की भूतनी पिसाचनी यहाँ की वहां की इधर की उधर की सब मेरे लाला के ऊपर से उतर जाए। अब नजर उतारी, अब नजर उतारने के बाद तो कान्हा कम रोने चाहिए, पर ये और उल्टा डबल हो गए और जोर जोर से रोने लगे। गोपी अब कहा करे, ये तो अब भी चुप नहीं हुए। अब गोपी नए नए आइडिया देती जा रही है, बोली मैया देख दूध भी पिला दियो तब भी चुप नहीं भयो, या को खिलौना भी दियो तो भी चुप नहीं हो, नजर उतारी तो भी चुप नहीं भयो। अब तो मैया वो पक्की पतो चल गई बीमारी कहा है। मैया बोली कहा बीमारी है, बड़ी भयंकर बीमारी है मैया। अरे पर बीमारी है का, बोले मैया मोकू तो समझ आ गई या के ऊपर कोई भूतनी चढ़ गई, ओ मैया अब वह भूतनी को उतारवे के खातिर जब तक प्रयास नहीं करोगी तब तक ये छोरा चुप नहीं होगा। अरे गोपी भूतनी चढ़ गई है तो भूतनी कैसे उतरेगी, बोले मैं थोड़ी उतारूंगी, वाकई नहीं तो कोई बाबा जी कोई तंत्र मंत्र जानने वालों कोई बुलानो पड़ेगा वो भूत उतारे हो। तो गोपी अब कौन को बुला के लाए, मैं तो काय को जानू नहीं हूँ, भूत प्रेत मो तो पतो भी नहीं कैसे रहे। गोपी बोले मैया टेंशन मतलब मैं हूं ना, अभी काय को बुला के लाती हूँ। तुरंत घर से निकली थी कि दरवाजे पर बाबा भोलेनाथ धूना रमा के बैठे। गोपी ने देखी नजदीक गई, बाबा का रूप भी कुछ तंत्र मंत्र जैसा ही है, तो जाके पूछी बाबा एक बात बताओ तुमको भूत उतारने आते हैं। बाबा बोले पहले ये बताओ किसको चढ़े, उस पे डिपेंड करता है। बोले हमारी मैया है ना वह को लाला है, चार दिन को बड़े जोड़ते रो रहे हो, हमने सोची कोई भूत चढ़ रहे हैं तो भूत उतारे वालों कोई बाबा चाहिए, तो तुम तो सीधी बात पे आओ ना, तुम बताओ तुमको आते हैं कि नहीं आते। बाबा बोले हाँ, मन में सोचा कि उधर से नाटक चालू हो चुका तुम भी कर दो। बाबा जी बोले अरे गोपी क्या बात करती है तू, हमसे पूछ रही भूत उतारने आते कि नहीं आते। अरे गोपी मेरो तो नाम ही भूतनाथ है, मैंने ऐसे बड़े बड़े भूत उतारे हैं तेरे छोरा के ऊपर, इतनो कोई बड़ी बात है, अभी लेके आए एक चुटकी बजाएंगे और सब भूत उतर जाएंगे। वो पिराजी हो गई और खुश होती होती मैया, ओ मैया बाबा जी मिल गयो, भूत उतार देगो एक मंत्र पढ़ोगे और सब भूत प्रेत उतर जाएंगे। पर कौन सो बाबा जी, बोले मैया कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, यहीं तेरे आंगन में बैठो। मैया बोले ले कराई काम खराब, मैं कब ते वाते लड़ रही हूँ, दर्शन नहीं कराऊंगी नहीं कराऊंगी नहीं कराऊंगी, और तू वाकु जाके क्या ही के छोरा के भूत उतार दे, तेने वाको रूप देखियो है कैसो रूप है वाको। गोपी बोली मैया तो वाके रूप ते कहा लेनो देनो, तू ला जाके लाला को लेके गोद में दूर ठाड़ी है जाइयो, नजदीक मत जाइयो, और बाबा दूर ते ही मंत्र फूंक देंगे
और तेरो लाला एकदम स्वस्थ है। अब तो कू बाबा अपनो अहम ज्यादा प्यारो है या लाला को स्वास्थ्य ज्यादा प्यारो बता। भैया बोली मोकू तो लाला प्यारो। तो बस फिर ले अपनी गोद में लाला को और चल मेरे साथ बाहर, डर मत जाके ठाड़ी है जी। माँ यशोदा लाला को गोदी में उठाई, ऊपर से काला कपड़ा ढक दिया। कहीं छोरा को बड़ी भोली है मैया, बड़ी भोली है, ढक करके चल पड़ी। आगे बढ़ती बढ़ती डर डर के बढ़ रही है और डरती जा रही है, बढ़ती जा रही है। गोपी पीछे से मैया को आगे बढ़ा रही है। वहां भोलेनाथ खड़े हैं, यहाँ ठाकुर जी खड़े। और जैसे ही बाबा भोलेनाथ ने ठाकुर जी को देखा और श्री बाल कृष्ण लाल ने बाबा भोलेनाथ को देखा और जैसे नजर से नजर दोनों की मिली, मिलते ही श्री ठाकुर जी ने रोना बंद कर दिया, एकदम रोना बंद कर दिया। मैया बोली लगे बाबा जी जानकार तो है, इतनी दूर ते ही मंत्र फूके और छोरा चुप कर दियो। अब मैया को थोड़ा सा और इच्छा जागी और नजदीक जाने की, और नजदीक चली गई बाबा के और पास गई, और पास गई। माँ यशोदा मैया से पूछ रही है, मैया बाबा को दर्शन कराती है। बाबा ने दर्शन किया, दर्शन करने के बाद बोलते हैं कि मैया तेरे छोरा के ऊपर ते भूत सब प्रेत सब उतर गए। मैया बोली ऐसे कैसे उतर गए, जब तक या के कान में कछु मंत्र नहीं बोलोगे तो दोबारा भूत चढ़ जाएंगे, तो कान में कछु मंत्र बोलो तो सही। बाबा भोलेनाथ ने कान में मंत्र बोला और जैसे मंत्र बोला श्री ठाकुर जी जोर जोर से खिल खिला करके हंस दे। किसी ने पूछा ब्रजवासियों से कि भैया आप बताओ ऐसा कौन सा मंत्र बोला था कान में, तो बोले भैया मंत्र भंत्र कुछ नहीं बोला, चाचा वृंदावन दास जी का पद है और उसमें कहा कि कान में मंत्र नहीं बोला, बाबा भोलेनाथ ने कान में एक बार श्री राधा रानी का नाम बोल दिया और राधा बोलते ही श्री ठाकुर जी खिलखिला के हंस दी, जोर से हंस दी। भैया बोली हाँ बाबा जी तो बड़ा देखो अभी तो रो रहा हंसन लगे। मैया की इच्छा और बड़ी, अच्छा बाबा एक बात बता भूखनो आवे भविष्य। मैया ना ऐसी होती है, एक काम में 10 काम करना चाहती है। कोई एक आयोजन हो, एक कार्यक्रम हो, उसमें एकादशी का उद्यापन भी कर लेंगी, उसमें गृह प्रवेश भी कर लेंगी, एक ही काम में सब हो जाए ऐसा कुछ महाराज मुहूर्त बता दो। तो यहाँ पूछ रही है बाबा से, बाबा अच्छा भविष्य देखना आता है? बाबा बोले क्यों नहीं आता, किसका देखना है? बोले लाला को देखनो। बोले वाके ताई तो लाला को मेरी गोद में देनो पड़ेगा। मैया बोली ऐसे कैसे, तेरी गोद में कैसे दे दूंगी? बाबा बोले तो ठीक है मत दो हम चलते हैं। बोले ना ना ना ना बाबा रुक रुक जा रुक जा, तेरी गोद में दे दूंगी पर देख बाबा जरा संभाल के, अपने नागन ने थोड़ा संभाल के रख, समझा के रख। बाबा ने लाला को गोदी में लिया और हाथ का दर्शन करते करते बोले मैया अरे यशोदा मैया तेरे तो मैया भाग्य खुल गए, कैसो लाला पायो है तेने मैया, तो कु पतो नहीं तेरो कितनो नाम रोशन करेगो मैया, तो कु पतो नहीं यू बड़ो है के बहुत बड़ो राजा बनेगो मैया, बड़ो है के या के सोने के महल होंगे और तोर मैया हजारों लाखों या के दास दासी होंगे। मैया बोली बाबा मैंने तो कु काम की बात पूछी और तू कहा उल्टी सीधी बात बता तो जा रहे हो। अरे राजा बनेगो, नाम रोशन करेगो, बड़ो होगो, महल बनाएगो तो वो तो या के नहीं होगो, मेरे निया का होगो, मेरे निया भी तो कुछ बता। बाबा बोले मैया तू बता तो कु तेरे निया कहा चाहिए? बोले मोकू तो बस इतना बता दे कि मेरे घर बहू कब आएगी, मेरे लाला को ब्याह कब होगा। बाबा बोले 4 दिन को तेरा छोरा है, अभी यहाँ पे आँख खोलनी आवे नहीं और तो बहू की पड़ी है। बोले ना ना बाबा अब देखना यू कालो कलूटो सो है तो सारी ब्रज की गोपी कहें कि या को कोई अपनी छोरी नहीं देगो,
तो बाबा तू ही बता, अब छोरी नहीं, अब मैंने तो कितने सपने सजाए, बहू आएगी मेरे पाम दबाएगी, मोकू रोज नए नए व्यंजन खवाएगी।

जाएगी। और बाबा बताना, या को ब्याह होगो भी के नहीं होगो, या के हाथ में ब्याह की रेखा है के नहीं है। बाबा तो देख करके मैया को बता रही, मैया कैसी बात करती है तू, या के हाथ में ब्याह की रेखा है के नहीं है पूछ रही है। अरे मैया, या के हाथ में इतनी लंबी ब्याह की रेखा है कि यहाँ तक नहीं समा रही। बोले मतलब मैया, तेरे छोरा की 1, 2, 10, 50, 100 नहीं 16,108 ब्याह होंगे। अब जैसे मैया ने सुनी तो बस वहीं खड़ी की खड़ी। बाबा बोले कहाँ सोच रही है मैया? बोले बाबा न्यो सोच रही हूँ, अगर दिवाली वाले दिन मेरी सबरी बहू मेरे पाम छीने खट्टी आ गई तो मेरी का हालत होगी। बाबा वहीं बैठे बैठे मेरे तो 16,108। अरे बाबा काय को पागल बना रहे हो, या कलुआ को तो एक बहू नहीं मिलेगी, तू 16,108 की बात कर रहे हो, कौन देगो या को अपनी छोरी। बाबा ने कहा मैया अब जैसा तू सोचे सोच, भविष्य है देख लेना। मैया ने सोचा कि बाबा ऐसे ही मजाक कर रहे, मजाक में बोल दिया, पर मैया उसको मजाक में ले गई, अब उसको क्या पता ये सत्यता है। अच्छो भैया अब मैं चलू, समय है गयो है, भविष्य बता रहे हैं। ठाकुर जी कहते बाबा जी अब बहुत भविष्य बता लिया आपने, अब आप जाइए कैलाश पर्वत पर, मैया जी आपको याद कर रही होंगी, अब आप प्रस्थान करिए। तो भोलेनाथ जी मैया को प्रणाम करते हैं, कहते मैया अब मैं चलता हूँ। मैया कहती ना ना बाबा, तू यहाँ ते मत जा, ब्रज छोड़ के मत जा। क्यों? क्योंकि क्या का पतो कब मेरे छोरा को फिर नजर लग जाए, तो कोई तो चाहिए नजर उतारवे को। तब मैया कहती है रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे, जब जब लाल को नजर लगे तू तब तब दर्शन दीजे। यही रह जाओ बाबा। और बाबा भोलेनाथ वहीं ब्रज में अपने लाला के सानिध्य में रहे। आज भी ब्रज जाइए, चार स्थान पर चार रक्षक बन करके बाबा भोलेनाथ ब्रज में विराजमान।

0: 69.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: करने की सोच, बियर शर सब बंद पहन।
1: करण तुम लोग फेमस हो गए यार, पूरी कंट्री से फोन आ रहे हैं, पूरी कंट्री से। अरे चलो जवाब दो यार, तुम्हारी लगाई हुई आग अब फैल रही है यार। पुलिस, पुलिस, दिस इज अनरियल मैन, ये कैसे हो गया यार, वो कहां से आ गए? अरे यार मेरी करियर खराब हो जाएगा यार।
2: खत्म नहीं होती कि हम दूसरी देखने लगते हैं। एक नोटिफिकेशन आते ही हम अपना फोन ऑन स्पॉट चेक करते हैं। क्या एक्चुअल में हमारा माइंड हर वक्त कुछ नया मांगने लगा है? गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे हैं नया नजरिया। आज हम बात करेंगे द डोपामाइन ट्रैप की बी के सिस्टर्स के साथ। वेलकम मैम।
3: ओम शांति, गुड मॉर्निंग।
2: ज्योति जी, आज हमारा माइंड ना हर वक्त कुछ नया देखना, सुनना या एक्सपीरियंस करना चाहता है। क्या हम इंस्टेंट स्टिमुलेशन के आदि हो गए हैं?
4: कह सकते हैं, और आज के समय में तो बिल्कुल कहा जाता है कि हम इसके आदि हो गए हैं। आज हमें तुरंत चेंजेस चाहिए। हमारी खुशी ही परमानेंट नहीं रह रही है। थोड़ी देर के बाद हम ना सिर्फ मोबाइल्स में कुछ चीजें देख करके, बल्कि हम रिलेशन में भी बोर हो रहे हैं। हम रिलेशन में भी के साथ ज़्यादा टाइम तक स्पेंड नहीं करते हैं। इसी कारण शादी नहीं करना चाहते हैं, शादी से बचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक कमिटमेंट है, वहाँ एक बाउंडिंग हो गई है कि हमें साथ ही रहना है। आज लिविंग रिलेशनशिप चल रहा है, ये सब चीज़ें क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक जगह पर अपने आप के मन को टिका नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए जो है आज रिलेशंस में भी, इवन कहीं ना कहीं हम अपने पेरेंट्स से भी परेशान हो जाते हैं। आज के बच्चों को देखें तो पेरेंट्स से भी परेशान है, आज अपने भाई बहनों के साथ भी, फ्रेंड्स भी तुरंत चेंज कर रहे हैं हर एक चीज में। और ये जो चेंज है, ये कहीं ना कहीं हमें समय भी दिखा रहा है। आज आप समय भी देखें, अगर पूरा ईयर हमारा कैसे निकल जाता है, हम कहते हैं अभी तो साल आया था, अभी पूरा भी हो गया, हमें पता ही नहीं चला। तो वो स्पीड बढ़ गई है, क्योंकि उसका रीजन है हमारे थॉट बहुत स्पीड से चल रहे हैं, और जितने थॉट स्पीड से चलते हैं उतने हमें चेंजेस चाहिए होते हैं। हमारे जो कहीं कंसंट्रेशन पावर की आज कमी हो गई है, हमारी जो अंदर की इनर पीस आज हमारा वो कम हो गया है। कारण है कि हम उस दुनिया में भाग रहे हैं। आज किसी को भी आप देखेंगे तो कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन टाइम कहाँ जा रहा है वो कहेंगे वो पता नहीं, वो हमें भी नहीं पता कि कहाँ जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो तन से बिजी कम है, मन से ज्यादा बिजी है। मन जो है उनका बहुत जगह भाग रहा है, भाग रहा है। इसीलिए आज जो है खुशी भी परमानेंट या ज्यादातर एक ही चीज में नहीं रह पाती है, अलग अलग चीजें उन्हें चेंज करके चाहिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: सर, मैं बैंक से बोल रहा हूं। अच्छा, और मैं चांद पर प्लॉट बेच रहा हूं।
1: हेलो सर, हेलो सर,
0: आपका अकाउंट खतरे में है सर।
1: हेलो सर, हेलो सर,
0: पहले डराए फिर

0: पट्टी खुजा के बीती रात, रास्ता ना दिखे कोई आज, पति चला रात भगा, पासा पलट दे बोर्ड उलट दे,
1: अरे उठ बाजी ले अपने हाथ,
0: टाइम जा रहा है भाई तो करे रीस्टार्ट।
2: रीस्टार्ट।

0: पलक।
1: कभी कभी फोन पास नहीं होता और बिना किसी काम के भी हाथ ऑटोमेटिकली पॉकेट की तरफ चला जाता है। शोभा जी, जब फोन ना मिले और रेस्टलेसनेस होने लगे तो क्या ये सिर्फ हैबिट है या माइंड की डिपेंडेंसी?
2: ये बिल्कुल सही आपने पूछा कि आजकल के समय में हम अधिकतर फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। हम पहले थोड़ा 5 मिनट देखना शुरू करते हैं, फिर 10 मिनट, धीरे धीरे वो आधे घंटे में भी बदल जाता है और कब वो कई घंटों में या कई बार तो पूरा दिन ही हमारा उसमें निकल जाता है। तो धीरे धीरे आज हम उस फ़ोन के डिपेंडेंसी बनते जा रहे हैं और जैसे ही वो हमसे थोड़ी सी दूर भी छूटता है तो हमें उससे जो है अजीब सा महसूस होता है, रेस्टलेस महसूस होता है, हमें लगता है कि कुछ चीज़ हमसे छिन गई है। क्योंकि जब हम कोई चीज़ को करते हैं तो हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है और ऊर्जा पैदा होती है तो हमें उससे खुशी मिलती है और जब लगातार उस पर हम बार बार उसमें हम समय देते हैं तो अधिक हमें उससे खुशी मिलती है। लेकिन जब हम उसके आदि हो जाते हैं तो वो एक सैलाब की तरह आता है और वो हमें खुशी तो दे के जाता है लेकिन जब हमसे वो चीज़ छूटती है तो फिर हमें लगता है कि ये दुनिया ही हमारे लिए ख़त्म हो गई है और हम बिल्कुल कुछ करने के लायक ही नहीं है और हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो इसलिए लोग आजकल मोबाइल्स को लेकर के बहुत ज़्यादा एडिक्टेड भी होते जा रहे हैं और वो उनसे छूट जाता है तो लगता है कि हमारा संसार ही ख़त्म हो गया है।
3: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
1: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेंगे ब्रेक के बाद।

0: आज 10 मिनट शांति से बैठना मुश्किल लगता है, लेकिन 1 घंटा स्क्रोलिंग करना बहुत इजी। ज्योति जी, क्या हम इतने स्टिमुलेशन के आदि हो गए हैं कि साइलेंस भी बोरिंग लगने लगी है?
1: एक्चुअल में वो लग बोरिंग रहा है, लेकिन कर वही रहे हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: हम इसको कह तो बोरिंग रहे हैं, लेकिन हम उसी तरफ जा रहे हैं। आज अब देखिए, आज अगर हम किसी को बोलते हैं फैमिली में चलो, कहते नहीं आप चले जाओ, हमें घर में ही रहने दो, तो वो अकेलापन ही वो रहना चाहते हैं। एक्चुअल में वो अकेलेपन का कारण क्या है कि वो इंटरफेरेंस नहीं चाहते। हम कोई हमें किसी भी बात के लिए कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, इस तरह की लाइफस्टाइल आज हमने अडॉप्ट कर ली है। और इसी कारण से कहीं ना कहीं हम सबसे डिटैच होते जा रहे हैं, हम सबसे दूर होते जा रहे हैं। हमें अब लोगों के साथ बैठना ज़्यादा टफ, समय तक हमें वो बोरिंग लगने लगता है। आज जब अकेले भी होते हैं तब भी हम खुश हैं, ऐसा नहीं कि हम खुश हैं। क्यों? क्योंकि हम रील्स देख रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, उनकी इंजॉयमेंट देख रहे हैं। अब हम वहाँ कंपैरिजन करना शुरू करते हैं, उनके थॉट डिफरेंट हैं। उन सबको साथ लेके चलना ये एक बहुत बड़ा टास्क है। आज हम वो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए आज हम अकेलापन फील करते हैं। हम अकेला रहना, बोर होते हुए भी हम अकेले रह रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: हर वक्त कुछ देखते रहना जरूरी नहीं, कभी कभी माइंड को कुछ ना करने की भी जरूरत होती है। शोभा जी, अगर कोई अपना टेंशन और इनर पीस वापस पाना चाहता है तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए?
1: देखिए, सबसे पहला स्टेप तो हमारे जीवन में जो है अपनी दिनचर्या के साथ साथ अपनी मनचर्या को भी सेट करना जरूरी है। दो चीज़ें हैं, एक दिनचर्या, दूसरा मनचर्या। हम लोग अपने दिनचर्या पर तो ध्यान देते हैं, सुबह कितने बजे उठना है, कौन सा काम किस समय करना है, लेकिन मनचर्या पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए दिनचर्या के साथ साथ मन में भी कोई ना कोई थॉट्स लेकर हम पूरे दिन चलें कि हमें इस समय क्या सोचना है, क्या पॉजिटिव विचार लेकर के चलना है, किस समय क्या बात सोचनी है। तो जब एक सिस्टम बनाएंगे अपने साथ तो धीरे धीरे हमारे अंदर जो व्यर्थ सोचने की जो हैबिट बन चुकी है या अधिक किसी चीज़ में हम अधिक इंटरेस्ट ले लेते हैं तो बहुत देर तक उसी में ही खोए रहते हैं, तो उससे हम छूट जाएंगे और फिर हमारे अंदर एक जो वापस हमें पीस चाहिए अपने लाइफ के अंदर, जो वापस अपने अंदर हैप्पीनेस चाहिए, वो हमारे अंदर आ सकती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
0: बीके सिस्टर्स, थैंक यू सो मच इतनी मीनिंगफुल बातें शेयर करने के लिए।
1: ओम शांति।
3: थैंक यू।
0: दोस्तों, थोड़ा स्क्रोलिंग कम करके कभी अपने माइंड को भी साइलेंस दीजिए। हो सकता है जिस पीस को हम स्क्रीन पर ढूंढ रहे हैं वो हमें थोड़ी देर स्क्रीन से दूर जाकर मिले। मैं हूँ आरजे पलक, आपसे इजाजत लेती हूँ। फिर मिलेंगे नया नजरिया में, एक नए टॉपिक और एक नए नजरिए के साथ। तब तक बने रहिए 89.6 रेडियो महारानी के साथ।

0: Watch my biggest blockbusters online anytime, anywhere on erosnow.com.
1: सलमान खान की कॉमेडीज, रोमांस और एक्शन मूवीज एंजॉय कीजिए। अपने फोन या आईपैड से इसी वक्त साइन अप कीजिए और फ्री में देखिए सिर्फ इरोस नाउ पर।

गुड मॉर्निंग फरीदाबाद। भाई वीकेंड खत्म हो गया है और लगा दी है मंडे ने अटेंडेंस। और मंडे के साथ साथ आ गई है अंजलि ऑन एयर। और देखिए भाई बहुत सारी चीजें लेकर आई हूँ, लेकिन सबसे पहले ये बताइए ये वीकेंड कैसा रहा। ये वीकेंड कुछ खास था, बिकॉज इस वीकेंड में ना हर कोई देशभक्ति के रंग में डूबा हुआ था और बहुत सारी चीजें थी इस बार करने के लिए। तो ना ये वाला वीकेंड तो आई नो बहुत मजेदार रहा होगा। हम सब ने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है और मंडे मॉर्निंग आ गए हैं एक नए जोश के साथ। आज कोई भी नहीं बोलेगा कि भाई मंडे मॉर्निंग वाले मंडे ब्लूज फील हो रहा है, बिकॉज मुझे खुद को इतनी एनर्जी फील हो रही है। तो देखिए आधा साल चला गया, अब आधा साल रह गया है, तो इस आधे साल को ना जो जो सोचा था ना अपनी विश लिस्ट में पूरा कर लीजिएगा इस आधे साल में। और बस न्यू ईयर ना फिर एक नए सेलिब्रेशन के साथ सेलिब्रेट करेंगे, हैप्पीनेस के साथ। देखिए कहां में न्यू ईयर पर चले गए, खैर अभी बात कर लेते हैं, बैक टू पवेलियन हो जाते हैं। और आज बात करते हैं आज क्या कुछ होने वाला है। तो आज बहुत गज़ब है कि भाई एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, तो मंडे मूड को ऑन करते हैं और चलते हैं आगे। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मसाले वाली चाय की गर्मा गर्म सिप लीजिएगा। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: industrya, his designs are to die for. Mehta. Huh?
1: Malhotra.
0: Sweet. Sweet Malhotra.
2: ये तो ही है यार, जिदी
0: भाभी फैन।
1: अच्छा
0: मैं भी स्वीट मल्होत्रा वांगू बनना चाहती हूँ।

ये गाने इतने अमेजिंग बजाती हूँ ना कि मन ही नहीं करता कि गाने रोककर आपसे बातें करूँ। लेकिन यहाँ आई हूँ सुबह 7 बजे और 7 बजे से 11 बजे तक आपके साथ रहने वाली हूँ, तो बातें तो बहुत सारी होने वाली है। तो भाई चलिए फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ कि आज आपके शहर में ना वेदर का क्या हाल रहने वाला है। तो मंडे मॉर्निंग का मूड बहुत ही अमेजिंग है, आज मौसम का भी ना बहुत ही अच्छा मूड है और मौसम कह रहा है फटाफट से चाय और गर्मा गर्म पकौड़ी हो जाए तो मजा आ जाए। तो देखिए बारिश कभी भी आ सकती है, आप सभी को पता है मॉनसून चल रहे हैं और मॉनसून ना कभी भी धूप, कभी भी गर्मी, कभी भी बारिश, कभी भी तूफान लेकर आते हैं। तो अपने साथ आज अम्ब्रेला जरूर कैरी कीजिएगा। चलिए फिर बात कर लेते हैं हाईएस्ट टेम्परेचर की। तो आज हाईएस्ट टेम्परेचर रहने वाला है 35 डिग्री और मिनिमम रहने वाले 28 डिग्री और इसी के साथ ही ना रेन, थंडरस्टॉर्म इन सब की वार्निंग हमें मिल गई है। तो देखिए लाइट एंड मॉडरेट रेन हो सकती है, जिसके लिए आपको पता है ना क्या करना है, घर से रेनकोट और अम्ब्रेला जरूर लेकर जाना है। और ये जो वेदर है ना वो कभी भी सरप्राइज देता है, तो जब भी आपको सरप्राइज देना आप अम्ब्रेला दिखाकर इसे शॉक कर देना। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए, ये ट्रैक बोला था ना गाने बहुत ही अच्छे बजाती हूँ, तो अब वक्त हो गया है गाने सुनाने का। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। 1, 2, 3

Namaste, myself Dr. Rajni Beniwal. I am a dentist and a nutritional psychologist. Over 13 years of experience, I'm a women health coach and a teen parenting expert. So, हमारी daily diet में nutrition balance maintain करना क्यों जरूरी है? Nutrition और food हमारी life का basic fuel है. अगर हम सही amount of food नहीं खाएंगे, सही quality of food नहीं खाएंगे, तो हमारी body का balance definitely बिगड़ जाएगा. हम लोग गो की बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है अलग अलग वर्क काम करने के लिए. हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, प्रोटीन्स की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, मिनरल्स और विटामिंस की बहुत ज्यादा जरूरत है और कुछ हेल्दी फैट्स की बहुत जरूरत है. एंड द बेसिक थिंग इज हाइड्रेशन, एक कंप्लीट अमाउंट में वाटर इनटेक मस्ट. तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिंस, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, इन सबके सोर्सेस का हमें पता होना बहुत जरूरी है. और कार्बोहाइड्रेट्स हमें अनाज से मिलता है, विटामिंस एंड मिनरल्स हमें अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं, एक अच्छा गाय का देसी घी से हमें बहुत अच्छा गुड फैट मिलता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरली पार्ट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हमें दाल और बहुत सारी चीज, पनीर और मीट, एग, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है. और अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत जरूरी है. ये सब चीजें जब बैलेंस्ड रहेंगी तभी हमारी बॉडी में हर एक चीज तरीके से काम कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे. तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है और न्यूट्रिशन को समझ के खाना खाना ही आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है. डॉक्टर कॉलिंग.

हाँ जी, चलिए फिर बात करते हैं तारीख पर तारीख की। और आज की तारीख क्या कहती है, तो देखिए आज की जो तारीख है ना पूरा हफ्ता लेकर आई है। तो भाई आज मैं बात करने वाली हूँ नेशनल साइंस वीक की। और अगर साइंस की बात की जाए ना, तो साइंस सिर्फ लैब कोट या फिर टेस्ट ट्यूब तक नहीं रहती। इतनी बोरिंग नहीं है साइंस। आपकी मॉर्निंग चाय से लेकर आपके मोबाइल के 5G तक हर जगह साइंस है। और इसी साइंस वीक को सेलिब्रेट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में नेशनल साइंस वीक चल रहा है, यानी कि 15

और सुनिए ये गाने जो है खास आपके लिए। तो भाई देखिए, रेडियो भारती पर डेली आती हूँ, सिर्फ बातें नहीं करती, गाने भी बजाती हूँ। तो इन गाने को कीजिए एंजॉय। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

सिनेमा लवर्स, वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूं गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 9.6 एफएम, जहां मैं बात करती हूं उन मूवी शोज और ओटीटी अपडेट्स की जो इन दिनों एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में लगातार चर्चा में है। और इस हफ्ते की ओटीटी कन्वर्सेशन में एक नया नाम ऐसा भी है जिसको इग्नोर करना थोड़ा सा मुश्किल है, द ट्रेटर सीजन 2 वापस आ चुका है और इस बार गेम पहले से भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल लग रहा है। करण जौहर फिर से साइकोलॉजिकल रियलिटी गेम को होस्ट कर रहे हैं, लेकिन असली अट्रैक्शन वो 21 सेलिब्रिटी प्लेयर्स जो एक पैलेस में एंटर करते हैं, जिसमें से कुछ होंगे इनोसेंट और कुछ होंगे सीक्रेटली चुने हुए ट्रेटर्स, मतलब सामने बैठा इंसान दोस्त है, एले है या फिर वही आपको गेम से बाहर लाने की पूरी प्लानिंग कर रहा है। ये पता लगाना इस पूरे गेम का सबसे बड़ा चैलेंज है। सीजन में मलिका शेरावत, मुनव्वर फारूकी, रिया चक्रवर्ती, श्वेता तिवारी जैसे कई फेमिलियर फेसेस नजर आ रहे हैं और यही सेलिब्रिटी मिक्स शो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है। लेकिन द ट्रेटर्स की खासियत सिर्फ सेलिब्रिटी फेसेस नहीं है, बल्कि इसका पूरा फंड ट्रस्ट और बीट्रेल के बीच है। यहाँ लाउडेस्ट प्लेयर जरूरी

कहीं की स्मार्टेस्ट प्लेयर हो और जो सबसे ज्यादा इनोसेंट दिखाई दे, हो सकता है वही सबसे बड़ा ट्रेटर निकले। तो अगर आप रियलिटी टीवी को सिर्फ ड्रामे के लिए नहीं बल्कि माइंड गेम, स्ट्रेटजी, एलिगेशंस और डिसेप्शन के लिए देखना पसंद करते हैं तो द ट्रेटर सीजन 2 इस हफ्ते आपकी ओटीटी वॉच लिस्ट में जगह बना सकता है। और हाँ, एक और बात, इस गेम में किसी पर जल्दी ट्रस्ट करना शायद आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है।

0: watch more, log on to www.erosnow.com.
1: थोड़ा सा रुक जाते हैं, इन गानों को थोड़ा सा पॉज दे देते हैं और चलिए फिर बातें कर लेते हैं बॉलीवुड बस की। आज का बॉलीवुड बस क्या लेकर है? आज का बॉलीवुड बस लेकर जा रहा है आपको अनीता हसनंदानी के पास। और अगर अनीता की मैं बात करूँ ना, टीवी की ये वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने हमेशा से नेगेटिव कैरेक्टर्स निभाए और ऑडियंस को ना बहुत ज्यादा पसंद आए इनके कैरेक्टर्स। यस यू हर्ड इट राइट, ये नेगेटिव रोल्स के साथ अपने फैंस के साथ एक अलग कनेक्शन बनाते हैं। तो अगर इनकी मैं बात करूँ ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में नजर आई है। फिर बात की जाए काव्य अंजलि की, अंजलि से ना कुछ याद आ गया, और ये है मोहब्बत की शगुन। और अनीता ने ना टीवी पर अलग अलग कैरेक्टर के शेड्स प्ले करके ना अपने फैंस के दिलों पर एक छाप छोड़ी। और इतना ही नहीं, अनीता बड़े पर्दे से लेकर ना आपके घर के सीरियल तक नजर आई हैं। तो चलिए फिर विश करते रेडियो मारन विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे अनीता, आप ऐसे हैप्पी रहे, हेल्दी रहे और अपने फैंस का दिल जीतते रहे। और साथ ही सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: पुरानी कहावत है कि सबसे ऊपर जाना है तो बहुत सारी मेहनत चाहिए, लेकिन अगर सबसे ऊपर टिकना है तो माँ की दुआ चाहिए। तुम्हारा मुझ तक पहुंचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि धूल कितनी भी ऊंची चली जाए कभी आसमान को गंदा नहीं कर सकते।
1: Yo, G-Funk.

नाचू मैं आज छम छम छम। देखिए भाई, छम छम की जगह ना नाचिएगा छप छप छप। अगर आप जा रहे हैं एयरपोर्ट, अब आप बात करेंगे यार अंजलि, एयरपोर्ट तो फ्लाइट लेने जाते हैं ना, तुम कहाँ स्विमिंग पूल के दर्शन कराने वाली हो। तो आज का सोशल स्यापा है इसी से जुड़ा हुआ। चलिए फिर फरीदाबाद से लेकर चलते हैं आपको सीधा नोएडा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जो अपने आप में ही ना एक बहुत लग्जरी एयरपोर्ट है। और अगर मैं बात करूँ ना इस एयरपोर्ट की, तो भाई पहले क्वालिटीज जान लेते हैं। क्वालिटीज ये है कि एक हैवी रेन के बाद ना न्यूली ओपन्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल और पार्किंग एरिया को कनेक्ट करने वाले पैसेज में वाटर लॉगिंग हो गई। और जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया ना, बवाल मच गया, एकदम से वायरल हो गया वीडियो। और जब पूछा गया एयरपोर्ट के अथॉरिटीज से, तो अथॉरिटीज के मुताबिक गलती बारिश की है, क्योंकि बहुत कम टाइम में ना बहुत ज्यादा बारिश हो गई, जिसके वजह से पानी जमा हो गया। और जब पानी जमा हुआ तो पानी निकला ही नहीं और पानी वहीं रह गया, जिसके वजह से अंडर वन रूफ आप फ्लाइट भी ले सकते हो एक ही जगह से, और आप बोट के मजे भी ले सकते हो। तो देखिए, अगर अभी तक आपने नोएडा का एयरपोर्ट नहीं देखा है ना, तो इन बारिशों में ना एक बार चले जाना, एक बार मजे आप भी लेना कि कितना इंटरनेशनल लैविश एयरपोर्ट बना है। तो देखिए, अब इंटरनेट पर वीडियो आया तो प्रतिक्रिया भी इंटरनेट पर मिलेगी, यानी कि टॉन्ट्स भी। तो भाई लोग जमकर टोंट कर रहे हैं इस एयरपोर्ट को और कह रहे हैं एयरपोर्ट कम सी पोर्ट ज्यादा हो गया। और अब सवाल ये है कि बोटिंग पास मिलेगा या फिर स्विमिंग कॉस्ट्यूम, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। और बताने के लिए आपको बताना कहाँ जाना है, तो फटाफट से आइए हमारे सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पेज पर, और वहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया यानी कि अपने टोंट, अपने POVs हमें दे सकते हैं। और साथ ही बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

इंसान तरसेगा।

फिक्स्ड सैलरी जब आती है ना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आने के बाद ना कब एक दिन में ही खत्म हो जाती है, तब बहुत बुरा लगता है। और तब ऐसे टाइम पर ना काम आता है आपका एक्स्ट्रा मनी जो आप अर्न करते हो, और यही एक्स्ट्रा मनी को डबल करने के लिए मैं आ गई हूँ और आपको ये बताने वाली हूँ कि आज का बिजनेस बस क्या लेकर आया। तो भाई देखिए, आज हम बिजनेस बस में बात करने वाले हैं होम सर्विस कोऑर्डिनेटर की, यानी कि जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जिनके पास दुकान खोलने के पैसे नहीं है, तो यहाँ पर आपके लिए ही लेकर आई हूँ आज की टिप। आपको कोई भी शॉप खरीदने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है सर्विस का नेटवर्क खड़ा करने का, यानी कि आज का आइडिया लेकर आया है होम सर्विस कोऑर्डिनेटर को। आपको खुद इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, एसी टेक्नीशियन, यहाँ तक कि अप्लायंसेस रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने एरिया के सिर्फ 4 से 5 ट्रस्टेड टेक्नीशियंस को एक नेटवर्क में जोड़िए और बस कस्टमर्स तक पहुंच जाइए। और कस्टमर्स तक पहुंचना कैसे, पहले उन्हें कॉल करना है, व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट ऐप हैंडल करनी है, और साथ ही ये जो वर्कर्स है इन्हें वेरीफाइड जॉब असाइन करनी है, दैट्स इट। और जितनी भी सर्विस होगी ना उस पर आपका फिक्स्ड कमीशन है। तो आपको इतना ही करना है, सर्विस कोऑर्डिनेटर बनना है। और आपको पता है आजकल ना हर कोई जल्दी में, किसी के पास टाइम ही नहीं है खुद से कोई प्लम्बर ढूंढने के लिए, खुद से कोई टेक्नीशियन ढूंढने के लिए, तो ऐसे में बन सकते हैं आप इनके मीडिएटर। देखिए आइडिया बहुत ही अच्छा है, इस आइडिया पे अमल कीजिएगा। और अगर आपके पास भी कोई बेहतर आइडिया है तो आपको पता है ना कहाँ जाना है, तो फटाफट से आ जाइए रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर अपना आइडिया हमें पिच कीजिए और साथ ही एंजॉय कीजिए ट्रैक। अभी मिलते हैं थोड़ी देर में।

0: के आगे गराज, गराज की ये मैकेनिक।
1: देखो मुझे पापा ने तेरे कहा उसले रानी, जैसे भी हो शादी तुमसे करनी।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: नमस्ते, माय सेल्फ डॉक्टर रजनी बेनीवाल। आई एम अ डेंटिस्ट एंड अ न्यूट्रिशनल साइकोलॉजिस्ट। आई एम अ वुमेन हेल्थ कोच एंड पेरेंटिंग एक्सपर्ट।

over the 13 years of experience as social media is growing, I can see बहुत सारे लोग social media follow करते हैं, बहुत सारे trends follow करते हैं, बहुत सारे influencers और celebrities को follow करते हैं और crash diets करते हैं जो कि उनकी body के लिए बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं है। Different बनाए हैं, हम सबकी body अलग है, हमारा daily routine ही decide करता है कि हमें कितने amount में कितने न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स कंज्यूम करने चाहिए। एक नॉर्मल जो हम घर की थाली में खाना खाते हैं वो हमारे डेली नॉर्मल रूटीन के लिए कंफर्टेबल है, लेकिन आप कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं या एक पर्टिकुलर किसी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स का आपको जानना बहुत जरूरी है और वो आप एक नियर बाय डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह से ही डिसाइड करें कि कौन सा सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपके लिए सही रहेगा, कितना प्रोटीन आपको कंज्यूम करना चाहिए और अपनी डाइट में आपको क्या वेरिएशंस लाने चाहिए कि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सके। तो अपने आप कुछ भी रैंडमली मत खाइए, एक सही सलाहकार की मदद से ही आप अपने भोजन को चुनिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। धन्यवाद।

हेलो हेलो जी, तो आ गई मैं फिर से लेकर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। और आज की इम्पॉर्टेंट अपडेट उन सभी क्रिएटर्स के लिए है जो YouTube से अर्निंग के ड्रीम्स देख रहे हैं। तो भाई देखिए, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये अपडेट ना आपका दिल तोड़ने वाली है आज, तो अपने दिल को रखिएगा थाम कर, बिकॉज YouTube ने अनाउंस कर दिया है फ्रॉम 1 February 2027 से। सो भाई, जितने भी नए क्रिएटर्स है ना, उनके लिए एड रेवेन्यू मोनेटाइजेशन के लिए एंट्री क्राइटेरिया टफ होने वाला है। तो चलिए फिर अभी का क्राइटेरिया भी जानते हैं। और अभी का एड रेवेन्यू क्राइटेरिया कहता है कि आपको 1000 सब्सक्राइबर के साथ 4000 वैलिड पब्लिक वॉच आवर्स या फिर 90 दिन में 1 करोड़ शॉर्ट्स व्यूज चाहिए। तो भाई जो ये न्यू रूल्स आए हैं, ये अपने टारगेट को ना डबल करके आए, यानी कि अब आपको चाहिए 8000 वॉच आवर्स, 2 करोड़ शॉर्ट व्यूज बस। मुश्किल है, आई नो, लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और आज नहीं तो कभी तो सही। तो देखिए, शुरुआत तो आपको करनी है, और इसी के साथ ना एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये सिर्फ चेंजेस न्यू क्रिएटर्स के लिए हुए हैं जिनका अकाउंट बनेगा न्यू, और जितने भी पुराने क्रिएटर्स है ना, उनके लिए पुराने रूल्स ही चलेंगे। तो भाई यहाँ पर हुआ है भेदभाव और ये पार्शियलिटी है। तो देखिए, यहाँ पर अब आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। सिर्फ एक शॉर्ट्स के भरोसे मत बैठिएगा, कंसिस्टेंट कॉन्टेंट और लॉयल ऑडियंस जरूर बनाएगा, और फिर देखिएगा एक दिन आपके वॉच आवर्स, आपके जितना भी क्राइटेरिया है कंप्लीट हो जाएगा, और आप भी अच्छा खासा अर्न कर पाएंगे। लेकिन तब तक के लिए बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। खैर, मेहनत करेंगे, लेकिन उससे पहले करते हैं अपने मूड को थोड़ा सा लाइट, और मूड को लाइट करने के लिए ना बजा देती हूँ एक शानदार सा गाना। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को, आती हूँ ना थोड़ी देर में।

सिनेमा का कैप्सूल, मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम, जहां सिनेमा की दुनिया से आती है सबसे फ्रेश और इंटरेस्टिंग अपडेट्स। अब वीर पहाड़िया ने अपनी अगली फिल्म अनाउंस कर दी है और नाम है प्रेम कीटाणु, लेकिन नाम से ज्यादा मजेदार है इसका पोस्टर, क्योंकि वीर ने खुद इसे शेयर करते हुए लिखा है, ना नंबर मिले, ना जॉब, ना ही प्यार, बस टूटे हुए दिल और अच्छे दोस्त लेकर आ रही है प्रेम कीटाणु। फिल्म में वीर के साथ है अपार शक्ति खुराना और राकेश बेदी और इसे डायरेक्ट करेंगे अपूर्व सिंह करकी। तो प्यार मिला हो या ना मिला हो, प्रेम कीटाणु जरूर मिल गया है। तो ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

नीतू झट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकाली पंग होगी।

हेलो हेलो जी, तो आज का सोशल स्यापा लेकर आ गई और आज का सोशल स्यापा है एकदम फिल्मी। कभी आपने सोचा है कि आप बॉयफ्रेंड रेंट कर सकते हो? तो भाई, जो लोग सिंगल है ना, जिन्हें बॉयफ्रेंड नहीं मिलता, तो बॉयफ्रेंड रेंट करने वाला ट्रेंड चला था। तो भाई, यहाँ पर हैदराबाद पुलिस ने ना जितने भी लड़कियां, उन्हें वॉर्न कर दिया है, रेंट ऑफ बॉयफ्रेंड ऑफर से एकदम सावधान रहिए। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर जितने भी अट्रैक्टिव प्रोफाइल्स बनाकर कॉफी डेट, मूवी, शॉपिंग, यहाँ तक कि वेडिंग में पार्टनर बनाने जैसे पैकेजेस ऑफर में आ रहे थे और यहाँ पर लिखा जा रहा था कि रेंट ऑफ बॉयफ्रेंड। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर तब आया जब पुलिस वाले को पता चला कि यहाँ कोई तो गड़बड़ है, क्योंकि ये जो प्रोफाइल्स हैं ये AI जनरेटेड और इंटरनेट से चोरी हुई वाली प्रोफाइल थी, यानी कि इसके पीछे हो सकते हैं साइबर ठग्स। तो आज की स्टोरी आपको ये बता दी है कि इस तरह के किसी भी स्कैम में मत फंसिएगा। अगर आपको कोई पार्टनर बनाना है तो वर्चुअल वर्ल्ड से नहीं, रियल वर्ल्ड से बनाइए। और अगर आपको कोई कहता है ना कि चलिए बॉयफ्रेंड डेट पर चलकर एक डेट करता है, तो भाई उस पैकेज को बिल्कुल भी मत लीजिएगा, बिकॉज हो सकता है यहाँ पर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक कर दें और खुद ही अपने आप को साइबर क्राइम का पार्ट बना लें। तो ऐसी चीजों से रहिए अवेयर और साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM।

हेलो हेलो जी। तो चलिए फिर अब फरीदाबाद से निकल कर चलते हैं सीधा बैंगलोर। और बैंगलोर जाने की वजह ये है कि एक और साइबर स्कैम आ गया। वही बात है कि आंखें बंद करते नहीं और मार्केट में आ जाता है एक और स्कैम। तो देखिए, बैंगलोर में एक 80 इयर्स ओल्ड मैन के साथ स्कैम हो गया। तो ये स्कैम भी हुआ SIR के ऊपर, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिविजन फॉर्म वेरीफाई करने के नाम पर फेक इलेक्शन ऑफिशियल ने कॉल किया उन्हें और करीब ठग लिए इनसे 3.5 लाख रूपए। अब देखिए यहाँ पर स्कैम हुआ क्या। सबसे पहले स्कैमर्स ने इनसे बात की और इनको ना ट्रस्ट दिलाया, और ट्रस्ट कैसे दिलाया, गवर्नमेंट प्रोसेस के नाम पर। और फिर क्या था, वेरिफिकेशन के बहाने कर लिए गए पैसे ट्रांसफर। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको ये जरूर याद रखना है कि कोई भी गवर्नमेंट वेरिफिकेशन कॉल आए, प्रेशर में पेमेंट मत कीजिएगा कभी भी। ऑफिशियल वेबसाइट या फिर डिपार्टमेंट के वेरीफाइड नंबर से खुद को क्रॉस चेक कीजिएगा। और अगर आप कर चुके हैं कॉल, प्रेशर में आके पेमेंट भी कर चुके हैं ना, और अगर आपका पैसा साइबर फ्रॉड में चला भी गया, तो आपको क्या करना है, तुरंत 1930 पर आपको रिपोर्ट करना है। आपको पूरा इंसिडेंट बताना है कि आपके साथ क्या हुआ है, और होपफुली आपके पैसों की रिकवरी हो जाए। तो भाई यहाँ पर गोल्डन रूल ये है, जब भी स्कैमर बोले अभी वेरीफाई करो, आपको बोलना है पहले मैं वेरीफाई करता हूँ तुम असली हो या नहीं, और उसी के बाद ही पेमेंट कीजिएगा। और इसी के साथ स्टे अलर्ट, स्टे साइबर स्मार्ट। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ट्रैक, और मिलते हैं ना थोड़ी ही देर में।

0: लो सर, मैं बैंक से बोल रहा हूं। अच्छा, और मैं चांद पर प्लॉट बेच रहा हूं।
1: हेलो सर, हेलो सर,
0: आपका अकाउंट खतरे में है सर।
1: हेलो सर, हेलो सर,
0: पहले डराए।

non, please.

हाँ जी, तो चलिए डू यू नो से सीधा चलते हैं डिड यू नो पर। और डिड यू नो पर जाने से पहले ना, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम रात को सपने देखते हैं लेकिन सुबह उठकर ना वो सपने ब्लर हो जाते हैं। मेरे साथ तो खासकर ऐसा होता है, कभी कभी ना मुझे सपनों का पूरा प्लॉट याद है। इसी तरह ना काफी सारे ऐसे लोग हैं जो रात को हसीन सपना तो देखते हैं लेकिन जब भी सुबह आंखें खुलती है ना तो ऐसे लगता है कि कुछ तो था जो आप पता नहीं कहाँ गए। तो भाई देखिए, अब इसके पीछे भी एक साइंस है। यहाँ पर साइंस अपनी गुगली फेंक कर कहता है कि जब भी आप सपने देखते हो, स्पेशली जब भी आप रेम स्लीप में होते हो, रेम स्लीप में जुड़ा हुआ कोई भी सपना आपके ब्रेन प्रोसेसर तक पहुँचता ही नहीं है क्योंकि उस वक्त होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर हमेशा लो एक्टिविटी में। और यही रीजन है कि हमें अपने सपनों की इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म तक याद ही नहीं रहती क्योंकि हमारी मेमोरी में वो स्ट्रांगली फीड ही नहीं होती। तो देखिए, आप जब भी सपने देखे और अपने सपने भूल जाना तो अपने आप को ना प्रेशराइज मत कीजिएगा कि क्या सपना था। बस ये सोचेगा ओ मैं रेम स्लीप में था, और बस फिर से ना वो सपना दोबारा से क्रिएट करने की कोशिश कीजिएगा। और पता है यहाँ पर ना एक इंटरेस्टिंग बात भी है, और इंटरेस्टिंग बात ये है जब भी आप सपने देखते हैं ना तो तुरंत उठने के बाद ना कुछ भी काम मत कीजिए, उस सपने को याद करने की कोशिश कीजिए तो ज्यादा चांसेस होता है कि वो सपने आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। और अगर इसके अलावा आपने फोन इस्तेमाल कर लिया, आपने

किसी से गुड मॉर्निंग कर दिया ना तो आपका सपना होने लगता है धीरे धीरे फिर। तो भाई अगली बार जब भी आप कभी सपना देखे हैं तो सबसे पहले सपने को चेज कीजिए, फोन को नहीं। मैं तो ना सपने खुद बना भी लेती हूँ मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करती हूँ। गया तो गया सपना, फिर से बना लेंगे, अपना ही तो है वाह सपना अपना ही तो है। और इसी के साथ ही एंजॉय कीजिए ट्रैक जो आपका है, और मिलते हैं कुछ ही देर में।

नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो हम कर सकते हैं रोज, इजी बेसिक चीज़ें ऐसी। सबसे पहले हम बेसिक मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो है बेसिक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। मेरे पास कई मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि हम मॉर्निंग में नहीं कर सकते, मॉर्निंग में बिजी होते हैं। तो मैंने नहीं बोला कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करिए, मैंने कहा मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करिए, चाहे कभी भी करिए। डॉक्टर कॉलिंग।

हाँ जी तो हो जाए। हाँ जी फिर से आ गई हूँ मैं लेकर दिमाग की बत्ती जलाने वाला सेगमेंट, और वेलकम टू रेडियो महारानी, दिस इज अर्जेंटली इन द हाउस। तो भाई चलिए आपके दिमाग की ना थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। आप सभी को पता है जब मैं दिमाग की एक्सरसाइज कराने के लिए आती हूँ तो एक सेगमेंट लेकर आती हूँ, फरीदाबाद की पहेली। तो भाई टाइम हो गया है फरीदाबाद की पहेली का, और आज की पहेली है, मैं फरीदाबाद की एक ऐसी ऐतिहासिक जगह हूँ जिसे 18वीं सदी में बनाया गया था। अभी यहाँ राजा महाराजा रहते थे, और आज भी लोग मेरी खूबसूरती आर्किटेक्चर और इतिहास को देखने दूर से आते हैं। मेरा नाम एक वीर राजा के नाम से जुड़ा हुआ है। तो भाई देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक हिंट भी दे दी है, तो इस हिंट को जरूर पहचानिए। और तो फटाफट से मिलते हैं थोड़ी ही देर में, इस पहेली के जवाब का इंतजार खत्म होगा। लेकिन आपको पता है ना आपको क्या करना है, फटाफट से जाना है रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर अपना वॉइस मैसेज हमें भेजना है, देखते हैं कि आप फरीदाबाद को कितना जानते हैं। लेकिन तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

जान आज जड़ा तू नेकलेस पाया ना, ये नकली है, जमा तेरे मंगू।

0: कुछ हटके।
1: अरे यार डैडी, आप बैक टू बैक कॉल कर रहे हो यार। मैं करता हूँ ना, बोला ना ड्राइव कर रहा हूँ।
2: अरे हो ही नहीं सकता।
3: अरे मत यार, आप
2: नहीं
3: हो जाए।
2: नेक्स्ट टाइम थोड़ा लिमिट में
3: भी आता। मैंने सब

ईश्वर, हम माफी मांगते हैं कि हमने अपनी सारी ब्लेसिंग्स को इग्नोर किया और हमेशा आपसे ज्यादा और ज्यादा की आस करते रहे। वी आर सॉरी, पर आज हम हाथ जोड़ के उन खुशियों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे पास हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।

बॉलीवुड ने सोचा कि थोड़ा सा डराया जाए और डराने के लिए लेकर आए हैं अक्षय कुमार और सैफ अली खान अपनी फिल्म हैवान का टीजर। आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल और आज का कैप्सूल थोड़ा सा ज्यादा सस्पिशियस है क्योंकि टीजर देखकर समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हैवान है कौन। टीजर में सैफ अली खान एक विजुअली इंस्पायर्ड कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, वही अक्षय कुमार का लुक और उनकी क्रीपी सी हंसी, भाई साहब हंसी है या वार्निंग बेल। ऊपर से मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस और इसका जो डायरेक्शन है वो काफी खास है, यानी कहानी में क्या चल रहा है इसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है और यही शायद टीजर की सबसे

0: इंटरेस्टिंग बात है, जितना दिखाया गया है उससे कहीं ज्यादा छुपाया गया है। अब असली बात, सैफ बेचारे हैं, अक्षय खतरनाक है, कहानी में पिक्चर कुछ और ही है, इस सवाल का जवाब मिलेगा 11th of September जब हैवान थिएटर्स में आएगी। फिलहाल टीजर ने क्यूरियोसिटी तो जगा दी है और अक्षय की वो हंसी कानों में छोड़ दी है।
1: और भाई रामफल सुना दे, क्या हाल चाल?
2: बस बढ़िया यार, कुछ नहीं, 12वीं के पेपर में फेल हो गया। अच्छा? बार बस यहाँ बैठा था, टाइम पास कर रहा था और बीड़ी फूक रहा था।
1: सही है सही है, बीड़ी लगा ले, टाइम पास हो जाएगा मेरा भी।
2: क्या करना है,
1: ला जल गई, ला मेरे को दे दे
2: यार, कोई दिमाग खराब करता है, खरीद के पी लिया कर कभी।
1: अरे तो एक बीड़ी में गरीब हो जाएगा क्या तू, एक बीड़ी के पीछे मर रहा है।
2: अरे बीड़ी छोड़, उधर देख
1: भाई, वो अमीर घर की बड़ी लड़की है, तू डेरा देसी कमार, तेरे काबू थोड़ी आएगी, तो सब ले रहा
2: है। हाँ, फौजी बॉय, बुरा देख दमा का फिर। अब राम राम मैडम जी, कैसे हो?
3: हट सुगले से,
4: करवा ली बेस्ती, आगे स्वागत जान ले लो।
2: हाँ, फौजी बॉय, सॉरी, इट्स अ डॉग बॉय।

0: कल आए क्यों नहीं थे?
1: अरे वही यार, घर पे वाला दोस्तों के साथ जाना है तो बोलते यारी दोस्ती होनी चाहिए, पर इतनी भी नहीं कि और कोई चीज इम्पोर्टेंट ही ना लगे। अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी लाइफ पे ध्यान दो। और अपने ऊपर कैसे ध्यान देते हैं? और उन्हें कौन समझाए?
2: अपनी लाइफ के पास ही तो जा रहा हूँ।

वीकेंड आने वाले और सभी के कोई ना कोई प्लान्स तो है, और ये प्लान्स हमारे रिश्तेदार को पता लगे ना लगे लेकिन हमारे पिंपल्स को जरूर पता चल जाते हैं। और तभी आपने देखा होगा कभी भी किसी बड़े इवेंट से पहले ना ये पिंपल्स आ जाते हैं। तो भाई आज इसी की डिस्कवरी लेकर आ गई हूं, आज रिकॉर्ड करने वाली हूं कि आखिर ये पिंपल्स होते क्यों है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट क्यों ना हो ये हमें धप्पा करने आ जाते हैं। तो अब देखिए इसके पीछे का रीजन है क्या। एक्चुअली जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हॉर्मोन्स जो बढ़ने लग जाते हैं, जो कि यहाँ पर योगदान देते हैं हमारे स्किन में ऑयल प्रोडक्शन और इन्फ्लेमेशन को इफेक्ट करने में। और यही वजह है कि ऑलरेडी अगर हमें कोई एक्ने हुआ है, हमें कोई पिंपल हुआ हुआ है, तो ये ना उसे और ज्यादा खराब कर देते हैं। तो भाई यहाँ पर ना एक फॉर्मूला ये है कि कभी इवेंट होने से पहले बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिएगा कि क्या पहनना है, टाइम से कैसे निकलना है, क्या होगा, कैसे होगा, टाइम कम है, ये सारी चीजें छोड़ दीजिए। बिकॉज अगर आपने ये चीजें नहीं छोड़ी ना तो आपको पिंपल पैच हमेशा कैरी करना पड़ेगा। और यही रीजन है कि जब स्ट्रेस लेते हैं ना तो हमारी स्लिप भी डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से जो हमारी स्किन है वो रिकवरी नहीं कर पाती। और इसीलिए इन सब चीजों की मेहरबानी से फिर चाहे एग्जाम हो, इंटरव्यू हो, शादी हो या फिर कुछ भी हो, ये पिंपल्स आ जाते हैं। लेकिन भाई अगर आपको बार बार ब्रेकआउट्स हो रहे हैं ना तो ये सिर्फ स्ट्रेस की वजह से नहीं हो सकता, हो सकता है कोई हार्मोनल चेंजेस हो या फिर कोई और फैक्टर हो। तो तुरंत से जाकर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को जरूर दिखाइएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अपनी डाइट, अपने स्लीप और हाँ अपने एक्सरसाइज का भी ख्याल रखिए। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, साथ ही एंजॉय कीजिए। ट्रैक मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: सर, मैं बैंक से बोल रहा हूं। अच्छा, और मैं चांद पर प्लॉट बेच रहा हूं।
1: हेलो सर, हेलो सर,
0: आपका अकाउंट खतरे में है सर।
1: हेलो सर, हेलो सर,
0: पहले डराए फिर

Venom, please.

One wine, please.

किसी को बुलाना कितना आसान है ना, मतलब अब तो खरीदा भी जा सकता है, पर क्या ऐसी दुनिया में तुम मुझे याद रखोगे हमेशा के लिए?

हमारे रास्ते अब अलग हैं। मैंने तुम्हें भुला दिया है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझे भूल जाओ, ताकि जब हम दोबारा मिले तो अजनबी हो।

रेडियो महारानी।

मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है, मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो मेरे को बहुत कॉमनली पूछा जाता है वो ये होता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारी मेंटल हेल्थ पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि जैसा हमारे को पिक्चरों में मूवीज में दिखाया गया है कि जो स्ट्रेस्ड इंसान है या जिसका मूड लो है वो एक कोने में बैठ के रोता रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिसको डिप्रेशन होता है या मूड लो रहता है वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान होता है, वो अपने काम पे भी जाता है, स्कूल कॉलेज भी अटेंड करता है, घर पे भी ध्यान रहता है, बस उसका किसी चीज में मन नहीं रखता, वो कुछ भी मन से नहीं करता, खुश होकर नहीं करता, ओवर थिंकिंग रहती है उसको। और ज्यादातर ओवर थिंकिंग में वो हमेशा नेगेटिव आउटकम ही सोचता है। जब हमारा मन ही अच्छा नहीं होगा तो हम पॉजिटिवली कैसे सोच पाएंगे, हमारे को हर चीज में नेगेटिविटी दिखने लगती है। अगर आपको भी ऐसा होता है तो तुरंत जल्द से जल्द किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या साइकियाट्रिस्ट से मिले।

रेडियो महारानी

0: पूछ अपने बारे में।
1: बातें तो बहुत सारी की हैं और इन्हीं बातों के बीच में मुझे याद आ गया है कि टाइम हो गया है फरीदाबाद की पहेली जानने का। तो भाई बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए हैं और थैंक यू सो मच, आप फरीदाबाद की पहेली को इतना प्यार दे रहे हैं। डेली आते हैं, डेली अपने जवाब देते हैं, कुछ सही होते हैं और कुछ तो ऐसे होते हैं जो मैंने कभी सुने भी नहीं होते, लेकिन आप फरीदाबाद को बहुत प्यार करते हो, फरीदाबाद को बहुत अच्छे से जानते हो, ये सेगमेंट हमें ये बताता है। तो चलिए भाई टाइम हो गया है फरीदाबाद की पहेली जानने का। तो जो मैंने पहेली पूछी थी ना आज, मैंने एक हिंट भी दिया था, लेकिन पहेली थोड़ी सी टफ थी। तो चलिए देखते हैं किसने सही जवाब दिया है। तो मैं पहले इनका जवाब आपको सुनाती हूँ।
2: हाय अंजलि, मैं हूँ दीक्षा फरीदाबाद से, और आपकी आज की पहेली का सही जवाब है राजा नार सिंह मल्लवकर।
1: बिल्कुल सही पकड़े हैं दीक्षा, इतना सही जवाब, और ये हमें ये बताता है कि आप फरीदाबाद को कितना अच्छे से जानते हो। बिकॉज ये अगर मैं इस पहेली की बात करूँ ना तो थोड़ा सा टफ था, ऐतिहासिक थी थोड़ी सी पहेली, लेकिन क्या गैस किया है भाई, तुम्हें मिलते हैं 1 करोड़ रुपए। नहीं, 1 करोड़ रुपए तो नहीं मिलेंगे तुम्हें, लेकिन हाँ ये जरूर बताता है कि फरीदाबाद को प्यार बहुत करते हो दिल से, क्योंकि आपने ये जगह बिल्कुल सही गैस की है, और इसी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर से मिलेंगे एक और नई पहेली के साथ, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ट्रैक जो है खास आपके लिए। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

सिनेमा लवर्स वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूं गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 99.6 FM, जहां मैं बात करती हूं उन मूवी शोज और ओटीटी अपडेट्स की जो इन दिनों एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में लगातार चर्चा में है। और इस हफ्ते की ओटीटी कन्वर्सेशन में एक नया नाम ऐसा भी है जिसको इग्नोर करना थोड़ा सा मुश्किल है। द ट्रेटर सीजन 2 वापस आ चुका है और इस बार गेम पहले से भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल लग रहा है। करण जौहर फिर से साइकोलॉजिकल रियलिटी गेम को होस्ट कर रहे हैं, लेकिन असली अट्रैक्शन वो 21 सेलिब्रिटी प्लेयर्स जो एक पैलेस में एंटर करते हैं, जिसमें से कुछ होंगे इनोसेंट और कुछ होंगे सीक्रेटली चुने हुए ट्रेटर्स। मतलब सामने बैठा इंसान दोस्त है, एले है, या फिर वही आपको गेम से बाहर लाने की पूरी प्लानिंग कर रहा है, ये पता लगाना इस पूरे गेम का सबसे बड़ा चैलेंज है। सीजन में मलिका शेरावत, मुनव्वर फारूकी, रिया चक्रवर्ती, श्वेता तिवारी जैसे कई फेमिलियर फेसेस नजर आ रहे हैं और यही सेलिब्रिटी मिक्स शो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है। लेकिन द ट्रेटर्स की खासियत सिर्फ सेलिब्रिटी फेसेस नहीं है बल्कि इसका पूरा फन ट्रस्ट और बीट्रेल के बीच है। यहाँ लाउडेस्ट प्लेयर जरूरी नहीं कि स्मार्टेस्ट प्लेयर हो, और जो सबसे ज्यादा इनोसेंट दिखाई दे हो सकता है वही सबसे बड़ा ट्रेटर निकले। तो अगर आप रियलिटी टीवी को सिर्फ ड्रामे के लिए नहीं बल्कि माइंड गेम, स्ट्रेटजी, एलिगेशंस और डिसेप्शन के लिए देखना पसंद करते हैं तो द ट्रेटर सीजन 2 इस हफ्ते आपकी ओटीटी वॉच लिस्ट में जगह बना सकता है। और हाँ, एक और बात, इस गेम में किसी पर जल्दी ट्रस्ट करना शायद आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है।

ले आ गया फिर तेरे दरवाजे के बरसात से बचने का और बहाना न मिला। बाहें तेरी घर सी लगी और इस दिल को कोई

0: पहले एक और तेल पैस के
1: हाँ जी, बातें तो बहुत सारी कर ली और ये बताने आ गई हूँ कि फिलहाल मेरा वक्त हो गया है यहाँ से टाटा बाय बाय कहने का, यानी कि अंजलि ऑन एयर थी, अब ऑफ एयर होने वाली है, यानी कि मैं ऑफ एयर बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले ये तो जान लेते कि आज टिफिन में क्या है। देखिए, आज मेरा तो पहला ही काम है, जब मैं ऑफिस आती हूँ ना तो अपने सबसे पहले अपने जितने भी एम्प्लॉयज है ना, जितने भी मेरे कलीग्स हैं, जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, सबसे पहले यही पूछती हूँ कि आज टिफिन में क्या लेकर आई हूँ। और जब मुझे पता चलता है ना कि टिफिन में कुछ टेस्टी आया तो मैं उनका लंच ब्रेक से पहले ही खा जाती हूँ, जैसे मैं स्कूल में क्या करती थी। खैर देखिए, अगर मैं आज अपने टिफिन की बात करूँ तो आज मेरे टिफिन में आया वेज पुलाव और रायता, और घर का खाना, सिंपल खाना। और क्या ही चाहिए, और क्यों जिंदगी जी रहे हैं। देखिए, मेरे लिए खाना मेरा कंफर्ट फूड है, और जब भी खाना खाती हूँ ना तो हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज हो जाते हैं। खैर, मैंने तो बता दिया है कि मैं आज क्या लेकर आई हूँ। आप मुझे जरूर बताइए कि आज आपकी टिफिन में क्या है, और जिनका टिफिन घर से नहीं आया ना तो कोई बात नहीं, ऑफिस की कैंटीन से खा लेना। तो भाई एंजॉय कीजिए प्यास और ट्रैक। आज आई थी बहुत सारी बातें आपके साथ, कल फिर से आऊंगी तो मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा। आप फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM पर। तब तक एंजॉय कीजिए ट्रैक और बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

इसी गाने के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे शो में यानी कि फिल्मी प्लेवर। आज सिनेमा के गलियारे में बहुत ही चर्चाएं करने वाला हूं कि कौन कौन से नए गाने सिनेमा घरों में कहानियों के बाद अब सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड करते नजर आ रहे हैं। कुछ नई कहानियां सिल्वर स्क्रीन की तो कुछ नई सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाल मचाते आ रही है नजर। जहां सिनेमा के गलियारों में बहुत जल्द कुछ नए ट्रेलर टीजर भी हो रहे हैं, लॉन्च तो कहीं हो रहा है पंजाबी गानों का धमाल। सिल्वर स्क्रीन से लेकर के ओटीटी प्लेटफॉर्म तक के किस्से कहानियां तो कहीं होगा हिंदी जगत के सिनेमाओं से लेकर के हॉलीवुड के सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर कहानियों का आगाज। ये सारी चर्चाएं करने वाला कुछ नए डायरेक्टोरियल डेब्यू से लेकर के कुछ नई जोड़ियों का जो सिल्वर स्क्रीन पर आने वाले हैं। लेकिन ये सारी चर्चाएं करने से पहले यानी कि सिनेमा के गलियारे में घुमाने से पहले सुना देता हूं कुछ धमाकेदार से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके और ये ट्रैक आप सभी के लिए है।

अरमान की आवाज में और शो चल रहा फुल नई फ्लेवर। यहाँ हम बात करते हैं 1942 अ लव स्टोरी फिर से बड़े पर्दे पर लौट रही है और इस बार 8K रिस्टोरेशन और डॉल्बी साउंड के साथ री रिलीज हो रही है 21 अगस्त को सिनेमाघरों में। 15 अप्रैल 1994 को रिलीज की गई थी कहानी विधु विनोद चोपड़ा और आर डी बर्मन साहब के साथ। यह कहानी में अनिल कपूर, मनीषा कराला, जैकी श्रॉफ, अनुपम खेर, डैनी और पॉन जैसे स्टार्स नजर आए। 21 साल कंप्लीट होम बात की जाए यहाँ पे बढ़िया तरीके से विजुअल्स फिर से देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ उस दौर में भी कहानी को इतना अच्छा खासा प्यार मिला था। एक बार फिर री रिलीजिंग के दौरान देखते हैं क्या प्यार बटोरती नजर आई। जहाँ बात की जाए पिछले 2-3 सालों में री रिलीजिंग का दौर जरूर चलते नजर आ रहा है, तो जिस दौर में 1942 लव स्टोरी भी इंक्लूड होने वाली है बहुत जल्द। 21 अगस्त का रहेगा इंतजार, बाकी ऐसी भी चर्चाएं करता रहूंगा। उससे पहले एक और ट्रैक।

0: के आगे गराज, गराज के ये मैकेनिक।
1: देखो मुझे पापा ने तेरे कहा उसने रानी, जैसे भी हो शादी तुमसे करनी है ये ठानी।
0: इसके आगे मैं नहीं बता सकती, इनसे ही पूछ।

Namaste, myself Dr. Rajni Beniwal. I am a dentist and a nutritional psychologist. Over 13 years of experience, I'm a women health coach and a teen parenting expert. So, हमारी daily diet में nutrition balance maintain करना क्यों जरूरी है? Nutrition और food हमारी life का basic fuel है. अगर हम सही amount of food नहीं खाएंगे, सही quality of food नहीं खाएंगे, तो हमारी body का balance definitely बिगड़ जाएगा. हम लोग गो की बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है अलग अलग वर्क काम करने के लिए. हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, प्रोटीन्स की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, मिनरल्स और विटामिन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है और कुछ हेल्दी फैट्स की बहुत जरूरत है. एंड द बेसिक थिंग इज हाइड्रेशन, एक कंप्लीट अमाउंट में वाटर इनटेक मस्ट. तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, इन सब के सोर्सेस का हमें पता होना बहुत जरूरी है. और कार्बोहाइड्रेट्स हमें अनाज से मिलता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं, एक अच्छा गाय का देसी घी से हमें बहुत अच्छा गुड फैट मिलता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरली पार्ट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हमें दाल और बहुत सारी चीज, पनीर और मीट, एग, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है. और अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत जरूरी है. ये सब चीजें जब बैलेंस्ड रहेंगी तभी हमारी बॉडी में हर एक चीज बैलेंस तरीके से काम कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे. तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है और न्यूट्रिशन को समझ के खाना खाना ही आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है. डॉक्टर कॉलिंग.

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: हर दरवाजा सिर्फ लकड़ी का नहीं होता, कुछ एल्युमिनियम के भी होते हैं, और कुछ के पीछे तो मौत लिखी होती है। राहुल और निधि नए घर की तलाश में, पर जो मिला वो एक मनहूस कहानी थी। एक हवेली जो सदियों से बंद थी और एक दरवाजा जो सालों से बंद था, शायद जाम हो गया था। जब उन्होंने उस दरवाजे को छुआ तो पूरी हवेली जाग गई, दीवारों से सांसें सुनाई देने लगी, दरी पर पैरों के निशान उभरने लगे, और फिर वो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि अगर तुमने उन्हें खोला तो हो सकता है अंदर वाले तुम्हें बाहर ही ना आने दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: अगर वो बोल सकती तो शायद कहती, थोड़ा पानी मिलेगा, मगर वो

0: या फिर डिपार्टमेंट के वेरीफाइड नंबर से खुद को क्रॉस चेक कीजिएगा। और अगर आप कर चुके हैं कॉल, प्रेशर में आके पेमेंट भी कर चुके हैं और अगर आपका पैसा साइबर फ्रॉड में चला भी गया तो आपको क्या करना है, तुरंत 1930 पर आपको रिपोर्ट करना है, आपको पूरा इंसिडेंट बताएगा और होपफुली आपके पैसों की रिकवरी हो जाए। तो भाई यहाँ पर गोल्डन रूल ये है, जब भी स्कैमर बोले अभी वेरीफाई करो, आपको बोलना है पहले मैं वेरीफाई करता हूँ तुम असली हो या नहीं, और उसी के बाद ही पेमेंट कीजिएगा। और इसी के साथ स्टे अलर्ट, स्टे साइबर स्मार्ट, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ट्रैक बेस्ट ऑफ अंजलि।
1: Yo, boys, I am singing song.

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौटा लेकर के शो आने की फिल्म फ्लेवर। यहाँ बात करते हैं प्रियंका चोपड़ा जोनस और रसल क्राउ पहली बार एक साथ हॉलीवुड का एक्शन फिल्म थ्रिलर ब्लू फ्लाई में नजर आएंगे। अप्रैल 2017 को थिएटर्स में रिलीज किए जाने वाला मेहमान अंचल इस कहानी को डायरेक्ट कर रहे हैं, जहाँ कहानी में कॉन्गो में एक ड्रिविंग ह्यूमन ट्रांसलेटर को एक कन्वेंशन पर भेजा जाता है एक गिरा हुआ विमान रिकवर करने। जैसे जैसे टीम आगे बढ़ती है पता चलता है कि इस प्लेन में को वापस लाना कभी इंटेंडेंट नहीं था। 26 के एंड में ऑस्ट्रेलिया गोल्स में शूट होने की चर्चा की जा रही है और इस कहानी में प्रियंका का किरदार बहुत बेहतरीन होने वाला। फैंस इंतजार कर रहे हैं इस कहानी की रिलीजिंग का। बाकी ऐसी भी चर्चा करते हैं एक और ट्रैक।

0: सर, मैं बैंक से बोल रहा हूं। अच्छा, मैं चांद पर प्लॉट बेच रहा हूं।
1: हेलो सर, हेलो सर,
0: आपका अकाउंट खतरे में है सर।
1: हेलो सर, हेलो सर,
0: पहले डराए फिर

Venons, please.

0: रेडियो महारानी कुछ हटके।
1: हे डार्लिंग, आंखों से आंख

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी प्लेबैक। यहाँ बात करते हैं, यहाँ देखिए आप सब जानते हैं कि स्पाइडरमैन न्यू डे के हिंदी डब में एक मजेदार तारा ट्विस्ट भी डाला गया जो सोशल मीडिया पर वायरल होता नजर आया। वायरल डायलॉग क्या है बता भी तो मोटा भाई, रिस्क है तो इश्क है। जहां पीटर पार्कर कहते हैं सेठ जी बाघा ये राज बावरी को भी नहीं बताएगा। ओरिजिनल इंग्लिश वर्जन में यहाँ पॉप कल्चर रेफरेंस जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स लॉर्ड ऑफ द रिंग जैसा था। हिंदी डब में मेकर्स ने इंडियन फैंस के लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बाघा बावरी किरदारों का जिक्र किया। ये देसी लोकलाइजेशन वाला टच फैंस को बहुत पसंद आया और क्लिप्स खूब शेयर होते नजर आए। जहां तारक मेहता की फैन फॉलोइंग भी इसको पसंद करती नहीं जरा ही, और साथ ही स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के फैंस तो पसंद कर ही रहे। बाकी ऐसे भी चर्चाएं मैं करता रहूंगा, उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक।

Namaste, myself Dr. Rajni Benival. I am a dentist and a nutritional psychologist. I am a women health coach and teen parenting expert. Over the 13 years of experience, as the social media is growing, I can see बहुत सारे लोग social media follow करते हैं, बहुत सारे trends follow करते हैं, बहुत सारे influencers और celebrities को follow करते हैं और crash diets करते हैं, जो कि उनकी body के लिए बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं है. जो दूसरे की body पे suit कर रहा है, वो आपकी बॉडी पे सूट करेगा, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. कुदरत ने जैसे हम सबके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट बनाए हैं, हम सबकी बॉडी अलग है. हमारा डेली रूटीन ही डिसाइड करता है कि हमें कितने अमाउंट में कितने न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स कंज्यूम करने चाहिए. एक डे नॉर्मल जो हम घर की थाली में खाना खाते हैं, वो हमारे डेली नॉर्मल रूटीन के लिए कंफर्टेबल है. लेकिन आप कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, या एक पर्टिकुलर किसी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स का आपको जानना बहुत जरूरी है. और वो आप एक नियर बाय डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह से ही डिसाइड करें कि कौन सा सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपके लिए सही रहेगा, कितना प्रोटीन आपको कंज्यूम करना चाहिए और अपनी डाइट में आपको क्या वेरिएशंस लाने चाहिए कि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सके. तो अपने आप कुछ भी रैंडमली मत खाइए, एक सही सलाहकार की मदद से ही आप अपने भोजन को चुनिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए. धन्यवाद डॉक्टर.

टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम, जहां सिनेमा की दुनिया से आती है सबसे फ्रेश और इंटरेस्टिंग अपडेट्स। अब वीर पहाड़िया ने अपनी अगली फिल्म अनाउंस कर दी है और नाम है प्रेम कीटाणु। लेकिन नाम से ज्यादा मजेदार है इसका पोस्टर, क्योंकि वीर ने खुद इसे शेयर करते हुए लिखा है, ना नंबर मिले, ना जॉब, ना ही प्यार, बस टूटे हुए दिल और अच्छे दोस्त लेकर आ रही है प्रेम कीटाणु। फिल्म में वीर के साथ है अपार शक्ति खुराना और राकेश बेदी, और इसे डायरेक्ट करेंगे अपूर्व सिंह करकी। तो प्यार मिला हो या ना मिला हो, प्रेम कीटाणु जरूर मिल गया है। तो ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

हेलो हेलो जी। तो चलिए फिर अब फरीदाबाद से निकलकर चलते हैं सीधा बैंगलोर। और बैंगलोर जाने की वजह ये है कि एक और साइबर स्कैम आ गया। वही बात है कि आंखें बंद करते नहीं और मार्केट में आ जाता है एक और स्कैम। तो देखिए, बैंगलोर में एक 80 इयर्स ओल्ड मैन के साथ स्कैम हो गया। तो ये स्कैम भी हुआ SIR के ऊपर, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिविजन फॉर्म वेरीफाई करने के नाम पर फेक इशल ने कॉल किया उन्हें और करीब ठग लिए इनसे 3.5 लाख रुपए। अब देखिए यहाँ पर स्कैम हुआ क्या। सबसे पहले स्कैमर्स ने इनसे बात की और इनको ना ट्रस्ट दिलाया, और ट्रस्ट कैसे दिलाया, गवर्नमेंट प्रोसेस के नाम पर। और फिर क्या था, वेरिफिकेशन के बहाने कर लिए गए पैसे ट्रांसफर। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको ये जरूर याद रखना है कि कोई भी गवर्नमेंट वेरिफिकेशन कॉल आए, प्रेशर में पेमेंट मत कीजिएगा कभी भी। ऑफिशियल वेबसाइट या फिर डिपार्टमेंट के वेरिफाइड नंबर से खुद को क्रॉस चेक कीजिएगा। और अगर आप कर चुके हैं कॉल, प्रेशर में आके पेमेंट भी कर चुके हैं ना, और अगर आपका पैसा साइबर फ्रॉड में चला भी गया, तो आपको क्या करना है, 1930 पर आपको रिपोर्ट करना है। आपको पूरा इंसिडेंट बताना है कि आपके साथ क्या हुआ है और आपके पैसों की रिकवरी हो जाए। तो भाई यहाँ पर गोल्डन रूल ये है, जब भी स्कैमर बोले अभी वेरीफाई करो, आपको बोलना है पहले मैं वेरीफाई करता हूँ तुम असली हो या नहीं, और उसी के बाद ही पेमेंट कीजिएगा। और इसी के साथ स्टे अलर्ट, स्टे साइबर स्मार्ट। तब तक के लिए एंजॉय।

तू पीआर है इस खातर तेरा तक करे प्यार को न्या और सारी दुनिया में जागी टोलिए तना जाट वर्गा मिलेगा यार को न्या और मैडम है दिन में सिपटा रात न स्टूडियो में गावे मैंने तेरा जैसा देखा स्टार को न्या तेरा जैसा देखा स्टार को न्या।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए हैं लेकर के शो यानी कि फिल्म ही प्लेवर। यहाँ दोस्तों आज हम बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में सिनेमा के करंट चार्ज एक बहुत बढ़िया स्टार का है पद। हिंदी और मराठी सिनेमा में कई दशकों तक फैला हुआ है इनका कलाकारी का जीवन। एक ऐसे आर्टिस्ट जिन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सिंगर अलग अलग रोल्स में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को अपना टैलेंट दिया। बचपन में कैमरा के सामने आए और बड़े होते होते इंडियन सिनेमा के एक रेस्पेक्टेड नाम बन गए। आज बात करेंगे इंडस्ट्री के उसी स्टार की जिनका नाम है सचिन पिलगांवकर। इनकी बात की जाए तो एक्टिंग की दुनिया से सिंगिंग की दुनिया तक पहुंचना, डायरेक्शन से प्रोडक्शन तक पहुंचना एक बहुत लंबा सफर रहा और इस पूरे सफर में अच्छा खासा प्यार बटोरा, नाम कमाया और एक से बढ़कर एक कहानियां और गाने इंडस्ट्री को देते नजर। इनके बारे में बहुत सी चर्चाएं करने वाला हूं लेकिन उससे पहले सुनाऊंगा एक बढ़िया सा गाना।

रात थी, कुछ दोस्त थे, आंखों में हजारों ख्वाब थे। किसी ने हंस कर कह दिया, ले बस एक बार।

सही फैसला चुनने का एक मौका देती है। तो अगली बार जब कोई कहे बस एक बार, तो खुद से कहना, नहीं, मेरी जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है।

0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो मोना, सुनो तो

इसलिए आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई।

Namaste, myself Dr. Rajni Beniwal. I am a dentist and a nutritional psychologist. Over 13 years of experience, I'm a women health coach and a teen parenting expert. So, हमारी daily diet में nutrition balance maintain करना क्यों जरूरी है? Nutrition और food हमारी life का basic fuel है. अगर हम सही amount of food नहीं खाएंगे, सही quality of food नहीं खाएंगे, तो हमारी body का balance definitely बिगड़ जाएगा. हम लोग गो की बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है अलग अलग वर्क काम करने के लिए. हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, प्रोटीन्स की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, मिनरल्स और विटामिन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है और कुछ हेल्दी फैट्स की बहुत जरूरत है. एंड द बेसिक थिंग इज हाइड्रेशन, एक कंप्लीट अमाउंट में वाटर इनटेक मस्ट. तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, इन सबके सोर्सेस का हमें पता होना बहुत जरूरी है. और कार्बोहाइड्रेट्स हमें अनाज से मिलता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं, एक अच्छा गाय का देसी घी से हमें बहुत अच्छा गुड फैट मिलता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरली पार्ट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हमें दाल और बहुत सारे चीज, पनीर और मीट, एग, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है. और अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है. ये सब चीज़ें जब बैलेंस्ड रहेंगी तभी हमारी बॉडी में हर एक चीज़ बैलेंस तरीके से काम कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे. तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और न्यूट्रिशन को समझ के खाना खाना ही आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है.

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया लेकर के शो यानी कि फिल्म की प्लेवर। यहाँ बात करते हैं चाय जाटे से हीरो तक का सफर, जहाँ सचिन 4 साल की उम्र में मराठी फिल्म हाँ मजा मर्ग एक्ला से चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में एक्टिंग शुरू की। फिर दिखी थी बाद में उन्हें गीत गाता चल और नदिया पार जैसी फिल्मों से लीड एक्टर के रूप में खास पॉपुलैरिटी हासिल। सचिन की कुछ बेहतरीन कहानी की बात की जाए तो जहाँ पे कवाली का भी स्पेशल चैप्टर आ शोले बारी का बदू नदिया के पार आज ही बनवा बनवी जैसी स्टार्स में भी उन्होंने अच्छा खासा किरदार निभा। ऐसे इनके बारे में बहुत ही चर्चाएं तो होती रहेंगी लेकिन आज नहीं, मुलाकात होगी आपसे कल के दिन सेम टाइम सेम जगह। मुझे बातें तब सुन रहे रेडियो महारानी 89.6 FM को छठ के और ये ट्रैक आप सभी।

हर भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा।

हाय कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला हाँ। अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखो।

बॉलीवुड ने सोचा कि थोड़ा सा डराया जाए और डराने के लिए लेकर आए हैं अक्षय कुमार और सैफ अली खान अपनी फिल्म हैवान का टीजर। आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल और आज का कैप्सूल थोड़ा सा ज्यादा सस्पिशियस है क्योंकि टीजर देखकर समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हैवान है कौन। टीजर में सैफ अली खान एक विजुअली इंस्पायर्ड कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, वही अक्षय कुमार का लुक और उनकी क्रीपी सी हंसी, भाई साहब हंसी है या वार्निंग बेल। ऊपर से मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस और इसका जो डायरेक्शन है वो काफी खास है, यानी कहानी में क्या चल रहा है इसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है और यही शायद टीजर की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। जितना दिखाया गया है उससे कहीं ज्यादा छुपाया गया है। अब असली बात, सैफ बेचारे हैं, अक्षय खतरनाक है, कहानी में पिक्चर कुछ और ही है, इस सवाल का जवाब मिलेगा 11th of September जब हैवान थिएटर्स में आएगी। फिलहाल टीजर ने क्यूरियोसिटी तो जगा दी है और अक्षय की वो हंसी कानों में छोड़ दी है।

0: हेलो हेलो जी। तो चलिए फिर अब फरीदाबाद से निकलकर चलते हैं सीधा बैंगलोर। और बैंगलोर जाने की वजह ये है कि एक और साइबर स्कैम आ गया। वही बात है कि आंखें बंद करते नहीं और मार्केट में आ जाता है एक और स्कैम। तो देखिए, बैंगलोर में एक 80 इयर्स ओल्ड मैन के साथ स्कैम हुआ। तो वे स्कैम भी हुआ SIR के ऊपर, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिविजन फॉर्म वेरीफाई करने के नाम पर फेक इलेक्शन ऑफिशियल ने कॉल किया उन्हें और करीब ठग लिए इनसे 3.5 लाख रूपए। अब देखिए यहाँ पर स्कैम हुआ क्या। सबसे पहले स्कैमर्स ने इनसे बात की और
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

कभी कभी ना मूड ठीक करने के लिए कोई बड़ी वजह नहीं चाहिए होती, बस एक अच्छा गाना, एक फनी कॉन्वर्सेशन और थोड़ा सा वक्त अपने लिए काफी होता है। और बस इसीलिए तो मैं आपके पास रोज आती हूँ आपका मूड हल्का करने। फिर से घड़ी ने बजा दिए हैं दो और शुरू हो चुका है आपका द हैप्पी आवर्स। मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो महारानी। और अगले दो घंटे में बातें होंगी उन सब चीजों की जो आपकी डेली लाइफ को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देती है। जेंजी के नए नए वर्ड, इंटरनेट के ट्रेंडिंग मीम्स, बॉलीवुड की गॉसिप और अपडेट्स, फैशन के लेटेस्ट ट्रेंड्स और अपने फरीदाबाद की कुछ इंटरेस्टिंग जगह और स्टोरीज भी। मतलब आपके साथ बैठकर एक प्रॉपर गपशप होती है। बस फर्क इतना है कि मैं रेडियो में बैठकर चाय पी रही हूँ और आप ऑफिस या घर में। तो मूड को थोड़ा हल्का कीजिए क्योंकि शुरू हो चुका है द हैप्पी आवर्स। चलिए एक गाना हो जाए और गाने के बाद बताऊंगी कि आज जेंजी की डिक्शनरी में कौन सा नया वर्ड ऐड हुआ है। कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड।

करो सर, मैं बैंक से बोल रहा हूं। अच्छा, और मैं चांद पर प्लॉट बेच रहा हूं।

कभी किसी को देखा है कि कोई भी सिचुएशन हो, चाहे जितनी भी सीरियस सिचुएशन हो, उसके फेस पे ना एक्सप्रेशन ऐसा होता है कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता, बस वही होता है नॉनचलांट। जी हाँ, आज के जेन जी डिक्शनरी में वर्ड है नॉनचलांट। और अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो बिना ज्यादा टेंशन लिए बिल्कुल चिल और अनबॉदर्ड। आप किसी पार्टी में गए हो और सामने वाला पर्सन आपके पास आकर आपसे ढेर सारी बातें कर रहा है, लेकिन आपको उसकी बातों से और उस पर्सन से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है। आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि आप उसकी बातें ही नहीं सुन रहे। इसी को कहते हैं नॉनचलांट, कि सामने वाला कितना भी कुछ भी बोल ले, आपको उसकी बातों से और उस इंसान से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, नॉनचलांट होना और केयरलेस होना सेम चीज नहीं है। कभी कभी ना बस इमोशंस को अननेसेसरली ओवर रिएक्ट ना करना भी एक स्किल है। तो आज का जेन ज़ी वर्ड याद रखिएगा, नॉनचलांट। और अब बात करते हैं इंटरनेट की, जहाँ लोग नॉनचलांट रहना चाहते हैं लेकिन मीम्स देखकर कंट्रोल नहीं कर पाते। अब आज कौन सी ट्रेंडिंग मीम मुझे देखने को मिली, बताऊंगी इसके बारे में थोड़ी देर में। तक के लिए ये गाना सिर्फ आपके लिए।

एयर पॉल्यूशन का लंग्स पे काफी सीरियस असर हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हवा में जो पॉल्यूशन है वो हमारी हर सांस के साथ हमारे नाक को और हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करते रहती है, अंदर पॉल्यूटेड एयर घुसते रहती है। तो अगर पॉल्यूटेड एयर लगातार आपके फेफड़ों में घुसती है तो आपका अस्थमा बिगड़ सकता है, आपको सीओपीडी नाम की बीमारी हो सकती है, और साथ ही साथ एक बहुत खतरनाक बीमारी लंग कैंसर होने के चांस भी एयर पॉल्यूशन की वजह से बढ़ जाते हैं। इसके साथ हमें सबसे जरूरी बात ध्यान देने की है कि एयर पॉल्यूशन आपके सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि अगर पार्टिकुलेट मैटर काफी छोटे होते हैं तो आपके फेफड़ों के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाके आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, आपकी किडनी को और बॉडी के लगभग हर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें पॉल्यूटेड एयर में जाने से पूरी तरह से अपने आप को बचाना चाहिए। थैंक यू। डॉक्टर कॉलिंग।

भाई रवि किशन को इंटरनेट ने एक्टर से ना मीम मटेरियल बना दिया है, और सच बताऊं तो उनके पुराने इंटरव्यूज से मीम का स्टॉक खत्म ही नहीं हो रहा। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर रवि किशन का ना एक पुराना इंटरव्यू फिर से वायरल हो रहा है, जहां उनसे पूछा गया था कि फेम और मनी में से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। तो उनका जवाब कुछ ऐसे था कि पहचान, मनी फॉलोज माय ब्रदर, मनी फॉलोज, नाम या दाम, नाम दाम तो दौड़ कर आएगा,

बस फिर क्या था, इंटरनेट ने इस डायलॉग को पकड़ा और बना दिया मनी फॉलोज माई ब्रदर वाला मीम। और सबसे फनी बात यह है कि रवि किशन को ना नया मीम बनने के लिए ना कुछ करना ही नहीं पड़ता, इंटरनेट उनके पुराने इंटरव्यूज खोद कर कॉन्टेंट निकाल लेता है। मतलब भाई कॉन्टेंट क्रिएटर कोई भी हो, रवि किशन के पुराने इंटरव्यूज एवरग्रीन है। और वैसे भी मीम्स की दुनिया में एक चीज तो पक्की है, आज का सीरियस डायलॉग भी ना कल का वायरल मीम बन सकता है। लेकिन मीम से थोड़ा सीरियस होते हैं, क्योंकि अब वक्त हो गया है उन लोगों का जो हम पर बुरी नजर गड़ाए बैठे हैं। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, वही चार लोग। अब ये चार लोग क्या कहते हैं, बात करेंगे इसके बारे में थोड़ी देर में। तब तक ये गाना एंजॉय कीजिए और जुड़े रहिए 89.6 रेडियो महारानी के साथ।

अगर आपने कभी दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश की है तो खोसला का घोसला आपके लिए सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि पर्सनल ट्रॉमा है। तो वही ट्रॉमा दोबारा बड़े पर्दे पर लौटने वाला है क्योंकि खोसला का घोसला 2 ऑफिशियली बन रही है। अनुपम खेर, बोमन ईरानी और ओरिजिनल कास्ट के कई चेहरे फिर से वापस लौट रहे हैं। इस बार दिव्या खोसला भी कास्ट में शामिल हुई है। मतलब 2006 में खोसला परिवार अपनी जमीन के लिए परेशान था और 2026 में लगता है प्रॉपर्टी के दाम देखकर पूरी फैमिली ही परेशान होने वाली है। ये फिल्म 28 अगस्त 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, यानी नॉस्टैल्जिया भी मिलेगा और शायद दिल्ली की प्रॉपर्टी मार्केट पर थोड़ा फ्री का कमेंट्री भी। तो भाई, अगर पहली फिल्म देखकर आपने सोचा था काश मेरे पास भी खोसला जैसा पेशेंस होता, तो अब सीक्वल के साथ पेशेंस फिर से टेस्ट होने वाला है खोसला का घोसला 2, क्योंकि दिल्ली में घर मिलना मुश्किल है और अपनी जमीन वापस मिलना तो बॉलीवुड लेवल अचीवमेंट है। ये था सिनेमा का कैप्सूल, फिल्मों की दुनिया की वो बातें जिनमें एंटरटेनमेंट भी है और थोड़ा सा अपनापन भी है।

अब रवि किशन जी ने कहा था कि मनी फॉलोज माय ब्रदर, मनी फॉलोज, तो मैंने सोचा हमारे यहाँ तो मनी से पहले रिश्तेदार फॉलो करते हैं। वो कहते हैं ना, रिश्तेदार या बुरी नजर, रिश्तेदार, बुरी नजर फॉलोज माय ब्रदर, बुरी नजर फॉलोज, खुशियाँ या बुरी नजर, खुशियाँ, बुरी नजर दौड़ कर आएगी, खोजेगी आपकी खुशियों को, खोजेगी। क्योंकि होता है ना कि आपने नई गाड़ी ली, बुरी नजर, नया घर लिया, बुरी नजर, कहीं घूमने चले गए, वाह बहुत अच्छा, और अंदर से बुरी नजर दौड़ कर आती है आपके पीछे रिश्तेदारों की। और सबसे फनी बात ये है कि ये चार लोग ना आपकी खुशी से ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि आपकी खुशी कितनी बड़ी है। लेकिन सच बताऊं, हर बार ना लोगों की नजर से डरने के बजाय अपनी खुशी एंजॉय करनी चाहिए। आप खुश हैं, आपने मेहनत की है, तो सेलिब्रेशन तो बनता ही है ना। बस चार लोग क्या कहेंगे, किसकी नजर लगेगी, ये सोच सोच करना अपनी खुशी को छोटा मत कीजिए। आपकी लाइफ है, खुशी भी आपकी है, सेलिब्रेशन भी आपका है। और अब इसी पॉजिटिव नोट के साथ चलते हैं पॉपकॉर्न अपडेट की तरफ। बॉलीवुड में क्या नया पक रहा है बताऊंगी थोड़ी देर में, तब तक के लिए ये गाना सिर्फ आपके लिए।

हेलो हेलो जी। तो चलिए फिर अब फरीदाबाद से निकलकर चलते हैं सीधा बैंगलोर। और बैंगलोर जाने की वजह ये है कि एक और साइबर स्कैम आ गया। वही बात है कि आंखें बंद करते नहीं और मार्केट में आ जाता है एक और स्कैम। तो देखिए, बैंगलोर में एक 80 इयर्स ओल्ड मैन के साथ स्कैम हो गया। तो ये स्कैम भी हुआ SIR के ऊपर, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिविजन फॉर्म वेरीफाई करने के नाम पर फेक इलेक्शन ऑफिशियल ने कॉल किया उन्हें और करीब ठग लिए इनसे 3.5 लाख रूपए। अब देखिए यहाँ पर स्कैम हुआ क्या। सबसे पहले स्कैमर्स ने इनसे बात की और इनको ना ट्रस्ट दिलाया, और ट्रस्ट कैसे दिलाया, गवर्नमेंट प्रोसेस के नाम पर। और फिर क्या था, वेरिफिकेशन के बहाने कर लिए गए पैसे ट्रांसफर। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको ये जरूर याद रखना है कि कोई भी गवर्नमेंट वेरिफिकेशन कॉल आए, प्रेशर में पेमेंट मत कीजिएगा कभी भी। ऑफिशियल वेबसाइट या फिर डिपार्टमेंट के वेरिफाइड नंबर से खुद को क्रॉस चेक कीजिएगा। और अगर आप कर चुके हैं कॉल, प्रेशर में आके पेमेंट भी कर चुके हैं ना, और अगर आपका पैसा साइबर फ्रॉड में चला भी गया, तो आपको क्या करना है, तुरंत 1930 पर आपको रिपोर्ट करना है। आपको पूरा इंसिडेंट बताना है कि आपके साथ क्या हुआ है, और होपफुली आपके पैसों की रिकवरी हो जाए। तो भाई यहाँ पर गोल्डन रूल ये है, जब भी स्कैमर बोले अभी वेरीफाई करो, आपको बोलना है पहले मैं वेरीफाई करता हूँ तुम असली हो या नहीं, और उसी के बाद ही पेमेंट कीजिएगा। और इसी के साथ स्टे अलर्ट, स्टे साइबर स्मार्ट। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ट्रैक। और

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: लवर्स।
1: रवि किशन का भौकाल और मिर्जापुर की तबाही, भाई ये कॉम्बिनेशन थिएटर में आने वाला है और इंटरनेट ऑलरेडी एक्साइटेड है। हाल ही में मिर्जापुर मूवी का ट्रेलर सामने आया और रवि किशन का लुक देखकर एक चीज तो क्लियर हो गई कि बब्बन बबुआ जो हैं भाई वो भौकाल बनाने के पूरे मूड में हैं। सोशल मीडिया पर उनका

ये लुक और रवि किशन का भौकाल और मिर्जापुर की तबाही वाला कैप्शन काफी ट्रेंड कर रहा है। और अगर आप मिर्जापुर के फैन हैं, तो कैलेंडर में ना डेट मार्क कर लीजिए, 4th सितंबर 2026 मिर्जापुर पहली बार बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी। तो अब सवाल ये है कि रवि किशन का ये भौकाल देखने के लिए कितने लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना पसंद करेंगे। और अब मिर्जापुर का नाम आ ही गया है, तो थोड़ा भौकाल तो बनता है। एक गाना हो जाए, मिलते हैं थोड़ी देर में।

0: चुल।
1: सुनना सुनना,
2: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
3: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे

अच्छा, हम लड़कियों को ना इंडियन वियर का एक अलग ही शौक होता है। एक अच्छा कुर्ता दिखा नहीं कि मन करता है कि इसको ले ही लो, और झुमके ये तो भाई हर ड्रेस के साथ ना अलग अलग चाहिए होते हैं, जूतीज अलग चाहिए होती हैं, और फिर भी वॉर्डरोब खोल के लगता है कि कपड़े तो बहुत हैं पर पहने क्या। अगर आपके साथ भी एग्जैक्टली यही होता है तो आज का स्टाइल स्टूडियो आपके काम का है। आज मैं बताऊंगी कि इंडियन वियर के वो एसेंशियल्स जो एक्चुअली आपकी वॉर्डरोब में ना होने चाहिए। सबसे पहले एक अच्छी स्ट्रेट वाइट पैंट ऑलमोस्ट हर कुर्ते के साथ चल जाएगी, और दूसरा एक न्यूट्रल दुपट्टा जो डिफरेंट कलर्स और आउटफिट के साथ इजीली पेयर हो सके। थर्ड वन है कि एक वर्सेटाइल कुर्ता जिसे आप सिंपल रखो तो कैजुअल, और एक्सेसरीज के साथ ड्रेसअप करो तो फेस्टिव लुक दे। फोर्थ वन इज अ कम्फर्टेबल पेयर ऑफ जूतीज जो एथनिक के साथ साथ इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स पर भी काम आ जाए। और लास्ट वन इज एक ऐसी ज्वेलरी जो मल्टीपल आउटफिट्स के साथ पेयर हो सके, क्योंकि एक अच्छे झुमके का पावर अंडर एस्टिमेट मत करना भाई। तो मेन पॉइंट ये है कि इंडियन वेयर वार्डरोब भरने के लिए ना आधा कपड़े नहीं राइट बेसिक्स चाहिए होते हैं। कभी ये नहीं कहना पड़ेगा कि कपड़े तो बहुत हैं पर कुछ एक साथ वर्क नहीं करता। और अब वार्डरोब से निकलते हैं अपने फरीदाबाद की तरफ, देखते हैं फरीदाबाद लोकल वर्ज में आज क्या नया है। लेकिन इस गाने के बाद स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

0: अफेक्ट करते रहती है, अंदर पॉल्यूटेड एयर घुसते रहती है। तो अगर पॉल्यूटेड एयर लगातार आपके फेफड़ों में घुसती है तो आपका अस्थमा बिगड़ सकता है, आपको सीओपीडी नाम की बीमारी हो सकती है, और साथ ही साथ एक बहुत खतरनाक बीमारी लंग कैंसर होने के चांस भी एयर पॉल्यूशन की वजह से बढ़ जाते हैं। इसके साथ हमें सबसे जरूरी बात ध्यान देने की है कि एयर पॉल्यूशन आपके सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि अगर पार्टिकुलेट मैटर काफी छोटे होते हैं तो आपके फेफड़ों के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाके आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, आपकी किडनी को और बॉडी के लगभग हर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें पॉल्यूटेड एयर में जाने से पूरी तरह से अपने आप को बचाना चाहिए। थैंक यू।
1: डॉक्टर कॉलिंग।

अगर आप फरीदाबाद में रहते हैं और वीकेंड पर कुछ ऐसा एक्सप्लोर करना चाहते हैं जहां थोड़ी हिस्ट्री हो, थोड़ी रॉयल वाइब्स हो, तो ये जगह सेव कर लीजिए। आज के फरीदाबाद लोकल वज में बात हो रही है राजा नाहर सिंह पैलेस की, जिसे बल्लभगढ़ फोर्ट भी कहा जाता है। बल्लभगढ़ के अंबेडकर चौक पर लोकेटेड ये पुराना महल अपने ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर और हिस्टोरिकल चार्म के लिए जाना जाता है। और अगर आपको हिस्ट्री, ओल्ड आर्किटेक्चर या फोटोग्राफी पसंद है तो यहाँ एक बार घूमकर जरूर आइए। फरीदाबाद में ही एक ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ थोड़ी देर के लिए सिटी से ज्यादा रॉयल एरा वाली फील आएगी। और हाँ, ये पैलेस सुबह 9 बजे खुलता है और रात 11 बजे तक ओपन रहता है, तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम फरीदाबाद में करे क्या वाला सवाल आए तो राजा नाहर सिंह पैलेस को लिस्ट में जरूर रखिएगा। चलिए, बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

अगर आपने कभी दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश की है तो खोसला का घोसला आपके लिए सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि पर्सनल ट्रॉमा है। तो वही ट्रॉमा दोबारा बड़े पर्दे पर लौटने वाला है क्योंकि खोसला का घोसला 2 ऑफिशियली बन रही है। अनुपम खेर, बोमन ईरानी और ओरिजिनल कास्ट के कई चेहरे फिर से वापस लौट रहे हैं। इस बार दिव्या खोसला भी कास्ट में शामिल हुई है। मतलब 2006 में खोसला परिवार अपनी जमीन के लिए परेशान था और 2026 में लगता है प्रॉपर्टी के दाम देखकर पूरी फैमिली ही परेशान होने वाली है। ये फिल्म 28 अगस्त 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली। दिल्ली की प्रॉपर्टी मार्केट पर थोड़ा फ्री का कमेंट्री भी। तो भाई, अगर पहली फिल्म देखकर आपने सोचा था काश मेरे पास भी खोसला जैसा पेशेंस होता, तो अब सीक्वल के साथ पेशेंस फिर से टेस्ट होने वाला है खोसला का घोसला 2, क्योंकि दिल्ली में घर मिलना मुश्किल है और अपनी जमीन वापस मिलना तो बॉलीवुड लेवल अचीवमेंट है। क्योंकि वो बातें जिनमें एंटरटेनमेंट भी है और थोड़ा सा अपनापन भी है।

What if I told you the worst thing that happened to you was actually the best thing that happened for you? क्योंकि कभी कभी ना जो चीज उस वक्त हमें तोड़ देती है वही बाद में हमारा टूटना जरूरी था। अगर कोई इंसान लाइफ से चला जाता है तो शायद आप खुद के उतना ही करीब आ जाते हो। कोई अपॉर्चुनिटी मिस होती है तो शायद कोई बेटर रास्ता खुल जाता है। कोई प्लान फेल होता है तो शायद लाइफ का

उनके साथ सेंस बनाती हैं। तो अगर हैं कि मेरे साथी तुम्हें भी कल आप वो कहते हैं ना, अगर आप बेहतर की तलाश, इसलिए बेहतर को बेहतरीन बनाने का जो सफर है ना, आप उस पर ध्यान दीजिए। इसी थॉट के साथ आज का द हैप्पी आवर्स को करते हैं शट डाउन। मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे थे 89.6 रेडियो महारानी। तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक

ऑफिशियल ने कॉल किया उन्हें और करीब ठग लिए इनसे 3.5 लाख रुपए। अब देखिए यहाँ पर स्कैम हुआ क्या। सबसे पहले स्कैमर्स ने इनसे बात की और इनको ना ट्रस्ट दिलाया, और ट्रस्ट कैसे दिलाया, गवर्नमेंट प्रोसेस के नाम पर। और फिर क्या था, वेरिफिकेशन के बहाने कर लिए गए पैसे ट्रांसफर। तो अब आपको करना है क्या, अब आपको ये जरूर याद रखना है कि कोई भी गवर्नमेंट वेरिफिकेशन कॉल आए, प्रेशर में पेमेंट मत कीजिएगा कभी भी। ऑफिशियल वेबसाइट या फिर डिपार्टमेंट के वेरिफाइड नंबर से खुद को क्रॉस चेक कीजिएगा। और अगर आप कर चुके हैं कॉल, प्रेशर में आके पेमेंट भी कर चुके हैं ना, और अगर आपका पैसा साइबर फ्रॉड में चला भी गया, तो आपको क्या करना है, तुरंत 1930 पर आपको रिपोर्ट करना है। आपको पूरा इंसिडेंट बताना है कि आपके साथ क्या हुआ है, और होपफुली आपके पैसों की रिकवरी हो जाए। तो भाई यहाँ पर गोल्डन रूल ये है, जब भी स्कैमर बोले अभी वेरीफाई करो, आपको बोलना है पहले मैं वेरीफाई करता हूँ तो फिर नहीं, और उसी के बाद ही पेमेंट कीजिएगा। और इसी के साथ स्टे अलर्ट, स्टे साइबर स्मार्ट। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ट्रैक। और

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: आसान ही आशिक हो जाना, पलकों पे कांटों को सजाना।
2: जब मोहब्बत इबादत बन जाए तो कुर्बानी कैसी। प्यार वो नहीं जो सिर्फ जीने दे, प्यार तो वो है जो खुद को मिटाकर भी दूसरे को जीने का हौसला दे।
1: तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना।
2: राहुल जैकर, एक मशहूर सिंगर जिसका सुर दुनिया के लिए एक जादू था।
1: सुन रहा है
2: अंदर का दुख एक ऐसा राग था जो सिर्फ वो समझता था। और फिर एक दिन एक बारिश भरी रात में उसकी आवाज से ज्यादा खूबसूरत एक आवाज उसके दिल तक पहुंची। आरोही।
3: आरोही
4: क्या?
3: कुछ नहीं, बस यूं ही।
1: हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा।
2: एक सिंपल सी लड़की जो सिर्फ गाना चाहती थी। राहुल ने उसके सपनों को पंख दिए, उसे बुलंदियों तक ले गया।
4: कितना अच्छा गाते हो तुम।
3: मैडम, ट्रेनिंग मेरी नहीं आपकी है, चलो गाओ।
5: तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना।
2: पर खुद वो प्यार जो उसके जीने की वजह बना, वही उसके होने का बोझ बन गया।
6: क्यों आए तुम? दूरी रहना था ना।
7: अरे यही तो बात है, जब तुम नहीं थी तो मेरा दुश्मन सिर्फ मैं ही था। इसके पहले कि मैं तुम्हारा बन जाऊं, जस्ट गो अवे।
1: भुला देना मुझे, है अलविदा तुझे।
2: आरोही का प्यार उसके लिए दुआ था, पर कभी कभी दुआएं भी किस्मत से नहीं जीत सकती। एक प्रेम कहानी जो अधूरी होकर भी पूरी थी, एक आशिकी जो मरने के बाद भी जिंदा थी।

जैक और रू आज भी टाइम मार रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहा।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: मैं अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ। रात बाकी बात बाकी।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, एक UI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

अब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज तो मौसम भी अच्छा हो गया, अब कल की चिंता हो रही होगी कि कल पतंग कैसे उड़ाई जाएगी। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। बिल्कुल आरजे गौरव इन द हाउस। एंड कल पतंग उड़ाने के लिए आपको बता दूं, मौसम फिर भी ठीक ठाक रहने वाला है। स्वागत है आप सभी का। आज तो फ्राइडे है ब्रो, और फ्राइडे के साथ साथ एक वीडियो आई है। वीडियो कुछ ऐसी है जिसमें दिखाया जा रहा है कि बहुत सारे लोग घूमने निकले पड़े हैं, पहाड़ों पर पहुंच गए हैं फिर से। तो करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में बात। एंड हाँ, आज पता है मैंने क्या देखा? मैंने देखा बारिश हो रही है, अंधेरा हो गया था दिन में। आपने भी नोटिस करा होगा ये चीज़, इसमें कोई नई बात नहीं है, बट जो मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूँ अब वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखो, बारिश जैसी होती ना, उसके बाद लगता है ट्रैफिक JAM, जाम, बड़ा जाम। मतलब ठीक है, ट्रैफिक जाम लगता है, मगर लोग अपना सिविक सेंस क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि क्या होता है, देखो एक सिंगल लेन में चल रहे होते हैं, फिर एक होशियार ड्राइवर वो रॉन्ग वे ले जाता है, और फिर वो जाम को डबल कर देता है, और फिर उसके बाद अपनी गलती नहीं मानता, फिर वो दूसरी गाड़ी के बीच में गाड़ी घुसाने की कोशिश करता है। ये आप लोगों ने भी फेस किया होगा अपनी लाइफ में, हम लोगों ने भी अपनी लाइफ में फेस किया है। और कुछ लोग तो इतने होशियार होते हैं, गाड़ी के काले शीशे करवा लेते हैं, अंदर से एक हूटर बजा लेते हैं, और फिर उसके बाद पता नहीं इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। पता क्यों नहीं होती? मेरे को एक रीज़न पता है, क्योंकि ये ना एक सर्टेन रेडियस के अंदर गाड़ी चलाते हैं। ये चलाते हैं 1-2 किलोमीटर अपने घर से दूर, बस उससे ज़्यादा दूर लेके नहीं जाएंगे। ये हैं ऑनलाइन वाले बदमाश। चलिए खैर, इन सब चीज़ों के बारे में बातें होगी, मगर अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए ये गाना 89.6 पर हस्ती रहे तू।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें। और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज गुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है अपनी

0: बकवास है।
1: आई नो ऐसा गाना नहीं चलाना चाहिए, मगर क्या करे, मौसम ही कुछ ज्यादा ही अच्छा हो गया और ये गाना चलाना ही पड़ गया मुझे, क्योंकि देखो वॉस फ्राइडे है ना ब्रो। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। एंड गौरव बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता इन सब हूलिगैनिज्म को, ऐसे कहते ना हूलिगैनिज्म ही तो कहते हैं। अभी स्वागत है आप सभी का, रेडियो का गौरव स्वागत करता है 89.6 पर, प्रोग्राम चल रहा है 4896। एंड अभी मैं बात करना चाहता हूँ एक ऐसी चीज़ की जो कि वायरल हो रही है, और वो इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है, वैली ऑफ फ्लावर्स का नाम तो आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, पता है क्यों? क्योंकि भीड़ अनएक्सपेक्टेड ट्रिपल नहीं 4 times हो गई है, और इतनी ज़्यादा भीड़ एक्सपेक्टेड ही नहीं थी कि इतनी ज़्यादा भीड़ आ जाएगी। एक्चुअली मैं कह रहा, देखो कल छुट्टी है लोगों की, और लोगों ने HR से बहाने बना दिए कि चलो मैडम

सर हम लोग छुट्टी पे हैं, हमारी तबीयत खराब है, ये हुआ है। फिर उनको पता लगा कि उनके एचआर खुद ही छुट्टी पर हैं और सब लोग मिलकर पहुंच गए हैं वैली ऑफ फ्लावर्स, उत्तराखंड में ये पड़ता है। एग्जैक्ट जगह लोकेशन मुझे नहीं मालूम, बट हाँ वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में मैंने रील्स बहुत सारी देखी है एंड ये अभी बिल्कुल ब्लॉसमिंग मौसम है उसके लिए। तो सब लोग पहुँच गए वहाँ पर और इतनी ज़्यादा भीड़ लग गई कि गेट बंद करने पड़े। और सिर्फ वहीं नहीं, पहाड़ों की और भी रील्स आ रही है जहाँ पर सब लोग सोच के गए हुए हैं कि चलो लॉन्ग वीकेंड है, हम लोग घूमते हैं। पर उनको ये बताया जाए कि लॉन्ग वीकेंड नहीं है, सिर्फ सैटरडे की तो छुट्टी है, संडे की तो वैसे भी छुट्टी मिलती है। अब आप फ्राइडे की छुट्टी लेकर निकले पड़े होंगे तो फिर वो बात ही अलग है। चलिए अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए गाने चलेंगे और उन्हीं में से ये गाना मनिंदर भुट्टर की आवाज़ में लारे है। इस गाने का नाम रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप सुनो तो।
1: इरशाद,
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है, इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

आज जब बारिश हुई उससे पहले वाला जो मौसम हुआ वो था मौसम देखने लायक। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। और आरजे गौरव में सुनने लायक यानी कि आप लोगों के लिए खूब सारे गाने लेकर आ गया हूँ मैं। एंड आज जो दिन का मौसम था वो बड़ा ही औसम था। मौसम विभाग ने कल ही बता दिया था, मैंने भी कल ही आपको बता दिया था कि बारिश तो होगी ही होगी, बट अभी बारिश के बारे में बात नहीं करने आया हूँ मैं बात करने आया हूँ बारिश के aftermaths की। क्योंकि जैसी बारिश होती है ना फिर उसके बाद लोग अपनी सिविक सेंस भूल जाते हैं। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि कोई ना कोई होशियार होता है जो रॉन्ग साइड गाड़ी ले आता है अपनी, पता नहीं उनको किस बात की जल्दी है, पता नहीं कहाँ जाना है इतनी जल्दी निकल के। और पता है ये लोग ना काम में कभी जल्दी नहीं दिखाते ये हमेशा सड़क पर ही जल्दबाजी दिखाते हैं। एंड अगर हम लोग बात करें लोगों के सिविक सेंस की तो उनकी वजह से ही, मतलब हम जैसे लोगों की वजह से, मैं अपने आप को भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, हम लोगों की वजह से ही नालियाँ जाम होती है। आपने क्या कभी चिप्स का पैकेट खा के रोड पे नहीं फेंका कि कोई नहीं देख रहा चलो फेंक देते हैं? क्या आपने कभी कोई पन्नी रोड पे नहीं फेंकी? अगर नहीं फेंकी तो वेल एंड गुड है, बट अगर फेंकी है तो आप भी मेरी तरह ही हैं, क्योंकि मैंने अननोइंगली बहुत बार ऐसा किया है, गिर गया हाथ से फिर मैंने वापस उठाया भी नहीं उसको, ईगो क्लैश हो जाता है ना कभी कभार, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है मेरी तरफ से। और मैं बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कूड़ा मत उठाइए बट फैलाइए भी मत, क्योंकि यही पन्नियां नालियां जाम करती हैं और फिर उसके बाद वाटर लॉगिंग हर जगह दिखाई देती है। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए एक प्यारा सा गाना इस सावन के मौसम को देखते हुए। रे मुझे सावन सुनिए।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

0: पता नहीं, मैं तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर है।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
3: मैं लाइकी की
4: आशा इस पंजाब।

0: पंजाबी पॉप कल्चर।
1: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है,
2: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है। हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
3: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

You guys, RJ Gaurav is back with another song और ये मिक्स मैशअप चलाया था मैंने आप लोगों के लिए रेडियो महारानी पर 5:51 चार घंटे के लिए आप सभी के साथ आता हूँ। ऑलमोस्ट एक घंटा खत्म होने वाला है बट अभी मैं बात करना चाहता हूँ फरीदाबाद की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिसके बारे में अक्सर हम लोग बात करते रहते हैं, वो है लोगों के अंदर सिविक सेंस की कमी। अभी बात करूंगा मैं ट्रैफिक के बारे में क्योंकि मुझे पता है अभी बहुत सारे लोग अभी ऑफिस से घर जा रहे होंगे, आप लोग सड़क पर हो सकता है आप ट्रैफिक में फंसे हो। जी हाँ, आपसे ही बात कर रहा हूँ, आप अगर ट्रैफिक में फंसे और जबरदस्ती बेवजह हॉर्न दबाए जा रहे हैं कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपके जो आगे खड़ा है उसके आगे भी कोई ना कोई खड़ा होगा, उसके आगे भी कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जो टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी लगा के खड़ा हो गया होगा। एंड यू नो वॉट, सड़क पर अगर हम लोग बात करें लोकल मार्केट्स की, जैसे आपके पर्टिकुलर सेक्टर की मार्केट होगी, तो वहाँ पर ना कुछ लोग होते हैं जो गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी खड़ी कर जाते हैं और फिर वो छोटी छोटी गलियों में भी जाम लग जाता है। और फिर हम लोग अगर बात करें बड़ी मार्केट्स की, जैसे NID1 है, तो उसमें तो गाड़ी ले जाना ऐसा लगता है मुझे पाप है क्योंकि अगर उसमें आप लोग गाड़ी ले गए, गलती से आप लोग अगर गाड़ी ले गए तो फिर दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है, गाड़ी निकालने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो ये है जी सिविक सेंस की कमी कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि गाड़ी कहाँ लगानी है। एंड फिर उसके बाद कुछ दुकानदारों ने, आप सभी को पता है, अतिक्रमण करके रोड तक अपनी दुकान लगा रखी है जस्ट बिकॉज ऑफ कमिंग राखी, और ये 15 अगस्त की वजह से भी लोगों ने दुकानें आगे बढ़ा रखी है, तो इनके ऊपर भी कोई एक्शन तो होना ही चाहिए। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग एंजॉय करते रहिए, आप सभी के लिए गाना गले मिट्टी मिट्टी बोल, सुनिए इस गाने को 89.6 पर।

0: सिनेमा का कैप्सूल।
1: हे सिनेमा लवर्स, मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल, जहाँ हर कैप्सूल में मिलता है सिनेमा की दुनिया का एक फ्रेश अपडेट, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज और वो बातें जो शायद आपने अभी तक मिस कर दी हैं। तो आज का कैप्सूल है उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी इमरान हाशमी के सॉन्ग्स को हेडफोन्स लगाकर फुल फील के साथ सुना है, क्योंकि एक कल्ट क्लासिक अब अपना अगला चैप्टर लेकर वापस आ रही है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट आवारापन 2। 2007 में आई आवारापन कोई टिपिकल बॉलीवुड फिल्म नहीं थी, एक्शन था, इमोशंस थे, लेकिन सबसे बड़ी यूएसपी थी उसका सोल। इमरान हाशमी का शिवम पंडित एक ऐसा कैरेक्टर जो बोलता कम था लेकिन ऑडियंस से सीधा कनेक्ट कर जाता था। और ऑनेस्टली उस फिल्म का म्यूजिक आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में सेफ्टी से रखा हुआ है। अब लगभग 20 साल बाद शिवम पंडित फिर से लौट रहा है। आवारापन 2 का ट्रेलर फाइनली आउट हो चुका है। फिल्म 14 अगस्त 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। ट्रेलर में वही इंटेंस इमरान हाशमी वाइब देखने को मिल रही है, एक्सप्रेशंस वही, साइलेंस वही, लेकिन कहानी इस बार पहले से कहीं ज्यादा लेयर्ड और एक्शन पैक्ड लग रही है। फिल्म में दिशा पाटनी और शबाना आजमी भी अहम रोल्स में है, तो कास्टिंग भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे बॉलीवुड में सीक्वल बनाना सबसे रिस्की गेम है, क्योंकि ऑडियंस टिकट सिर्फ नई स्टोरी देखने के लिए नहीं खरीदती, वो अपनी पुरानी मेमोरीज भी साथ लेकर आती है। और आवारापन जैसी फिल्म के फैंस की एक्सपेक्टेशन तो वैसे भी काफी ज्यादा हाई है, लेकिन ट्रेलर देखकर इतना जरूर लग रहा है कि मेकर्स ने सिर्फ नाम कैश करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने उस ओरिजिनल इमोशन को भी पकड़ने की कोशिश की है जिसने पहली फिल्म को कल्ट बनाया था। अब देखना यह है कि आवारापन 2 वही मैजिक रिक्रिएट कर पाती है या नहीं, लेकिन फिलहाल ट्रेलर ने फैंस की एक्साइटमेंट जरूर बढ़ा दी है। तो अगर आपने अभी तक इसका ट्रेलर नहीं देखा है, एक बार जरूर देखिए, क्योंकि कुछ स्टोरीज नॉस्टैल्जिया की वजह से नहीं, अपने इमोशंस की वजह से याद आ जाती है। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ के
4: जिन मनुष्यों को दानवों से बचा रहा है कलयुग में वे स्वयं दानवों से कहीं अधिक पापी हो जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब उनके पाप धरती के सबसे बड़े दानव को जन्म देंगे जिसके जागते ही संपूर्ण मानव जाति हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगी।
5: मैं धूम्रपान का आदि हूँ, भोले को भांग चढ़ाता हूँ।

0: चाहे वो कर सकता हूँ। सब छोड़ के सारे बुरे कर्म लो, मानवता पर चलता हूँ। क्यों इंतजार करे हम सब श्री कृष्ण के अवतार का, सब मिलकर हम निर्माण करे नव सतयुग से समाज का, जहाँ पशु को पूजा जाता हो और मांस कोई ना खाता हो, हर मानव में मानवता हो, ना मानवता दिखावा हो।
1: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, ये आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
2: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

मेरा मन कर रहा है एक गाना गाने का, और वो गाना ये वाला तो नहीं था, जरा जरा बहकता है। मेरा मन था गाना गाने का, है माजा तेरा तेज। रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है। कैसे हो आप सब? अब मांझे की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि है मांझा तेरा तेज, प्लास्टिक का मांझा, चाइनीज मांझा, कांच वाला मांझा भी होता है पता आपको, और इससे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जो चिड़िया उड़ रही होती है ना, सोचो उनको नहीं दिखाई देगा ये मांझा, उनके पंखों पर लग सकता है, उनके पंख कट सकते हैं, वो हमेशा के लिए अपाहिज हो सकते हैं। और इसके अलावा जो बाइकर्स होते हैं ना, जो बाइक चला रहे होते हैं, तो उन्होंने सिर्फ हेलमेट पहना होता है, गले पे कुछ नहीं पहना होता। तो अभी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी है जिसमें किसी ना किसी बाइकर के गले पे निशान पड़ गया है, कट लग गया है मांझे की वजह से। एंड अभी मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ ये प्लास्टिक का मांझा या फिर ये तेज़ धार वाला मांझा प्लीज़ यूज़ करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे हर साल कोई ना कोई नुकसान ज़रूर होता है। भले ही देखो छोटे मोटे कट्स पड़े, और काफ़ी बार ये जानलेवा भी साबित होता है। तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे वाले मांझे को जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। और देखो सद्दी से पतंग उड़ा लो, जो वाइट वाला होता है, सद्दी कहते हैं ना उसे, मुझे तो बचपन से यही याद है सद्दी कहते हैं, तो उससे जैसे कन्ने बांधते हैं, तो उसी से आप लोग पतंग उड़ाइए। क्या पतंग काटनी एक दूसरे की, और बस उड़ाते जाओ, और खूब ऊँची उड़ाने के बाद आप डोर तोड़ दो और उड़ने दो उसे। चलिए बस यही बोलना चाहता था कि मांझा सही तरह से इस्तेमाल कीजिए, कोई तेज़ धार वाला मांझा इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि उससे किसी भी इंसान को दिक्कत हो सकती है। और अगर आप लोग बाइक चला रहे हैं तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कल अपने गर्दन पे कपड़ा ज़रूर बांध के चलाइएगा, क्योंकि मांझा कहीं से भी आ सकता है। फिलहाल आप सभी के लिए तलविंदर की आवाज़ में ये गाना, रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: करते हैं
0: इरशाद,
1: जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, तौलिया और बनियान पहनकर ऑफिस आता हूँ।
0: ऑफिस जाते हो या शौचालय?
1: अरे आगे सुनो।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं, जो जिंदगी
0: पर। महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं, बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ तो इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर उड़ी निकाला, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अन्य नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

यो गाइस, रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है और वक्त हो चुका है नाइटमेयर का। नाइटमेयर मींस नॉट बुरे सपने, नहीं बता रहा मैं आप लोगों को, मैं सपनों को डिकोड कर रहे हैं यहाँ पर और हम लोग आप लोगों के साथ सारे सपनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, सपने में क्या होता है, सपने में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट आज मैं जिस सपने की बात करने वाला हूँ वो है, सपने में कभी आप लोगों ने मछली देखी है? क्योंकि मैंने कल ही देखी, कल मीन्स कल रात को और आज सुबह बेसिकली देखी मैंने सपने में। और इसका सिंपल सा मतलब है कि कुछ खुशखबरी आने वाली या फिर फाइनेंशियल गेन होने वाला है। तो क्या मेरे पास फाइनेंशियल गेन होने वाला है? पैसा ही पैसा होगा। चलिए खैर, बता दो, आपको शुभ संकेत माना जाता है मछली का दिखना, जैसे तैरती हुई मछली है, रंग बिरंगी मछलियाँ हैं, मछली पकड़ रहे हो अगर आप लोग, इसका मतलब है आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और अगर मछली खाते हुए देख रहे हो तो फिर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ कुछ ना बैड साइंस भी होते हैं सपनों के, जैसे कि अगर आप मछली देख रहे हो और आपने देखा मरी हुई मछली है, तो गंदे पानी में मरी हुई मछली का मतलब है कि फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है। या फिर अगर तड़पती हुई मछली देख रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि परेशानी आने वाली है, तो उसकी चेतावनी है। तो सपने ना सिर्फ एक सपना नहीं होता, वो बहुत कुछ होता है, वो बहुत कुछ बताता है, जीवन में आने वाली चीज़ों के बारे में संकेत भी देता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप लोगों ने जो सपना देखा होता है वो असलियत में हो जाती है चीज़ें। अब देखो, आपने सपने में देखा कि आप उड़ रहे हो, वो तो असलियत में नहीं होगा, बट हो सकता है आप प्लेन में बैठ के कहीं और जाने वाले हो। क्या पता आप लोगों की विदेश यात्रा के भोग लग रहे हो, कुछ भी हो रहे हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो सपने का कोई मतलब होता है और हम लोग इस टाइम हर रोज सपनों को डिकोड करते हैं। तो चलिए, अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, वापस आकर थोड़ा और भी बातें करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी के लिए ये गाना।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

क्या हो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच चल रहा है और यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। और बताऊं आपको, इसमें ना पूरे 30 प्लस प्लेयर्स हैं, मतलब 30 प्लस मींस 30 की एज के प्लस प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलियन टीम में। सिर्फ एक ही लड़का है जो 27 साल का है, वो है वेदरलैंड भी नहीं है, इसका नाम वेदरआल्ट करके नाम है। और आपको बिलीव नहीं होगा, 198 पे ऑल आउट हो गई ये टीम। कैसे? मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा। तो कल से तो वैसे इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच शुरू होने वाले हैं, बट ऑस्ट्रेलियन टीम, इतनी बढ़िया टीम, उनके सारे प्लेयर आउट होते चले गए। और इसमें एक नया प्लेयर है महमूद करके बांग्लादेश में, उस लड़के ने 6 विकेट ले ली 17 ओवर डाल के, सिर्फ और सिर्फ 55 रन खाए। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सेकेंड इनिंग की, मतलब जो बैटिंग करने के लिए बांग्लादेश आए, तो बांग्लादेश वालों के एक प्लेयर है हसन भाई, इस लड़के ने 101 रन बना दिए। और आज का मैच तो, आज का दिन तो खत्म हो चुका है, आप सभी को पता, टाइम भी हो चुका है वैसे तो, बट स्टिल इन लोगों ने कैसे ऑस्ट्रेलिया को इतनी पीछे कर दिया। और अभी 351 रन बना चुके हैं ये, 153 रन की लीड हासिल कर ली है। सेकेंड इनिंग में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि अभी 153 की लीड हासिल करी, अब कल जब मैच शुरू होगा तो कहीं ना कहीं 200 रन की भी लीड हासिल कर लेते हैं, मान लेते हैं ये, तो फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को बहुत अच्छे से खेलना पड़ेगा, नहीं तो पूरे विश्व में थूतू थूतू हो जाएगी। तो चलिए, ये क्रिकेट है अनिश्चितताओं का खेल है, अनिश्चितताओं ऐसे बोलते हैं, अनिश्चितताओं का खेल है वैसे तो। इंडिया वर्सेस श्रीलंका कल सुबह 10 बजे से शुरू होने वाला है, तो उसमें कुछ अनिश्चितता का खेल देखने को ना मिले, यही मैं प्रे करता हूँ। और अभी फिलहाल आप सभी के लिए गाना चलता हूँ, ब्रदर वी की आवाज में ये गाना, आत्मा रामा, रेडियो महारानी 99.6 पर।

अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, एक यूआई का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महाराष्ट्र जनहित में जारी।

0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
2: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
2: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
2: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
2: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन।

एक शरीर है, दो मनुष्य लगता मेरे भीतर रहते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि सब कुंडली देख के कहते हैं, एक तो है सीधा बड़ा और दूसरा बहुत ही पापी है। मेरी हरकतों से बस पता चले कब कौन सा मुझ

संसार संसार का ना पर बुद्धि को एकांत करा। मैं पढ़ता गया मैंने बुद्धि में ब्रह्मांड भरा। मैं शून्य बना, मैं शांत बना, डिवोइस मैं देवांश बना। मैं लिखता गया अब कोई लगाम विचार पे ना।

आने वाले कुछ महीनों में कौन कौन सी बड़ी बड़ी फिल्में हैं जो कि पर्दों पर आने वाली है, जो कि रिलीज होने वाली है और वो बम्पर कमाई कर जाएगी, जस्ट लाइक बॉर्डर 2, जस्ट लाइक धुरंधर 2। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। बिल्कुल, रेडियो का गौरव स्वागत करता है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। और अभी मैं जो बात बोल रहा हूँ वो ये है कि बॉक्स ऑफिस पर अगला धुरंधर कौन बनेगा। टॉक्सिक मूवी आने वाली है, टॉक्सिक में है सुपरस्टार यश, और फिर उसके अलावा मूवी आने वाली है रामायण। रामायण में मल्टी स्टारर मूवी है ये। रणबीर कपूर जिनको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं ये तो अभी वक्त बताएगा, क्योंकि एनिमल में जो एक किरदार निभाया था इन्होंने, अब उससे बिल्कुल डिफरेंट किरदार है। मुझे तो ये भी यकीन नहीं हो रहा कि रणबीर कपूर ही है। खैर, अभी जो फिल्मों की बात कर रहा हूँ तो उसमें दृश्यम पार्ट 3 भी है, और दृश्यम पार्ट 3 में क्या होने वाला है जरा सोचिए इसके बारे में। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ दृश्यम के लिए। और इसी के साथ साथ बता दूँ आपको, बॉक्स ऑफिस पर जो अगला धुरंधर बन सकता है वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि टॉक्सिक हो सकती है या फिर बंटवारा 1947 भी हो सकती है, क्योंकि इसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है। मगर इन सब के बाद बिल्कुल दिसंबर में क्रिसमस पे क्या होने वाला है। क्रिसमस आप लोगों को लग रहा हो ना बहुत दूर है, नहीं है दूर, अगस्त भी अभी तक दूर लग रहा था, अब देखो कितनी जल्दी अगस्त आ गया। खैर, क्रिसमस पे आने वाली है फिल्म किंग खान की, किंग यानी कि शाहरुख खान की मूवी आने वाली है किंग, और उसके लिए भी बहुत सारे उनके जो फैन है वो वेट कर रहे हैं। और इसके साथ डूम्सडे आने वाली है इसी साल दिसंबर में, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एवेंजर्स डूम्सडे ओवरशैडो कर जाएगी किंग को। आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर। नंबर है जी हमारा 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर एक गाना चला रहा हूँ और हर्ष लेखारी की आवाज में है ये गाना बेबे बापू। सुनिए इस गाने को, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट।

7:05 मेरी स्टूडियो क्लॉक में और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी 89.6 पर आप लोगों ने सुना एड शीरन की आवाज में बढ़िया से गाना करण औजला के साथ। ये इन दोनों ने सिमेट्री बनाई थी रेडियो का गौरव आरजे गौरव। और सिमेट्री का हाल कुछ ऐसा है कि देखो हमारे फोन में भी कुछ ना कुछ होता है एंड फोन की सिक्योरिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। सबसे पहले आपको कोई भी अनऑथराइज्ड एप्स डाउनलोड नहीं करने। रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है एंड मैं ऐसी बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टेक्निकल बातें करने का वक्त आ चुका है। एंड भाई सब लोग ना पता क्या करते हैं, देखो सबसे ज़्यादा खतब होती है जब लोग टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं होते। मैं किसी को अनपढ़ नहीं कह रहा, मैं बोल रहा हूँ टेक्नोलॉजी अवेयरनेस। तो टेक्नोलॉजी अवेयरनेस बेसिकली ऐसी चीज़ है जो कि अच्छे पढ़े लिखों को भी नहीं होता, क्योंकि देखो हमारे पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं बट काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है टेक्नोलॉजी में जहाँ पर वो उसको नहीं यूज़ कर पाते, दे आर नॉट यूज़र फ्रेंडली या फिर कुछ भी कह सकते हैं। तो हमारे फ़ोन में काफ़ी बार ऐसा होता है कि अनऑथराइज्ड ऐप्स भी डाउनलोड हो रखी होती हैं और हमें पता ही नहीं होता। तो आज आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने पेरेंट्स के मोबाइल फ़ोन को यूज़ करना है और उनके मोबाइल फ़ोन्स में चेक करना है कि कोई अनऑथराइज्ड ऐप तो डाउनलोड हो रखी या फिर कोई ऐसी ऐप जो आपको लगता है ये क्यों है इनके फ़ोन में, तो उसको डिलीट कर दीजिए सबसे पहले। फिर उसके बाद उनका आप व्हाट्सएप भी चेक कर सकते हैं। देखो प्राइवेसी मैटर्स आई नो बट व्हाट्सएप पे अननोन नंबर्स चेक कीजिए, नोन नंबर्स को मैसेज खोल के मत देखिएगा, अननोन नंबर्स चेक कीजिए कि उनकी तरफ से कोई एपीके फाइल तो नहीं आई है, क्योंकि ये एपीके फाइल्स के थ्रू आपके फोन में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा गाना चला रहा हूँ केके की आवाज में। रेडियो महारानी 89.6 FM सुन रहे हैं आप, आरजे गौरव है आप सभी के साथ।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: पर
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

सुबह भी हंसी है, शाम भी हंसी है, और ये म्यूजिक जो चल रहा है बैकग्राउंड में, ये तो बहुत ही ज्यादा वाला हंसी है तलविंदर की आवाज में। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। नहीं, ये सेगमेंट का नाम है क्या हाल है, और इसमें मैं वो बात करना चाहता हूँ जैसे काफी बार होता है ना कि आपने किसी को पैसे उधार दे रखे हैं और वो इंसान वापस नहीं कर रहा है, तो जिससे पूछो क्या हाल है। अरे भाई, पैसे मेरे पास थे, अब लोगों के पास है, बस वापस आने का प्लान नहीं है। लोगों से पूछो क्या हाल है, मतलब जिसने पैसे दे रखे ना उस इंसान से जाके पूछो क्या हाल है, वो बोलेगा बढ़िया है, बस मेरे पैसे मुझसे ज़्यादा दूसरों के घर में खुश हैं। उससे पूछोगे फिर से कि क्या हाल है, वो बोलेगा सब ठीक है, बस जिसने उधार लिया था वो मुझे देख के ऐसे बिहेव करता है जैसे कि मैंने उससे पैसे मांगे हो। ऐसा होता है ना काफ़ी बार, आपने किसी को पैसे उधार दे रखे हो, वो बोलता है भाई तुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी। अरे तुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्या ऐसा सवाल है, मेरे पैसे हैं, मुझे ही नहीं ज़रूरत पड़ेगी। और अगर उससे पूछ लो कि क्या हाल है, वो बोलता है भाई पैसे तो मेरे हैं लेकिन अब उस इंसान की लोकेशन अननोन है जिसको मैंने पैसे दिए थे।

कर दिया गया बेसिकली, वर्ड का हेर फेर हो गया थोड़ा सा। अगर आप किसी इंसान से पूछोगे जिसने पैसे उधार दे रखे, उससे पूछोगे कि क्या हाल है, वो बोलेगा मैं तो फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, बस मेरे पैसे मेरे साथ स्टेबल नहीं है, क्योंकि जिस इंसान ने मुझसे पैसे लिए थे वो इंसान पैसे वापस करने को तैयार नहीं है। तो ये था आज का क्या हाल है। तो आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगन होंगे जो लोगन में पैसे उधार दे रखे होंगे किसी और लोगन को, तो उन लोगों से पैसे वापस मांग लीजिए, क्योंकि वो इंसान ढीठ होते हैं, वो पैसे वापस करने को तैयार ही नहीं होंगे। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी और पल पल दे।

रेडियो का गौरव स्वागत करता है आप सभी का रेडियो महारानी पर। शो चल रहा है HR86 एंड क्या हाल है। मैं अगर आपसे पूछूंगा क्या हाल है, आप बोलोगे बढ़िया है, तो ये सेगमेंट का नाम है क्या हाल है। और आज मैं बात करना चाहता हूँ कि हम लोगों की नींदें पूरी नहीं हो रही, सबके साथ यही सीन है। बच्चों से मैंने आज पूछा, वो भी कह रहे थे कि हाँ हम लोग रात को 2 बजे सोते, सुबह 6 बजे उठ भी जाते स्कूल आने के लिए। हैट्स ऑफ ऐसे बच्चों को, सलाम है। खैर बच्चों से पूछो क्या हाल है, किसी से भी पूछ लो क्या हाल है, तो बोलते बस जिंदा हूँ, दिमाग अभी भी कल रात की नींद ढूंढ रहा है। किसी से फिर से पूछ लो कि क्या हाल है, सामने से क्या जवाब आता है, ठीक हूँ बस आंखें मुझसे पर्सनल स्पेस मांग रही है, होता है ना, नींद आती है बहुत ज़्यादा। और किसी से पूछ लो क्या हाल है, तो नींद 4 घंटे की मिली होती है बस, बोलते हैं लेकिन बॉडी को ना 8 घंटे का सब्सक्रिप्शन चाहिए था, बट हम लोगों ने नहीं दिया। खैर आंखें खुली हैं पर सिस्टम अभी भी रीबूट मांग रहा है, होता है ना, रीस्टार्ट मांगते हैं हम लोग। हमारी बॉडी काफ़ी बार एडजस्ट नहीं कर पाती जब हम लोगों की नींद कम होती है। सुबह अलार्म भी बजता है, मैंने नहीं, मेरी रू ने स्नूज किया होता है, क्योंकि मैं तो रोज़ अलार्म को स्नूज ही कर देता हूँ, पता नहीं फिर भी अगले दिन 6:10 का अलार्म रोज़ लगा देता हूँ। और इसी के साथ साथ आप सभी को बता दूँ कि दिमाग में थॉट्स नहीं है, बस अब सब कुछ बफर पे चल रहा है, होता है ना, वीडियो हम लोग चालू करते हैं तो बफरिंग बहुत देर तक वो लोड है ना, तो मेरे साथ भी वही हो रहा है जस्ट बिकॉज नींद पूरी नहीं हुई है। अब किसी से पूछो क्या हाल है, वो यही बोलता है कि कल रात नींद पूरी नहीं हुई, आज कॉफ़ी मेरी बायोलॉजिकल मदर बन चुकी है एंड बॉडी ऑफिस आ गई है लेकिन दिमाग अभी तक तकिए के नीचे पड़ा है। तो यही था आज का क्या हाल है। और अभी आप सभी के लिए गाने चलेंगे और गाने का नाम है बाय बाय बाय आदित्य भारद्वाज। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
3: ओ,

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
2: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन।

0: काश मैं ये गाना गा पाता, ये
1: मस्तानी नहीं गा पा रहा, क्यों सबको पता है इसका रीजन।
2: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव।
1: कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए, मैं तो भीगना चाहता हूँ बारिश में, क्योंकि बारिश कहीं अता पता लापता हो चुकी है। देखो मॉनसून का सीजन है तो यार बारिश, मौसम विभाग कह रहा है कि रात के 9 बजे बारिश हो सकती है। मुझे विश्वास नहीं है इन पे, बिल्कुल नहीं है विश्वास। और कल के भी चांसेस 40% दिखा रहा है बारिश के, एंड विश्वास वही बात बोलूंगा कि नहीं है मुझे विश्वास। पिछले मंगलवार को बहुत अच्छी बारिश हुई थी और इस मंगलवार को बारिश होगी या नहीं होगी ये तो वक्त बताएगा, बट उससे पिछले मंगलवार भी बारिश अच्छी हुई थी। तो ये मंगलवार टू मंगलवार बारिश हो रही है, बाकी किसी दिन बारिश नहीं हो रही है। एंड बारिश से आप लोग सोचोगे गौरव तुझे इतना प्रेम क्यों है, प्रेम नहीं है मुझे ना, ये जो उमस है, या तो देखो निकले रहे फिर तो वो हम लोग गर्मी सहन कर लेंगे, बट ये जो उमस वाली गर्मी है ना ये सहन नहीं होती, बिल्कुल भी सहन नहीं होती। और अगर पूरे हफ्ते का हाल बताऊं तो इस हफ्ते हल्की फुल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है, मैक्सिमम चांसेस 70%, वो भी थर्सडे को। तो देखते हैं कितने चांसेस बढ़ते हैं या फिर घटते हैं इस वाले हफ्ते में। एंड इसी के साथ साथ आप सभी को बता दूं कि जब बारिश आती है ना तो दिक्कतें भी आती हैं, जैसे कि ट्रैफिक जैम और उसके साथ साथ वाटर लॉगिंग। और ट्रैफिक जैम की अगर मैंने बात करी है तो अगर आप लोग कहीं पर भी इस टाइम ट्रैफिक में फंसे हैं, लिप्त हो रखे हैं ट्रैफिक में आसपास से, लिप्त इसलिए बोल रहा हूँ लिपटे पड़े हैं बोलूंगा, लिपटे पड़े हैं आसपास से ट्रैफिक से, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। नंबर है मेरा 9654896896। देखो कॉल उठाने में देरी हो सकती है बट व्हाट्सएप मैसेज पढ़ने में देरी नहीं होगी। आप व्हाट्सएप पर मैसेज डालिए, फिर से नंबर रिपीट कर देता हूँ 9654896896। अपना नाम जरूर लिख के भेजिएगा ताकि हम लोग सबको बता सके कि कौन कहाँ पर फंसा है। फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए ये गाना ब्राउन मंडे, रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: जीवन का असल सुख किसी और के जीने की वजह बन जाना। सूरज की गर्मी तेज है, हर तरफ तपती जमीन है, लेकिन सोचिए कहीं कोई छोटी सी जान एक बूंद पानी के इंतजार में है। बस एक आदत बना लो, एक छोटी सी प्याली पानी भरकर किसी सुरक्षित जगह रख दो। छोटी सी मेहनत लेकिन किसी के लिए बड़ी राहत। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, उनके लिए भी सोचिए।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग है और तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे क्लास तो पीती जा। सुन

दो गानों का जो मिक्स मैशअप होता है ना वो कुछ अलग ही निकल कर आया है, और ये था गाना रमता जोगी और रंगीला ढोलना। मजा आ रहा था डांस करने में इस गाने पे, बट स्टिल गाना बहुत ज्यादा अच्छा था। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। साल मूवी से था ये गाना, और इसी गाने के साथ स्वागत है रेडियो महारानी पर। रेडियो का गौरव आरजे गौरव आप सभी का स्वागत करता है। एंड रमता जोगी 1999 मूवी में आया था ताल, मतलब मूवी आई थी ताल, उसमें एक गाना था रमता जोगी और ए आर रहमान द्वारा कंपोज किया गया था ये गाना। एंड अगर आपको बताऊँ ना तो इसमें बेसिकली आपको सूफी इंस्पायर्ड म्यूजिक सुनने को मिला। अभी बात चल रही है सॉन्ग्स डीकोड करने की, रोज इस टाइम कोई ना कोई गाने को हम लोग पकड़ते हैं, उसको डीकोड करने की कोशिश करते हैं। तो गाने की लाइन क्या थी, मैं प्रेम दा प्याला पिया है मैं रमता जोगी रमता जोगी। ये गाना आप लोगों ने बचपन से ही सुना होगा, मैंने तो सुना है बचपन से। और इसका मतलब क्या है, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी ट्रेडिशनल लाइफ को बिल्कुल खत्म कर दिया है प्यार के लिए, फिर क्या कह रहा है, मैं प्रेम दा प्याला पी आया, और प्रेम दा प्याला पी ही उसको नशा सा हो गया और एकदम से लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस उसको देखने को मिले। मैं प्रेम दा प्याला पी आया सारी मधुशाला जी आया मैं पिया। तो गाना बड़ा ही अच्छा है और इसमें दिखाई दे रहा है कि हमारे अंदर जो स्पिरिचुअल कॉलिंग होती है ना वो कहाँ से आ रही है, ये सब चीज़ें गाने के अंदर दिखाई गई है। कभी सोचा है गाने के अंदर क्या क्या चीज़ें छुपी रहती है? अगर नहीं सोचा तो रेडियो महारानी सुनते रहिएगा, क्योंकि ऐसे ही रोज शाम को सॉन्ग्स डिकोड करते रहेंगे, वो भी ऑलमोस्ट इसी टाइम। अभी फिलहाल आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ जो कि मेरा फेवरेट है, इक्का बादशाह डीनो जेम्स की आवाज़ में रेडियो महारानी पर।

0: सेट रख तो औकात अलग, हीरो बनने का है अगर शौक, पहले इंसान बन यही है रोक। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: आज सुबह का वो मंजर देखने के बाद मेरे मन में बहुत से सवाल आए। क्या था वो मंजर? सेक्टर 21 सी का एशियन के बिल्कुल ठीक सामने क्या हुआ?
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव,
0: आरजे गौरव इन द हाउस। आप सभी का स्वागत है रेडियो महारानी 89.6 पर। आप सुन रहे हैं शो HR 896। एक्चुअली में सुबह सुबह एक वीडियो आती है, वो है सेक्टर 21 सी की एशियन के सामने वाली वीडियो, और वहां पर रेड लाइट में एक पूरा का पूरा ट्रक घुसा हुआ था। अब उस ट्रक ऐसा लगा कि ये रात में ही घुसा है, क्योंकि देखो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग सब लोग जो ऑफिस जाते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा रश में थे, और वहां पर लगा था लंबा वाला ट्रैफिक जाम। बट हैट्स ऑफ टू ट्रैफिक पुलिस, उन्होंने बहुत जल्दी उस ट्रैफिक को क्लियर करवाया और साथ ही साथ ट्रली करवाया था, और गनीमत ये रही कि किसी और गाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एंड मैं बस इतना बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि देखो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है ना जहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है, तो हम लोगों को ना कोऑपरेट करना चाहिए। लाइक बाकी लोगों के बीच में गाड़ी नहीं घुसानी, रॉन्ग वे आपको गाड़ी नहीं ले जानी, वो जो ट्रैफिक पुलिस वहाँ पर जो खड़े हैं, जो मौजूद है, वो तुरंत ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे। वेट किया कीजिए बस थोड़ा सा, और इसी के साथ साथ कहीं पर अगर ट्रैफिक लगा है तो हमें बताइएगा जरूर। नंबर है हमारा 9654896896। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको सिर्फ ये याद रखना है 9654, आगे का नंबर है 896896।

0: पर
1: यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
3: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

क्या आप लोगों ने अपने आप को सपने में कभी उड़ते हुए देखा है? मैंने तो बहुत बार देखा है, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। हाय नी अप्पा, फिर मिलेंगे। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। बिल्कुल आरजे गौरव आप सभी का स्वागत करता है। सपनों को डीकोड करने का वक्त आ चुका है। नाइटमेयर, यानी कि नाइटमेयर तो वैसे खराब होता है, स्पूकी होता है, डरावना होता है, बट मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए सपने डीकोड करने का। रोज इस टाइम सपने डीकोड करते हैं हम लोग। और मैंने ये सोचा कि देखो, काफी बार ऐसा होता है हम लोग सपने में उड़ रहे होते हैं या फिर कहीं से गिर रहे होते हैं, मगर अभी गिरने की बात नहीं करेंगे, अभी उड़ने की बात करेंगे। तो इसका मतलब हो सकता है, एस्ट्रोलॉजिकल मीनिंग है कि आपकी करियर, बिजनेस या फिर जॉब में आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाली, तरक्की मिलने वाली। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। या फिर हो सकता है आपकी जितनी परेशानियां हैं उन सब से मुक्ति मिलने वाली है। कोई पुरानी प्रॉब्लम है वो खत्म होने वाली है, स्ट्रेस हो सकता है वो भी खत्म होने वाला है, और आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ सकता है। यार कितनी कमाल की बात है ना, सपने हमें बहुत कुछ बता जाते हैं। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि हम लोगों को अपने सपने ही याद नहीं रहते। तो देखो, अगर कल को आपको याद रहे कि आप सपने में उड़ रहे हो, तो समझ जाना कुछ तो अच्छा होने वाला है। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो सकता है, या फिर हो सकता है आप किसी दुख से बाहर निकलने वाले हो। और इसका ना एक साइकोलॉजिकल मतलब भी होता है। काफ़ी बार ऐसा होता है हम लोग माइंड में बहुत ज़्यादा घिचपिच चल रही है, ब्रेन फॉग है और स्ट्रेस है, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोगों को ना आज़ादी चाहिए चीज़ों से। नहीं, वो वाली आज़ादी नहीं जो रील्स पे देखते हो, मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। काफ़ी बार अंदर से हम लोग बिल्कुल फ्री महसूस करना चाहते हैं, हम लोग खुश रहना चाहते हैं, मगर बंधन में बंधे हुए हैं। तो इसका मतलब यही है, आप सपने में उड़ते हुए देखते हो अपने आप को, तो मतलब यही है कि आप अपने आप को खुले में महसूस करना चाहते हो, आप बंधन से छूटना चाहते हो। तो करके देखिए एक बार। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि कंट्रोल, आपका लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में होता है ना, जब तो आप हवा में उड़ते हुए ही दिखोगे सपनों में। तो चलिए इसी के साथ साथ रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजेंगे, उन्हीं में से ये गाना, केड़े पासे जाइए सजना।

save life. पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जय रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

अक्सर मन में ख्याल आता है कि जिम तो मुझे जाना है, मगर जिम चालू कैसे किया जाए, क्योंकि हम सब हो गए हैं आलसी। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। जी हाँ, रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है। एंड अभी मैं बात करना चाहता हूँ, अगर जिम जाने का मन है तो पता आप लोगों को करना क्या है। आप लोगों को ना बस एक जिम का सब्सक्रिप्शन ले लेना है। दूसरी चीज, मोटिवेट करने के लिए कुछ कुछ वीडियोस देखते रहा करो। और तीसरी चीज, ऑलवेज रिमेम्बर व्हाई यू स्टार्टेड। और आज मैं जिम ब्रो लेकर आया है आप लोगों के लिए कि कैसे आप लोग अपने आप को घर से जिम तक पहुंचा सकते हो। एक तरीका है प्री वर्कआउट। प्री वर्कआउट में मील क्या लेनी है, प्री वर्कआउट में करना क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, वर्कआउट से पहले आप लोगों ने कुछ ना कुछ खाना है। केले खा लीजिए, ऐसा नहीं कि 12 केले के बारे में खा गए, वैसे इतना कोई खा नहीं सकता। 2 केले आप खा सकते हैं, उसके अलावा ब्लैक कॉफी अगर पी सकते हैं तो ज़रूर पीजिएगा। टेस्ट लेके मत पीना, छोटा सा हल्का सा गुनगुना पानी करना और उसमें तुरंत कॉफ़ी घोल के और एक बार में पी जाना। थोड़ी सी कड़वी लग सकती है, बट हाँ, वो एनर्जी आपको इंस्टेंट देगी। और अगर इसके अलावा अगर आप प्री वर्कआउट खरीद के ला सकते हैं मार्केट से, वो भी खरीद लीजिए। उसमें होता है बीटा एलेनाइन। अब बीटा एलेनाइन करता क्या है? बीटा एलेनाइन आपकी बॉडी में क्रैम्प्स पड़ने से रोकता है, मसल्स को टूटने से रोकेगा, आपकी मसल में इंजरी ना हो जाए इसलिए ब्लड मसल्स तक पहुँचा देगा। और बीटा एलेनाइन थोड़ी सी बॉडी में सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन भी कर सकता है। तो कम क्वांटिटी वाला बीटा एलेनाइन लीजिए और किसी डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा ये सब चीज़ें लेने से पहले। और अभी फिलहाल जिम ब्रो को दीजिए इजाजत, एक गाना चला रहा हूँ आप लोगों के लिए। वापस आकर और भी डेढ़ो बातें होती रहेंगी मेरे दोस्त।

मोहम्मद सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकले, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

0: Radishan.
1: Let's go.
2: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट का ओवर

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती।

इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

पता ही नहीं चलता कि कैसे वक्त निकल जाता है। लो 9 बजने वाले हैं। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। मैं सही कह रहा हूँ ना, टाइम का पता नहीं चलता। 5 से 9 मेरा शो आता है और वक्त देखो कैसे बीतता चला गया और ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है 8:48 मेरी स्टूडियो क्लॉक में। तो मतलब सोचो, 4 घंटे से मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ, बातें करी, खूब सारी गप्पे शप्पे मारी हम लोगों ने। मतलब मेरी तरफ से ज़्यादा बोलचाल दी, आपकी तरफ से कॉल्स नहीं आई मुझे। मतलब कोई इशू नहीं है, नो इशूज़। आप लोग कल कॉल कर सकते हैं मुझे, मेरा एक सिंपल सा नंबर है। हाँ, मैसेज आए हैं मेरे पास 2-3 लोगों के, बट फिर वो ये मैसेज में आप लोग ये फूल वाले गुड इवनिंग भेज देते ना चाय के साथ, चाय बिस्किट के साथ, असली में भेज दिया कीजिए। एड्रेस चाहिए मेरे को, मैसेज कर लो। नंबर है मेरा 9654896896। तो मेरे पास लोगों के मैसेज आते हैं ना, बड़े इंटरेस्टिंग से आते हैं। गुड मॉर्निंग वाले एक अंकल हैं, वो तो रोज़ भेजते हैं। अब मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता ना इधर। तो गुड मॉर्निंग वाले अंकल हैं जो रोज़ गुड मॉर्निंग मैसेज भेजते हैं। अब कोई अननोन नंबर है। एक दिन एक कार्ड आया है मेरे पास, किस चीज़ का, वेडिंग कार्ड आ गया मेरे पास। एंड आई वाज लाइक, डाउनलोड करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि एक तो अननोन नंबर से आया, दूसरा स्कैम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो मुझे डर लगा, तो मैंने नहीं किया डाउनलोड। और बस मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास भी अननोन नंबर से कोई भी मैसेज आता है तो उस लिंक पे क्लिक नहीं करना है। कोई भी फाइल आती है तो उसको भी डाउनलोड नहीं करना है। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी से मुझे दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय, सायोनारा। मिलेंगे आप सभी से फिर से कल शाम सेम टाइम सेम जगह 5 से 9 रेडियो महारानी 89.6 FM पर। तब तक के लिए ये गाना आप सभी के लिए।

बॉल्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
0: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

रात थोड़ी और गहरी हो चली है और शायद इस वक्त दिन भर की भागदौड़ के बाद हम सबके पास अपने दिल की आवाज सुनने का थोड़ा सा वक्त है। आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी और ये है इश्क बाजियां, जहां हम मोहब्बत को सिर्फ महसूस नहीं करते बल्कि उसे अल्फाज भी देते हैं। और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत, और इश्क बाजियां का ये वो हिस्सा है जहां हम इश्क और शायरों की बात करते हैं, यानी कि इश्क शायराना। कभी किसी शायर के लफ्जों में हमें अपना कोई पुराना रिश्ता मिल जाता है, कभी कोई अधूरी बातचीत, कभी किसी का इंतजार, और कभी वो सवाल जो हमने सामने वालों से कभी पूछा ही नहीं। आज की रात एक ऐसे ही शायर के नाम है दाग दहलवी साहब। दाग की सबसे खूबसूरत बात ये है कि उन्होंने इश्क को बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया। उनकी शायरी में मोहब्बत है मगर उसके साथ नखरा भी है, शिकायत भी है और थोड़ी सी शरारत भी है। उनके शब्दों में मोहब्बत कोई दूर की चीज नहीं लगती बल्कि बिल्कुल हमारी जिंदगी जैसी लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई सामने बैठकर कह रहा हो, अच्छा तो तुम नाराज हो, चलो पहले ये बताओ नाराज क्यों हो। शायद इसीलिए दाग की शायरी आज भी इतनी अपनी सी लगती है, क्योंकि उन्होंने इश्क को आसमान पर नहीं रखा बल्कि हम इंसानों के बीच रखा है। और अब कुछ ऐसे अल्फाज जिनमें आपको शायद अपनी कोई पुरानी कहानी, कोई पुराना खत या कोई ऐसा नाम मिल जाए जिसे आपने बहुत पहले भुलाने की कोशिश की थी। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां, मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत।

इसी खूबसूरत से गाने के साथ स्वागत है, शो है इश्कबाजिया में, आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। रात की इस खूबसूरत महफिल में इश्कबाजिया के साथ, और ये है हमारा खास सेगमेंट इश्क शायराना। हमने बात की है दाग दहलवी साहब के बारे में, उनके अंदाज, उनके इश्क के बारे में, लेकिन अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए दाग आज भी याद किए जाते हैं, उनके अल्फाज। कभी आपने नोटिस किया है किसी भी रिश्ते में प्रॉब्लम एक्चुअली तब शुरू नहीं होती जब वो आपसे दूर होता है, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आपको उसकी क्लोजनेस में किसी और की प्रेजेंस महसूस होने लगे। एक नया नाम, एक नया जिक्र, एक बदला हुआ अंदाज, और फिर दिमाग कहता है शायद कुछ नहीं है, लेकिन दिल कहता है नहीं कुछ तो है। और दाग दहलवी ने इसी कुछ तो है वाली बेचैनी को कितने खूबसूरत अल्फाजों में लिखा है। तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था, ना था रकीब तो वो आखिर नाम किसका था। सोचिए सिर्फ एक खत में आया हुआ एक नया नाम और पूरी मोहब्बत के कॉन्फिडेंस पर सवाल खड़ा हो जाता है। अब आप बताइए कि आपने कभी किसी के मैसेज में कोई छोटी सी बात नोटिस करके पूरी कहानी दिमाग में बना ली है, कभी ऑनलाइन दिखने पर, कभी किसी की फोटो में किसी का नाम देखकर, या कभी बस इस वजह से कि आज तुम पहले जैसे बात नहीं कर रहे। लव इज स्ट्रेंज राइट, कभी कोई बड़ी बात नहीं होती, बस टोन बदलती है और हमें तब समझ आता है। दाग का अगला शेर है कि वो कत्ल करके मुझे हर किसी से पूछते हैं, ये काम किसने किया है, ये काम किसका था, यानी दर्द भी उसी ने दिया और फिर बड़े मासूम बनकर पूछ रहे हैं किसने दिल दुखाया है। वाह दाग साहब, और ऑनेस्टली ये सिचुएशन आज भी कितनी रिलेटेबल है ना। तो अगर आपको किसी के बिहेवियर में कुछ तो बदला है वाली फीलिंग आए तो शायद दाग को पढ़िएगा, हो सकता है आपके अपने सवाल का जवाब आपको मिल जाए, लेकिन अपने सवाल के लिए सही अल्फाज जरूर मिलेंगे आपको। मैं हूँ इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी, और ये है इश्क बाजियां। स्टे विद मी क्योंकि दाग की कहानी अभी बाकी है।

Namaste, myself Dr. Rajni Benival. I am a dentist and a nutritional psychologist. I am a women health coach and teen parenting expert. Over the 13 years of experience, as the social media is growing, I can see बहुत सारे लोग social media follow करते हैं, बहुत सारे trends follow करते हैं, बहुत सारे influencers और celebrities को follow करते हैं और crash diets करते हैं, जो कि उनकी body के लिए बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं है. जो दूसरे की body पे suit कर रहा है, वो आपकी बॉडी पे सूट करेगा, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. कुदरत ने जैसे हम सबके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट बनाए हैं, हम सबकी बॉडी अलग है. हमारा डेली रूटीन ही डिसाइड करता है कि हमें कितने अमाउंट में कितने न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स कंज्यूम करने चाहिए. एक डे नॉर्मल जो हम घर की थाली में खाना खाते हैं, वो हमारे डेली नॉर्मल रूटीन के लिए कम्फर्टेबल है. लेकिन आप कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, या एक पर्टिकुलर किसी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स का आपको जानना बहुत ज़रूरी है. और वो आप एक नियर बाय डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह से ही डिसाइड करें कि कौन सा सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपके लिए सही रहेगा, कितना प्रोटीन आपको कंज्यूम करना चाहिए और अपनी डाइट में आपको क्या वेरिएशंस लाने चाहिए कि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सके. तो अपने आप कुछ भी रैंडमली मत खाइए, एक सही सलाहकार की मदद से ही आप अपने भोजन को चुनिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए. धन्यवाद. डॉक्टर कॉलिंग.

इसी खूबसूरत से गाने के साथ स्वागत है, शो है इश्क बाजियां में आपके साथ हूँ। इश्क वाली गीत बात चल रही है दाग दहलवी साहब के बारे में। और कभी कभी ना रिलेशनशिप में कोई बड़ी फाइट नहीं होती है, ना कोई ड्रामेटिक ब्रेकअप होता है, बस एफर्ट्स कम होने लगते हैं। पहले जो इंसान खुद मैसेज करता था, अब आपके मैसेज का रिप्लाई भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करता है। पहले जैसे आपकी छोटी छोटी बातें याद रहती थी, अब उसे आपकी बड़ी बड़ी बातें भी याद नहीं रहती हैं। और आप पूछते भी नहीं, क्योंकि डर लगता है कि कहीं जवाब वो ना मिल जाए जिसका डर आपको पहले से है। हैव यू एवर बीन देयर, जहां रिश्ता टेक्निकली खत्म नहीं हुआ लेकिन दिल को लगने लगा कुछ तो खत्म हो गया है। दाग दहलवी की यही तो खूबसूरती है, उन्होंने इश्क के सिर्फ खूबसूरत हिस्से नहीं लिखे बल्कि उस प्यार को भी लिखा है जिसमें शक है, शिकायत है, उम्मीद है और टूटने का डर भी है। उनकी गजलों में प्यार है, जिंदगी बहुत सहज है, प्लेफुल है, लेकिन इमोशंस जो है वो दिखाई देते हैं। और इसी गजल में एक जगह वो कहते हैं, वफा करेंगे निभाएंगे बात मानेंगे तुम्हें भी याद है, ये कलाम किसका था। सोचिए, प्रॉमिसेस याद है वो कि मैं हमेशा साथ रहूंगा, याद है वो कुछ भी हो जाए हम साथ हैं, याद है, क्योंकि रिलेशनशिप में कई

बैठे होते हैं और शायद यही वजह है कुछ रिश्ते खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होते हैं। लोग चले जाते हैं लेकिन उनके कहे हुए शब्द हमारे अंदर रह जाते हैं। कभी किसी का एक मैं होना सालों तक याद रहता है और कभी किसी का एक अब पहले जैसा कुछ नहीं है पूरी कहानी बदल देता है। तो अगर आज रात आपके दिल में कोई भी ऐसी अनफिनिश्ड कॉन्वर्सेशन है, कुछ कहना है, कुछ पूछना है या बस मन हल्का करना है, यू कैन टॉक टू मी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर RJGeet01 पर DM कर सकते हैं, रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। नाम बताना जरूरी नहीं है, कभी कभी बस अपने दिल की बात बोल देना ही इनफ होता है। बिकॉज सम फीलिंग डोंट नीड अ सोल्यूशन, दे जस्ट नीड अ लिसनर। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रही हैं इश्क बाजियां। स्टे विद मी, रात अभी बाकी है और दाग के अल्फाज में छुपी और कुछ मोहब्बत की बातें बाकी है।

सिनेमा का कैप्सूल। तो भाई बॉलीवुड ने सोचा कि थोड़ा सा डराया जाए और डराने के लिए लेकर आए हैं अक्षय कुमार और सैफ अली खान अपनी फिल्म हैवान का टीजर। आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल और आज का कैप्सूल थोड़ा सा ज्यादा सस्पिशियस है क्योंकि टीजर देखकर समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हैवान है कौन। टीजर में सैफ अली खान एक विजुअली इंस्पायर्ड कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, वहीं अक्षय कुमार का लुक और उनकी क्रीपी सी हंसी, भाई साहब हंसी है या वार्निंग बेल। ऊपर से मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस और इसका जो डायरेक्शन है वो काफी खास है, यानी कहानी में क्या चल रहा है इसका अंदाजा लगा।

बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, और यही शायद टीजर की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। जितना दिखाया गया है उससे कहीं ज्यादा छुपाया गया है। अब असली बात, सैफ बेचारे हैं, अक्षय खतरनाक है, कहानी में पिक्चर कुछ और ही है, इस सवाल का जवाब मिलेगा 11th of September जब हैवान थिएटर्स में आएगी। फिलहाल टीजर ने क्यूरियोसिटी तो जगा दी है और अक्षय की वो हंसी कानों में छोड़ दी है।

0: बाजियां। Once again, welcome back. You all are listening Radio Maharani 89.6 FM कुछ हट के शो है इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। कुछ रिश्ते ना ऑफिशियली कभी खत्म नहीं होते हैं, बस उनकी फ्रिक्वेंसी बदल जाती है। पहले घंटों बातें होती थी अब बस टेक केयर पर कन्वर्सेशन खत्म हो जाती है। पहले एक दूसरे की खामोशी समझ आ जाती थी, अब बार बार एक्सप्लेन करना पड़ता है कि मुझे बुरा क्यों लगा। और शायद सबसे मुश्किल चीज यही है जब आपको प्यार तो अब भी उतना ही हो लेकिन सामने वाला आपको उतनी जगह देना बंद कर दे। बागदलवी साहब की बातों में इश्क का ये रंग बार बार दिखाई देता है। लव, शिकायत और वो हल्की सी प्लेफुल टीजिंग जो दर्द को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देती है। उनका एक शेर है, मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है, मेरी जान चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। जरा इस बात को आज के रिश्तों से जोड़ कर देखिए। आज हम लोगों से कनेक्ट तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, एक स्वाइप, एक फॉलो, एक DM, लेकिन जेन्युइनली कनेक्ट होना वो आज भी उतना मुश्किल है। किसी का आपकी लाइफ में होना और किसी का आपकी लाइफ को समझना दोनों बहुत अलग बातें हैं। और अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसके सामने आपको अपनी फीलिंग एडिट ना करनी पड़े, जहां आपको हर बार स्ट्रांग बनने का ड्रामा ना करना पड़े, जहां आप बस अपने जैसे रह सकें, क्योंकि दाग साहब यही कहते हैं, चाहने वाला हर कोई नहीं होता और जो सच में दिल से चाहे वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो आज की रात एक छोटा सा सवाल आपके लिए, क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसे आपने कभी प्रॉपरली थैंक यू नहीं कहा? कोई
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

कुछ लव स्टोरीज ऐसी होती हैं जो खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती। एक जमाना ऐसा था जहां ना इंस्टाग्राम था, ना व्हाट्सएप था, ना लेट नाइट कॉल्स, फिर भी लोग प्यार में पड़ते थे, चिट्ठियां लिखते थे, नजरें मिलाते थे और कभी कभी तो सिर्फ एक मुलाकात के इंतजार में पूरा दिन गुजार देते थे। आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी और इश्क बाजिया में अब वक्त है थोड़ा सा पीछे जाने का, जहाँ प्यार थोड़ा स्लो था लेकिन शायद थोड़ा ज्यादा इंटेंस भी। ये है रेट्रो इश्क और आज की कहानी है दो ऐसे सितारों की जिनकी केमिस्ट्री सिर्फ स्क्रीन पर नहीं थी बल्कि कैमरा बंद होने के बाद भी उनके बीच एक कहानी चल रही थी। नाम है देवानंद साहब और सुरैया। 1940s का बॉम्बे, फिल्मी दुनिया अपने गोल्डन फेज की तरफ बढ़ रही थी और इसी दौरान विद्या के सेट पर देवानंद साहब और सुरैया की मुलाकात होती है। कहानी में ट्विस्ट ये था कि सुरैया उस वक्त एक बड़ी स्टार थी और देवानंद अभी भी अपनी जगह बना रहे थे, लेकिन प्यार को ना बॉक्स ऑफिस समझ पाता है ना स्टारडम। कहा जाता है विद्या की शूटिंग के दौरान एक इंसिडेंट ने दोनों की नजदीकियां बढ़ाई। एक बोट सीक्वेंस के दौरान सुरैया को बचाने के बाद देवानंद की तरफ उनका दिल और झुक गया और फिर शुरू हुआ वो दौर जहां फीलिंग थी लेकिन उन्हें ओपनली कहना इतना इजी नहीं था। लव लेटर्स लिखे जाते थे लेकिन सीधे हाथ में नहीं दिए जाते थे। कभी कोई को-स्टार मैसेंजर बनता, कभी कोई कैमरामैन, कभी कोई डायरेक्टर। आज के जमाने में हम एक डीएम करके पूछ लेते हैं सो आर वी डेटिंग, और उस दौर में एक चिट्ठी पहुंचाने के लिए भी पूरी एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती थी। लेकिन शायद यही तो उस प्यार की खूबसूरती थी, देयर वॉज नो इंस्टेंट एक्सेस, और जब इंतजार होता था ना तो एक छोटी सी मुलाकात भी बहुत बड़ी लगती थी। देवानंद साहब और सुरैया की ये कहानी अभी शुरू हुई थी लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इस प्यार के सामने सबसे बड़ा सवाल होगा, क्या दो लोग सिर्फ एक दूसरे से प्यार करके साथ रह सकते हैं। इसका जवाब शायद उतना आसान नहीं था। स्टे विद मी क्योंकि रेट्रो इश्क की कहानी अभी शुरू हुई है

0: दो सर, मैं बैंक से बोल रहा हूं। अच्छा, और मैं चांद पर प्लॉट बेच रहा हूं। आपका अकाउंट खतरे में है सर।
1: हेलो सर, हेलो सर।
0: पहले डराए फिर

Venom, please.

रेडियो महारानी पर रात का ये सफर जारी है और इश्क बाजिया में अब हम वापस जा रहे हैं उस दौर में जहां प्यार के लिए एक फोन कॉल भी इवेंट हुआ करता था। ये है हमारा सेगमेंट रेट्रो इश्क। अभी हमने कुछ ही देर पहले बात शुरू की थी देवानंद साहब और सुरैया की, दोस्तास जो पर्दे पर साथ आए और धीरे धीरे असल जिंदगी में भी एक दूसरे के हो गए। लेकिन अब कहानी थोड़ी सीरियस होने वाली है क्योंकि प्यार चुप कर करना ईजी नहीं है ना, लेकिन प्यार के लिए स्टैंड लेना दैट वॉज द रियल टेस्ट। देवानंद साहब और सुरैया एक दूसरे को लव लेटर्स और मैसेजेस के जरिए कनेक्ट किया करते थे। कई बार उनके कोस्टार्स इस सीक्रेट कम्युनिकेशन में मदद करते थे। जरा इमेजिन कीजिए, आज हम किसी को पसंद करते हैं तो इंस्टाग्राम खोलते हैं, प्रोफाइल देखते हैं, एक लाइक करते हैं और फिर शायद डीएम, और उस दौर में एक खत लिखा जाता था, फिर सोचा जाता था कि ये खत पहुंचाया कैसे जाए, फिर इंतजार होता था कि जवाब आएगा या नहीं, और शायद इसी इंतजार में उनके प्यार को और ज्यादा इंटेंस बना दिया जाता था। फिर आया वो मोमेंट जब देवानंद साहब ने सुरैया से शादी के लिए बात की। उन्होंने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि प्यार के आगे बाकी सारी चीजें छोटी हैं। सुरैया भी उनसे प्यार करती थी लेकिन फैमिली का प्रेशर बहुत बड़ा था। देवानंद साहब ने उन्हें उस वक्त एक डायमंड रिंग दी, उस वक्त करीब 3,000 की रिंग वो बताई जाती है। अब सोचिए, एक तरफ वो रिंग है और एक तरफ वो इंसान है जिसे आप अपना पूरा फ्यूचर मान चुके हैं, और दूसरी तरफ फैमिली की वो आवाज जो कह रही है ये रिश्ता नहीं हो सकता। आज भी कितने रिलेशनशिप इसी जगह आकर रुक जाते हैं ना, जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन उनके बीच सिर्फ फीलिंग्स नहीं सर्कमस्टांसेस भी खड़े होते हैं। तो तब सवाल ये नहीं रहता कि डू यू लव मी, सवाल हो जाता है हाउ फार आर यू विलिंग टू गो फॉर दिस लव। देवानंद साहब शायद इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार थे लेकिन सुरैया के लिए चीजें इतनी सिंपल नहीं थी, और शायद यहीं से उनकी लव स्टोरी का सबसे पेनफुल चैप्टर शुरू होता है। क्योंकि कभी कभी दो लोगों के बीच प्यार कम नहीं होता, बस उनके पास उसे बचाने की फ्रीडम नहीं होती। अभी वक्त है गाने का, स्टे विद मी, क्योंकि रेट्रो इश्क की कहानी अभी कुछ दिल तोड़ने वाली है।

Namaste, myself Dr. Rajni Beniwal. I am a dentist and a nutritional psychologist. Over 13 years of experience, I'm a women health coach and a teen parenting expert. So, हमारी daily diet में nutrition balance maintain करना क्यों जरूरी है? Nutrition और food हमारी life का basic fuel है. अगर हम सही amount of food नहीं खाएंगे, सही quality of food नहीं खाएंगे, तो हमारी body का balance definitely बिगड़ जाएगा. हम लोग गो की बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है अलग अलग वर्क काम करने के लिए. हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, प्रोटीन्स की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, मिनरल्स और विटामिन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है और कुछ हेल्दी फैट्स की बहुत जरूरत है. एंड द बेसिक थिंग इज हाइड्रेशन, एक कंप्लीट अमाउंट में वाटर इनटेक मस्ट. तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, इन सबके सोर्सेस का हमें पता होना बहुत जरूरी है. और कार्बोहाइड्रेट्स हमें अनाज से मिलता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं, एक अच्छा गाय का देसी घी से हमें बहुत अच्छा गुड फैट मिलता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरली पार्ट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हमें दाल और बहुत सारी चीज, पनीर और मीट, एग, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है. और अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत जरूरी है. ये सब चीजें जब बैलेंस्ड रहेंगी तभी हमारी बॉडी में हर एक चीज बैलेंस तरीके से काम कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे. तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है और न्यूट्रिशन को समझ के खाना खाना ही आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है.

रेडियो महारानी पर रात थोड़ी सी और गहरी हो गई है और इश्क बाजिया में चल रहा है रेट्रो इश्क। मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। हमने बात की थी देवानंद साहब और सुरैया की, एक तरफ प्यार था और दूसरी तरफ परिवार की बंदिशें। लेकिन असली हार्ट ब्रेक तब शुरू होता है जब आपको ये समझ आ जाए कि आप सामने वाले से प्यार करते हैं लेकिन उसके साथ जिंदगी जी पाना शायद अब आपके हाथों में नहीं है। देवानंद साहब शादी के लिए तैयार थे, उन्होंने सुरैया को कोर्ट मैरिज के लिए मनाया लेकिन सुरैया की ग्रैंड मदर इस रिश्ते के खिलाफ थी। और एक और बात थी, देव चाहते थे कि शादी के बाद सुरैया अपना करियर छोड़ दे। सुरैया जो उस वक्त एक बहुत बड़ी स्टार थी इसके लिए तैयार नहीं थी। अब जरा आज की बात कर लेते हैं, किसी रिलेशनशिप में प्यार है लेकिन फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस अलग है। एक कहता है मेरे साथ चलो, दूसरा कहता है मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ लेकिन खुद को छोड़कर नहीं। एंड दैट्स वेयर थिंग्स गेट कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि प्यार में हम अक्सर ये पूछते हैं क्या तुम उससे प्यार करते हो, लेकिन शायद असली सवाल ये होना चाहिए क्या हम एक दूसरे की जिंदगी और चॉइसेस की रिस्पेक्ट भी कर सकते हैं। देव साहब और सुरैया की कहानी में फैमिली प्रेशर भी था, अलग बैकग्राउंड भी थे, पर्सनल चॉइसेस भी थी और आखिरकार सुरैया ने शादी से इनकार कर दिया। उन्होंने बाद में खुद कहा था कि शायद उनके अंदर उस कदम को उठाने का कॉन्फिडेंस नहीं था और ये भी कि शायद वो मिस्टेक थी या शायद डेस्टिनी। यहीं पर ये कहानी आज के लोगों से कनेक्ट करती है। कितने रिलेशनशिप्स ऐसे हैं ना जहाँ दो लोग एक दूसरे को जेन्युइनली चाहते हैं लेकिन टाइमिंग सही नहीं है। कभी करियर बीच में आ जाता है, कभी फैमिली, कभी डिस्टेंस, कभी ईगो, या कभी दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हुए भी ये सीख नहीं पाते कि एक दूसरे के लिए जगह कैसे बनाई जाए। बिकॉज लव इज नॉट जस्ट अबाउट choosing someone, it is also about accepting them as they are. देव और सुरैया की कहानी यहीं टूट जाती है। देवानंद साहब आगे बढ़ जाते हैं और सुरैया, उन्होंने कभी शादी नहीं की। अब सवाल ये नहीं है कि उनकी कहानी में कौन सही था या कौन गलत। शायद कुछ लव स्टोरीज में कोई विलन नहीं होता, समटाइम्स लाइफ इटसेल्फ बिकम द विलन। और कुछ कहानियां हैप्पी एंडिंग के लिए नहीं होती, वो बस हमें सिखाने आती हैं किसी को चाहना और किसी के साथ जिंदगी बिता पाना दो कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स है। अब इस कहानी का सबसे इमोशनल

सिनेमा लवर्स, वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 9.6 एफएम, जहाँ मैं बात करती हूँ उन मूवी शोज और ओटीटी अपडेट्स की जो इन दिनों एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में लगातार चर्चा में है। और इस हफ्ते की ओटीटी कन्वर्सेशन में एक नया नाम ऐसा भी है जिसको इग्नोर करना थोड़ा सा मुश्किल है, द ट्रेटर सीजन 2 वापस आ चुका है और इस बार गेम पहले से भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल लग रहा है। करण जौहर फिर से साइकोलॉजिकल रियलिटी गेम को होस्ट कर रहे हैं, लेकिन असली अट्रैक्शन वो 21 सेलिब्रिटी प्लेयर्स जो एक पैलेस में एंटर करते हैं, जिसमें से कुछ होंगे इनोसेंट और कुछ होंगे सीक्रेटली चुने हुए ट्रेटर्स, मतलब सामने बैठा इंसान दोस्त है, एले है या फिर वही आपको गेम से बाहर लाने की पूरी प्लानिंग कर रहा है। ये पता लगाना इस पूरे गेम का सबसे

बड़ा चैलेंज है। सीजन में मलिका शेरावत, मुनव्वर फारूकी, रिया चक्रवर्ती, श्वेता तिवारी जैसे कई फैमिलियर फेसेस नजर आ रहे हैं और यही सेलिब्रिटी मिक्स शो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है। लेकिन द ट्रेटर्स की खासियत सिर्फ सेलिब्रिटी फेसेस नहीं है बल्कि इसका पूरा फंड ट्रस्ट और बीट्रेल के बीच है। यहाँ लाउडेस्ट प्लेयर जरूरी नहीं कि स्मार्टेस्ट प्लेयर हो और जो सबसे ज्यादा इनोसेंट दिखाई दे हो सकता है वही सबसे बड़ा ट्रेटर निकले। तो अगर आप रियलिटी टीवी को सिर्फ ड्रामे के लिए नहीं बल्कि माइंड गेम, स्ट्रेटजी, एलिगेशंस और डिसेप्शन के लिए देखना पसंद करते हैं तो द ट्रेटर सीजन 2 इस हफ्ते आपकी ओटीटी वॉच लिस्ट में जगह बना सकता है। और हाँ, एक और बात, इस गेम में किसी पर जल्दी ट्रस्ट करना शायद आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है।

0: तो देव साहब और सुरैया की कहानी में सबसे खूबसूरत बात शायद ये नहीं थी कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, बल्कि ये थी कि वो प्यार खत्म नहीं हुआ, बस उसकी कहानी अधूरी रह गई। शो है इश्क बाजिया में आपके साथ इश्क वाली गीत। और आज जब हम रिलेशनशिप्स में क्लोजर ढूंढते हैं, एक आखिरी कॉल, एक आखिरी मैसेज, एक एक्सप्लेनेशन कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन कुछ कहानियों को क्लोजर मिलता ही नहीं। कुछ कहानियां बस दिल के किसी कोने में रखी रह जाती हैं, बिल्कुल उस पुराने खत की तरह जिसे सालों बाद खोलो तो कागज पुराना हो चुका होता है, लेकिन फीलिंग्स अभी भी फ्रेश हैं। देव साहब और सुरैया की कहानी भी शायद ऐसी ही थी। दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, लेकिन वो जो व्हाट इफ था ना, अगर उस वक्त हालात हमारे फेवर में होते तो सवाल शायद कभी पीछे नहीं छूटता। और शायद यही तो लव की सबसे स्ट्रेंज बात है, हम किसी इंसान को अपनी जिंदगी से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई पॉसिबिलिटीज को इतनी आसानी से नहीं निकाल पाते। कभी कभी हम इंसान को नहीं, उस फ्यूचर को मिस करते हैं जो उसके साथ हमने कभी इमेजिन किया था। और शायद इसीलिए देव साहब और सुरैया की कहानी आज भी इतनी ज्यादा रेलेवेंट लगती है, क्योंकि आज भी प्यार में लोग फैमिली, सोसाइटी, करियर, टाइमिंग, इन सब के बीच कहीं ना कहीं खुद को चूज करने की कोशिश कर रहे हैं। बस फर्क इतना है, तब प्यार के लिए चिट्ठियां भेजी जाती थी, आज टाइपिंग दिखता है तो फिर से सिर्फ सीन, और तब एक डायमंड रिंग पूरी कहानी का सिंबल बन सकती थी। आज हजारों मैसेजेस के बाद भी कोई कमिटमेंट नहीं मिलता, लेकिन एक चीज शायद तब भी सेम थी और आज भी सेम है, जब प्यार सच्चा होता है ना तो उसका असर रिलेशनशिप खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होता। कभी कभी कुछ अधूरी कहानियां ही हमें सबसे ज्यादा याद रह जाती हैं, क्योंकि पूरी कहानी खत्म हो जाती है लेकिन अधूरी कहानी में हमेशा एक सवाल बचा रहता है, क्या होता अगर। और शायद इश्क की सबसे खूबसूरत सजा भी यही है। मैं हूँ आरजे गीत और ये था रेट्रो इश्क। इश्क बाजियां सुन रहे हैं आप। मिलते हैं फिर एक और पुरानी मोहब्बत की कहानी के साथ। तब तक अपने प्यार को थोड़ा सा वक्त दीजिए, ख्याल रखिएगा और प्यार को थोड़ा सा।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

वेलकम बैक, मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। और आज मैं बात कर रही हूं एक ऐसे वर्ड की जो सुनने में बड़ा मॉडर्न सा लगता है, लेकिन इसने बहुत सारे दिल जो है वो कंफ्यूज किए हैं। नाम है सिचुएशनशिप। आपने सुना भी होगा, वैसे बहुत लोग जानते हैं सिचुएशनशिप के बारे में। अब सवाल ये है, आखिर सिचुएशनशिप होती ही क्यों है? क्योंकि क्या होती है ये हमें मालूम है, लेकिन होती क्यों है? देखिए, कई बार वजह बहुत बुरी नहीं होती है। कभी किसी को कमिटमेंट का डर होता है, कभी कोई अपने घर पर फोकस कर रहा होता है, कभी किसी का दिल पहले ही टूट चुका होता है, और कभी लोग बस किसी को खोना नहीं चाहते हैं और पाना भी नहीं चाहते हैं, है ना? बहुत अजीब सी है ना ये सिचुएशनशिप। यानी भाई, आपको बेनिफिट्स पूरे रिलेशनशिप वाले मिलेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बाद में कर लेंगे। और यहीं से कंफ्यूजन जो है वो शुरू हो जाती है। रोज बात होगी, केयर भी होगी, जेलसी भी होगी, वीकेंड्स प्लान भी होंगे, लेकिन जैसे ही कोई पूछ ले हम दोनों का रिश्ता क्या है, बस वहीं साइलेंस आ जाता है। और याद रखिए, क्लैरिटी को डिले करना भी कभी कभी एक आंसर होता है। इसीलिए अगर कोई रिश्ता आपको बार बार कंफ्यूज कर रहा है, तो सिर्फ ये मत देखिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ये भी देखिए कि वो कंसिस्टेंटली कर क्या रहा है। क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में बटरफ्लाईज हो सकती है, लेकिन रोज रोज कंफ्यूजन नहीं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत, और थोड़ी देर में मैं बात करूंगी, अगर आप सिचुएशनशिप में है तो उसे पहचानना और हैंडल करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है। लेकिन वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

0: करो सर, मैं बैंक से बोल रहा हूं। अच्छा, और मैं चांद पर प्लॉट बेच रहा हूं।
1: हेलो सर, हेलो सर,
0: आपका अकाउंट खतरे में है सर।
1: हेलो सर, हेलो सर,
0: पहले डराए फिर

but no, please.

मैं इश्क बाजियां, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और आज हम बात कर रहे हैं सिचुएशनशिप की। और अगर अभी तक आपको लग रहा है कि यार शायद मेरे वाला केस भी थोड़ा सा ऐसा ही है तो जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, हर रिश्ता लेबल मांगे ये जरूरी तो नहीं, लेकिन हर रिश्ता क्लैरिटी जरूर मांगता है। अगर आप हमेशा उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल हैं लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग कभी भी नहीं है, थोड़ा सोचिए। अगर हर वीकेंड प्लान तो आपके साथ है लेकिन फ्यूचर का एक भी प्लान आपके साथ नहीं है, थोड़ा सा सोचिए। और अगर आप दोनों कपल वाली सारी चीजें कर रहे हैं, बस हम रिलेशनशिप में हैं ये कहने से एनर्जी है, तो बॉस रिपोर्ट कार्ड कुछ और ही कह रहा है। वैसे वो आई नीड स्पेस इतनी बार बोलते हैं कि लगता है डायरेक्ट नासा से रिक्रूटमेंट चल रही है। स्पेस दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन किसी को इतना भी स्पेस मत दीजिए कि वो आपकी जिंदगी से ही आउट ऑफ ऑर्बिट हो जाए। और एक बात याद रखिए, जहाँ आपको अपनी वैल्यू बार बार एक्सप्लेन करनी पड़े वहाँ रुककर सिर्फ उम्मीद बढ़ती है, रिश्ता नहीं। रिश्ते वो होते हैं जहाँ बातें गैस नहीं समझी जाती हैं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और ये चल रहा है रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

Namaste, myself Dr. Rajni Benival. I am a dentist and a nutritional psychologist. I am a women health coach and teen parenting expert. Over the 13 years of experience, as the social media is growing, I can see बहुत सारे लोग social media follow करते हैं, बहुत सारे trends follow करते हैं, बहुत सारे influencers और celebrities को follow करते हैं और crash diets करते हैं, जो कि उनकी body के लिए बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं है. जो दूसरे की body पे suit कर रहा है, वो आपकी बॉडी पे सूट करेगा, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. कुदरत ने जैसे हम सबके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट बनाए हैं, हम सबकी बॉडी अलग है. हमारा डेली रूटीन ही डिसाइड करता है कि हमें कितने अमाउंट में कितने न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स कंज्यूम करने चाहिए. एक डे नॉर्मल जो हम घर की थाली में खाना खाते हैं, वो हमारे डेली नॉर्मल रूटीन के लिए कंफर्टेबल है. लेकिन आप कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, या एक पर्टिकुलर किसी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स का आपको जानना बहुत जरूरी है. और वो आप एक नियर बाय डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह से ही डिसाइड करें कि कौन सा सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपके लिए सही रहेगा, कितना प्रोटीन आपको कंज्यूम करना चाहिए और अपनी डाइट में आपको क्या वेरिएशंस लाने चाहिए कि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सके. तो अपने आप कुछ भी रैंडमली मत खाइए, एक सही सलाहकार की मदद से ही आप अपने भोजन को चुनिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए. धन्यवाद. डॉक्टर कॉलिंग.

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजिया, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गी। तो आज का रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड का वक्त यहीं खत्म होता है। देखिए, सिचुएशनशिप बुरी है या अच्छी ये मैं डिसाइड नहीं करने वाली। हो सकता है दो लोगों के लिए वो फेज बिल्कुल ठीक हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है दोनों एक ही पेज पर होने चाहिए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक इंसान फ्यूचर देख रहा है और दूसरा सिर्फ फ्राइडे इवनिंग। और वैसे भी आजकल सीन का रिप्लाई 3 दिन बाद आता है, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरी 2 सेकंड में देख ली जाती है। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है बॉस, बस फीलिंग का नेटवर्क कभी कभी वीक हो जाता है। अगर कोई बार बार बोले देखते हैं, सोचेंगे, अभी टाइम है, तो कभी कभी दिल से भी पूछ लीजिएगा और कितना टाइम है, क्योंकि मोहब्बत में पेशेंस बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। और एक बात, अपनी वैल्यू कभी किसी के मिक्स्ड सिग्नल से मत मापिए। जो इंसान आपको अपनी जिंदगी में चाहता है, उसके मैसेजेस से पहले उसकी नीयत क्लियर होती है। और जो सिर्फ ऑप्शन बनाकर रखना चाहता है, उसके पास एक्सक्यूजेस हमेशा अनलिमिटेड होते हैं। तो दोस्तों, प्यार कीजिए, दिल खोल कर कीजिए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का पासवर्ड कभी भी किसी के हाथ में मत दीजिएगा। और हाँ, रेड फ्लैग्स को क्यूट हैबिट बोलकर इग्नोर मत करिएगा, वरना बाद में ये मत कहना यार मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। इसी के साथ मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। तो मैं मिलूंगी फिर से आपको रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड में एक और जेन जी रिलेशनशिप ट्रेंड का एक रिपोर्ट लेकर। तब तक अपने दिल को थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपनों को थोड़ा सा वक्त दीजिए, और याद रखिए जो रिश्ता बार बार एक्सप्लेन करना पड़े, शायद उससे निभाने से पहले समझना ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं चलती हूँ, आप मुझे इजाजत दीजिए, आप मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, और हाँ, दिल से ऑनलाइन रहिए, पर हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। साइनिंग ऑफ, गुड नाइट, रब राखा।

प्यार बदला है, रिश्ते बदले हैं, और उनके साथ बदल गई है उनकी डिक्शनरी भी। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। अब वक्त हो गया है हमारे तीसरे सेगमेंट का, रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। यहाँ ना किसी को पास करना है ना किसी को फेल, यहाँ हम सिर्फ समझाने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कि आखिर आज के रिश्तों में चल क्या रहा है। क्योंकि आजकल रिलेशनशिप से ज्यादा जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो ट्रेंडिंग है, कभी होस्टिंग, कभी ब्रेड क्रमिंग, कभी लव बॉम्बिंग, और कभी एक ऐसा वर्ड जिसे सुनकर लगता है यार ये क्या है एग्जैक्टली, लेकिन असल में होता कुछ और है। इट्स नॉट अ रिलेशनशिप, इट्स जस्ट अ सिचुएशनशिप। और आपने सिर्फ मुस्कुरा कर हाँ हाँ बोल दिया हो तो टेंशन मत लीजिए, आज के बाद आप सिर्फ इस वर्ड का मतलब ही नहीं बल्कि इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ जाएंगे। तो चलिए खुलते हैं आज के रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड के नए पन्ने और देखते हैं कि आखिर ये सिचुएशनशिप आखिर है क्या। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ हटके।

0: शुरू हो जा।
1: तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: कर रहा हूँ।
0: तो करना।
1: इरशाद तो बोलो।
0: इरशाद।
1: हाँ, पानी से नहाकर निकलते हैं, पसीना भिगा देता है।
0: अरे
1: पानी से नहाकर निकलते हैं तो पसीना भिगा देता है, एसी कूलर वाला हमें देखकर शटर गिरा देता है।
0: तुम्हारी हरकतें जानता होगा।
1: अब पूरा सुनो पहले। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। अंदर सोया हुआ गार्ड हमें थप्पड़ मार के भगा देता है।
0: आप डिजर्व भी यही करते हैं।
1: अरे
0: अब तू बोलता रहे भाई, हम चलते हैं।
1: अरे सुनो।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: इंसानियत सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं, हर जीव के लिए है। क्या कभी सोचा है कि जो पंछी आपकी छत पर आते हैं वे सिर्फ उड़ने के लिए नहीं बल्कि किसी उम्मीद से आते हैं। गर्मी उनके लिए भी उतनी ही कठिन है जितनी हमारे लिए। एक छोटी सी कोशिश, एक मटका या एक बोल पानी भर कर रखिए, शायद आपकी एक कटोरी पानी से किसी की प्यास बुझ सके।

0: सुन रहे हैं कृष्ण वाणी।
1: श्रीमद् भगवद गीता से हमें सीखने को मिलता है कि परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है, यानी कि आपका जीवन कभी भी बदल सकता है। और जैसे सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद वर्षा ऋतु, ऐसे ही चलता रहता है। इस प्रकार संसार में परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है।

और श्री स्वामी जी ने अपने जीवन का एक अनुभव उसमें कहा था कि हमारे जीवन में, हमारे साधन काल में एक क्षण ऐसा आया जब हमने अपने मन में ये संकल्प किया कि अब हम कोई संकल्प नहीं करेंगे, मनेगा पर हम उसके संग, हम उसके साथ नहीं चलेंगे, चाहे वो संकल्प पारमार्थिक संकल्प ही क्यों ना हो। यहाँ के रसिकों ने कहा है, परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, अंजन है मम नयन सदा भगवत सन। स्वामी जी ने कहा चाहे वो पारमार्थिक संकल्प भी क्यों ना हो, हम कोई संकल्प नहीं करेंगे, बस अपने अपने श्री हरि की इच्छा में हमने अपनी सब इच्छा मिला दी, अब राजी हैं हम उसी में और जिसमें तेरी रजा है। और मैं कहता हूँ भक्ति की सबसे सरलतम व्याख्या यही है कि प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी जाए। हमारे महाप्रभु जी तो रसगान का आरंभ यहीं से करते हैं, जोई जोई प्यारो करे

प्यारे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। ये भक्ति की सरलतम व्याख्या है। और स्वामी जी ने आगे लिखा कि भाई अब हमें तत्व प्राप्ति के अतिरिक्त कुछ और नहीं करना है। और जाने उस एक पंक्ति में कैसी शक्ति थी, कैसी ऊर्जा थी कि वो शब्द मेरे भीतर गए, उन शब्दों ने समय आने पर अपना प्रभाव दिखाया। तो भक्ति मुझे लगता है यही है भाई, इसी को समर्पण कहते हैं। भक्ति का प्राण समर्पण है। और यही समर्पण है, जब अपने मन की कोई इच्छा ना रहे, और मन इच्छा करे तो करने दीजिए, आप मन के पीछे मत चलिए।

अमृत मोह सिंधु की दारा, काढ़ दया कर कर्म ही पारा। रोगी वैद से कह रहा है कि मुझ पर कृपा करो और मैं डूबता जा रहा हूँ इस मोह सिंधु की धारा में, किसी प्रकार मुझे पार करो। हों अति दीन महा दुख पावत, लोग कुटुंब को मुंह ना लावत। क्या आवश्यक है जीवन में अपनी ये झांकी देखना, क्या आवश्यक है कि हम अपनी ऐसी दुर्दशा जीवन में देखें। ये जो समय है ना आपके पास, ये जो जीवन है आपके पास, यही आपकी निधि है, यही आपकी संपत्ति है। कबीर जी ने तो एक विस्तृत, कल लेकर आऊं कबीर जी की वाणी का वो प्रसंग, वो कहते हैं कि भाई कर सको तो नित्य करो, नित्य नहीं करो तो सप्ताह में करो, नहीं तो एक मास में, नहीं तो एक वर्ष में। इस प्रकार उन्होंने बड़ा सुंदर रूपक दिया है जीव को प्रबोध देने के लिए। जो समय है ना, यही आपकी संपत्ति है, इसका सदुपयोग करिए। महीना में 30 दिन होते हैं ना, तो 3 दिन जाकर समझिए धाम में रहना है, साधक की भांति रहना है। श्री डोंगरी जी महाराज जी बात कहते थे कि तीर्थ का प्रसाद तभी मिलता है, तीर्थ सेवन का फल लाभ तभी है जब आप तप पूर्वक तीर्थ में रहें। और यहां